मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 15वीं तिथि तदनुसार 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रथम सभा।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है चिंतन। जौं प्रश्न कैल जाए। आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का है।
1: जौं प्रश्न कैल जाए जे जीवन में सबसे प्रधान सबसे मूल्यवान वस्तु की थी, तो क्यों कहता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी शक्ति। शक्तिशाली सबके जय कह सकै छे, ओकरा डरे सब क्यों डराई छे, ओकर उचित अनुचित सब कर्म मान्य होइ छे। क्यों कहता सुंदरता श्रेष्ठ अछि, कारण सुंदर व्यक्ति सबके आकृष्ट कर लै छे। क्यों कहता बुद्धि श्रेष्ठ अछि, क्यों कहता विद्या श्रेष्ठ अछि। तहिना एही प्रश्नक भिन्न भिन्न उत्तर प्राप्त हैत, किंतु जँ स्थिर चित्तें विचार कयल जाय तऽ एही निष्कर्ष पर आयब जे मनुष्यक लेल शील वा आचार प्रधान वस्तु थिक। आचार द्वारा संसारक सब विभूति प्राप्त कयल जा सकै छै। सदाचारक मानव जीवन में बड़ महत्व अछि, वा कहि सकै छी जे जँ मनुष्य शीलवान नहि अछि, आचारवान नहि अछि, तऽ ओकर जीवन व्यर्थ अछि। महाभारत में शील वा सदाचार पर बड़ बल देल गेल अछि। आचार द्वारा बल, आयु, विद्या आ वैभव प्राप्त करब संभव अछि। जेना सुंदर अलंकरण सँ शरीरक सौंदर्य बढ़े छै, जेना क्षीर सँ भोजनक उत्तमता में वृद्धि होइ छै, तहिना शील सँ मनुष्यक व्यक्तित्व श्रेष्ठता उत्तमता के प्राप्त करै छै। जेना तेज सवारी सँ मार्ग पर विजय करब संभव अछि, तहिना शील द्वारा संसार यात्रा सुगमता सफलतापूर्वक कयल जा सकै छै। जाहि मनुष्यक शील नष्ट भऽ गेल हो, तकरा जीवित रहबाक कोनो अर्थ नहि रहि जाइ छै, ओकर जीवन व्यर्थ अछि। शील विहीन व्यक्ति केहनो विद्वान हो, केहनो बलवान हो, शारीरिक सौंदर्य सँ कतबो संपन्न हो, बंधु बांधव सँ कतबो भरल पूरल हो, किंतु ओकर जीवन व्यर्थ अछि। शील, सदाचार, प्रज्ञा, इंद्रिय निग्रह आदि एकार्थक शब्द अछि। पांच भौतिक शरीरक पांचों ज्ञानेन्द्रिय आ अन्य पांच कर्मेन्द्रिय पर मनक आंकुश राखब इंद्रिय निग्रह कहबै छै। प्रज्ञावान व्यक्ति इंद्रिय पर नियंत्रण राखै छथि। मनक शक्ति के दृढ़तर केने इंद्रिय निग्रह कयल जा सकै छै। मनुष्यक इंद्रिय ओकर शत्रुओ होइ छै आ मित्रो। इंद्रिय मित्रवत कार्य करत वा शत्रुवत, ई निर्भर करै छै मन पर। जाहि व्यक्तिक मन अपना अधीन में छनि, ओ इंद्रिय सँ सम्यक कार्य लै छथि। जाहि व्यक्तिक मन निर्बल छनि, इंद्रिय पर नियंत्रण रखबा में अक्षम छनि, हुनक इंद्रिय निश्चित रूपें कुकर्म दिस प्रवृत्त होइ छनि। जना कुशल घोड़सवार केहनो बिगड़ल घोड़ा के वश में कऽ लै छै, तहिना जाहि व्यक्तिक मन शक्तिमान छनि, ओ इंद्रिय के नियंत्रण में राखै छथि। तैं सब युग में तत्वदर्शी ऋषि मनीषी लोकनि मौनक शक्ति के बढ़ेबा पर बल देलनि अछि। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रज्ञावान बनबाक उपदेश दै छथि। प्रज्ञा द्वारा मौनक शक्ति संवर्धन होइ छै। भगवान बुद्ध आ वर्धमान महावीर सेहो प्रज्ञा, शील आ समाधि के मनुष्य जीवनक आधार कहलनि अछि। भगवान महावीर कै जिन कहल जाय छै, जिन शब्दक अर्थ होइ छै विजेता। की भगवान महावीर कोनो देश जीतने छला? नहि, ओ कोनो समर भूमि में नहीं गला, कोनो देश जाय नहीं कलनि, तखन विजेता किया कहलनि? तऽ भगवान महावीर अपन आत्मिक शक्ति के बढ़ौलनि।

0: तप द्वारा मनक शक्तिक संवर्धना कलन मनोगत सबटा दुर्भाव पर विजय प्राप्त कलन तय कहलन जिन वा विजेता। एतावता स्पष्ट अछि जे शील वा सदाचार्य जीवनक श्रेष्ठतम वस्तु अछि, तैं शीलवान बनक चेष्टा में सतत रहक चाही।
1: चिंतन आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। शरतकालीन बैगन की उन्नत खेती, वाचन स्वर सविता कुमारी का है।
2: आजुक कृषि चर्चा अब सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, अपना सब तरकारी खेती कऽ कऽ निक आमदनी कऽ सकै छी, और ताहू में जँ भाटाक उन्नत खेती करब तो व्यवसायिक दृष्टि निक लाभ होत। सबसे पहिने हमरा लोकन के एकरा बाग करबाक लेल ध्यान देबाक चाही, जाहि मे भाटाक बिया के गाछक लेल खेत में छीटल जाइत अछि। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, भाटाक मुख्य फसलिक लेल पौधशाला में एकर बिया जून जुलाई मास में छीटल जाइत अछि, और गर्मा फसलक लेल दिसंबर से लऽ कऽ जनवरी मास धरि छीटल जाइत अछि। एहिना गाछ के रोपबाक उचित बेर मुख्य फसलक लेल जुलाई से अगस्त मास धरि होइत अछि, और गर्मा फसलक गाछ जनवरी केर अंत से लऽ कऽ मध्य मार्च मास धरि रोपल जाइत अछि। भाटाक बिया के छिटबा काल एकर मात्रा पर सेहो ध्यान देबाक चाही, जे वैज्ञानिक लोकनि द्वारा 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करब निर्धारित कयल गेल अछि। भाटाक गाछ के रोपबा काल एकर दूरी पर सेहो ध्यान देबाक चाही, एकर मुख्य फसलक लेल 5 सँ 5 इंच दूरी 75 सेंटीमीटर, और गाछ सँ गाछक दूरी 60 सेंटीमीटर राखल जयबाक चाही। एहिना गर्मा फसलक लगेबा काल 5 सँ 5 इंच केर दूरी 60 सेंटीमीटर, और गाछ सँ गाछक दूरी 45 सेंटीमीटर रखबाक चाही। स्नेही किसान भाई बहन लोकनि, हमरा लोकनि के सदत भाटाक उन्नत ओ अनुशंसित प्रभेद के लगाबी, जाहि में अबैत अछि नीलम, अरुणा, पूसा अनमोल, पूसा पर्पुल लॉन्ग, पूसा क्रांति, मुक्ता केसी, कल्याणपुर T3, राजेंद्र बैगन 1, राजेंद्र बैगन 2, पंत ऋतुराज, पंत सम्राट का नवनीत, अर्का शीतल, अर्का केराव, अर्का कुसुमाकर, केरा सूर्या, और स्थानीय प्रभेद में गुच्छादार हरियरका ओ कचबचिया अबैत अछि। भाटाक फसलक निक उत्पादन लेल हमरा लोकनि खाद उर्वरक सेहो व्यवहार करैत छी, जाहि मे ई ध्यान रखबाक चाही जे एकर उचित मात्रा फसिल मे देल जाय, संग संग एकर व्यवहार मे समयक अंतराल के सेहो ध्यान रखबाक चाही। जेना कंपोस्ट 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सिंगल सुपर फास्फेट 300-350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, म्यूरेट ऑफ पोटास 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयरक दर से व्यवहार करबाक चाही। कंपोस्टक व्यवहार खेतक जुताई बेर करबाक चाही, ओ सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटासक पूरा मात्राक संग संग यूरियाक 1/3 मात्रा भाटाक गाछ के रोपबा सँ पहिने खेत में देबाक चाही। यूरियाक शेष 2/3 मात्रा के 2 बेर में 25-30 दिन का अंतर पर व्यवहार करबाक चाही। ई ध्यान रहे जे भाटाक फसिल में पटौनी आवश्यकताक अनुसार करबाक चाही। एहि प्रकारे हम सब भाटाक उन्नत खेती करब तो निश्चित रूप से 250-300 क्विंटल प्रति हेक्टेयरक तौर से उपज होत, आ जहन निक उपज होत तो किसान लोकन के आमदनी बढ़िया हेतन। एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अभी आप कृषि चर्चा सुन रहे थे। ये

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के

0: अन सफियुल्लीन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, शिशु आहार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नंदनी सिन्हा।
2: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी सिन्हा, जो यहाँ की एक जानी मानी डाइटिशियन हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। हमारी बातचीत का विषय होगा शिशु आहार। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका उस समय आहार क्या होना चाहिए?
3: सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है उसका आहार, तो जैसे सबको पता है कि माँ का दूध ही सबसे सर्वोच्च होता है उसके लिए। जब बच्चा जन्म लेता है उसके आधे घंटे बाद ही हम बोलते हैं कि माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने तक माँ के दूध पे बच्चे रहे तो सबसे बेस्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ को दूध नहीं आ पाता या दूध कम आता है, तो उस समय पर फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप बच्चे को गाय का दूध आप दे सकते हैं।
2: माँ का दूध सबसे अच्छा आहार होता है, लेकिन यदि किसी माँ के स्तन में दूध यदि नहीं है तो उस परिस्थिति में कोई पाउडर मिल्क वगैरह कोई ले सकता है?
3: हाँ, पाउडर मिल्क वगैरह ले सकता है। अच्छा। लेकिन आप एक बार अगर अपने मन से कुछ ना करें, डॉक्टर से एक बार पूछ के ही करें। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अगर पाउडर मिल्क भी नहीं तो फिर गाय का जो दूध है वो सबसे बेस्ट है।
2: अच्छा, तो गाय का दूध सीधा रहना चाहिए, उसमें कुछ पानी मिला
3: नहीं, उसमें हम कुछ पानी मिला के देंगे, बिना मलाई वाला देंगे। अच्छा। और उसको एक बार छान के भी देंगे, ऐसा नहीं है कि बस दूध गर्म किया और दे दिया, उसको हम लोग छाने तो सबसे बेस्ट है।
2: सीधे देने से वो गरिष्ठ हो सकता है ना?
3: हाँ, गरिष्ठ हो सकता है, पचाने में बच्चे को परेशानी होगी इसलिए।
2: अच्छा, पानी के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कंफ्यूजन होता है कि छोटे बच्चों को पहले कुछ दिनों तक पानी अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका?
3: नहीं, पानी अवॉइड करने को ही बोलते हैं हम लोग। छोटे बच्चों को हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि आप उनको पानी दें। पानी अगर आपको बच्चे को देना भी है तो आफ्टर 5 मंथ्स आप स्टार्ट करें। जब बच्चा 5 महीने का हो जाए उसके बाद आप पानी दें तो बेस्ट है।
2: 5 महीने तक बिल्कुल ना पानी
3: नहीं, आप मिल्क पे ही रखें बच्चे को। अच्छा। मिल्क पे ही रखें या मदर मिल्क पे है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं भी है तो पानी नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमको देना पड़ता है तब उस टाइम पे हम बच्चे को जो है पानी दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी उसमें ऐड ना करें। जो बहुत लोग कुछ कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, मिश्री विश्री ये वो, उन चीजों को हम ऐड ना करें तो अच्छा है।
2: जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है, बच्चा परेशान है, तो उस केस में पानी देने में कोई हर्ज नहीं है?
3: उस चीज में हर्ज नहीं है, लेकिन हम बहुत मतलब कम क्वांटिटी हम पानी दें, ज्यादा उस तरीके से नहीं कि हम बस पानी पिलाए जा रहे हैं,
2: ऐसा नहीं करना। पानी तो नहीं,
3: नल का पानी नहीं, नल का पानी नहीं, वो हाँ फिल्टर्ड वाटर हो, बॉइल्ड वाटर हो तो वो अच्छा है।
2: ठीक है, तो 6 महीने तक तो आपने कहा कि माँ का दूध जो है सर्वोत्तम आहार है, उसके बाद आहार में क्या परिवर्तन आ सकता है?
3: उसके बाद जो हम बोलते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हम एक फूड स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड, उसको बोला जाता है कि जो कि फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि बस माँ के दूध से बच्चे का जो एक डेवलपमेंट है वो 6 महीने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जो है फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको बच्चे को अनाज जो है, जो घर का जो खाना है, सिंपल सी बात है, उसको हमको स्टार्ट करना है। लेकिन बस ये देखना है कि हमको उसको कैसे शुरू करना है। बच्चा 6 महीने का है, हम उसको लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि दाल का पानी है, राइस वाटर है, सूप आप दे सकते हैं सारी सब्जियों को छान के। पालक का सूप बच्चे को दे तो बेटर है, क्योंकि आयरन की नीड बहुत ज्यादा होती है, विटामिन सी की नीड बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। तो आप सब सब्जियों को सूप बना के छान के पतला करके 6 महीने में आप ऐसे बच्चे को दे सकते हैं। फ्रूट जूस भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट हम बहुत कम करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे 1/2 to 1 teaspoon।
2: अच्छा,
3: इस मतलब तरीके से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि बच्चा ले रहा है तो हम इसको दिए जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। स्टार्ट विथ मतलब स्मॉल फीडिंग मींस 1/2 teaspoon to 1 teaspoon।
2: जी, यानी कि जो हम लोग जो चावल खाते हैं जो काफी बड़े बड़े दाने होते हैं, या दाल गाढ़ी दाल खाते हैं, उस तरह का उसको
3: नहीं,
2: भोजन
3: बिल्कुल नहीं। स्टार्ट विथ क्लियर लिक्विड डाइट, उसके बाद हम फुल लिक्विड डाइट पे आएंगे। जब 7वें महीने में बच्चा आएगा तो हम बच्चे को दूध वाली जो आइटम है, जैसे खीर का आइटम है, सूजी का पॉरिज हो गया बिल्कुल पतला बना के, कस्टर्ड हो गया बिल्कुल पतला बना के, ये खिचड़ी बिल्कुल पतली सी खिचड़ी, या दाल आप उस टाइम दाल का सूप थोड़ा सा, इस तरीके से हम बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं।
2: तो कितने दिनों के बाद हम उसको जो है पूर्ण

0: आहार दे सकते हैं?
1: पूर्ण आहार जो सॉलिड फूड देंगे वो हम बच्चे को 1 साल के बाद देंगे, 12 महीने, नहीं तो जो 8 से 9 महीने का जो है वो भी पूरा सेमी सॉलिड डाइट पे रहेगा। बच्चे का खिचड़ी हो गया, मैस पोटैटो हो गया, सब्जियां मिक्स करके दें आप। 10-11 महीने का है तो दलिया है, ओट्स है, आप ये चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हैं। रोटी जो है पूरा उबाल के, बॉयल करके, पीस के वैसे दे सकते हैं।
0: अच्छा, 1 साल हो जाने के बाद आपने कहा कि उसको जो है भोजन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 1 साल तक के शिशु को नहीं दिया जाना चाहिए?
1: सबसे पहला चीज तो ये है कि जो हैवी स्पाइसी फूड दी है, ज्यादा फ्राइड आइटम नहीं बच्चे को देना है, ज्यादा स्पाइसी आइटम बच्चे को नहीं देना है, ज्यादा फ्लेवर आइटम नहीं देना है, जैसे बिस्किट वगैरह अपना दें तो बेस्ट है। जो हमने बताया कि एक नॉर्मल घर का अनाज, सब्जी, फल और दूध पे बच्चे को रखना है हमको 1 साल तक।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को शिशु आहार के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: वंदना के अंतर्गत आप भक्ति संगीत का आनंद ले रहे थे। आज जिन कलाकारों को आपने सुना वो थे महेंद्र कपूर, हरिहरन, जगजीत सिंह और लता मंगेशकर। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए रामचरित मानस गान। प्रमुख स्वर रंजना जोगलेकर का है।
1: एपिसोड नंबर 20, 2।

श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

रामचरितमानस गान का भी आप आनंद ले रहे थे। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: अब से कुछ देर के बाद यानी कि प्रातः के 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। प्रातः 8 सुनिएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रातः 8:15 पर सुनवाएंगे मॉर्निंग न्यूज। खबरनामा का समय होगा प्रातः 8:30 पर। अब हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन पाएंगे प्रातः के 8:48 पर। अंजुमन उर्दू कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:10 पर। प्रातः 10 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। विद्यापति गीता आप सुनेंगे प्रातः 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे प्रातः 11:00। कलाकार होंगे पंडित जसराज। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा प्रातः 11:30 पर। दोपहर के 12:00 आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। महिला श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार सुनिएगा 12:30 पर। दोपहर के 1:00 हिंदी समाचार का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दोपहर के 1:10 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। कलाकार होंगे मन्ना डे और मोहम्मद रफी। दोपहर के 1:15 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। दोपहर 2:00 हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इलाकाई खबरें आप सुन पाएंगे दोपहर के 2:05 पर। दोपहर 2:10 पर सुनिएगा रोजगार सूचना। हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार आप सुन पाएंगे दोपहर 2:15 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हमारी पहली सभा के अंत में आप सुनेंगे दोपहर के 3:00 लोकगीत। दूसरी सभा के आरंभ में सुनिएगा संध्या 5:00 युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम। फिल्म संगीत का समय होगा संध्या 5:40 पर। संध्या 6:00 आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। विद्यापति गीत का आनंद लीजिएगा संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद आप सुन पाएंगे संध्या 6:25 पर। गाम घर अनुभव के चश्मा सा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय होगा संध्या 7:00। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा संध्या 7:30 पर। संध्या 7:47 पर सुनेंगे जिले की हलचल। संध्या 7:52 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। सिंगरहार यह कार्यक्रम सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या। रात्रि 9:00 News@9।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालन ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR

0: नमस्कार मिथिला,
1: नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हम रंजीत और हमारे संग स्टूडियो में पहुंचल कयाम अहू के हमार नमस्कार।
2: जी बिल्कुल, श्रोताओं को नमस्कार और आपको भी।
1: और जना कि श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हमारो कन करे छी सुविचार सँ, तो सबसे पहले आजुक सुविचार।
2: जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, स्वामी विवेकानंद ने कहा।
1: अब देखो कि हम स्वामी विवेकानंद के जे शब्दक बुनल जाल थी कतौ न कतौ हमारा के लिए प्रेरणा स्रोत थी, लेकिन अफसोस के संग ई बात हमरा कह पड़ रहा है आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो सँ, जे स्वामी विवेकानंद के बुनल शब्दक जाल के हमारा के सिर्फ पढ़िए टा कर रह जाए छी, ओकरा अपना जीवन में नहीं उतारे छी। ओहि शब्द के साधारणता तखन सामने औते जखन ओहि शब्द के हम अपना जीवन में उतारिए, पर उपदेश हितो उपदेश नहीं दऽ कऽ ओहि उपदेश के अपना ऊपर लागू करिए। और नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में एक डेग आगा बढ़े छी और जानकारी साझा करै छी आजुक दिनक इतिहास के बारे में, जे आजुक दिन की खास महत्व राखैत अछि हमरा राष्ट्र में हमरा समाज में, तऽ जानकारी साझा कऽ रहल छथि कयाम नैयर।
2: जी हाँ, आज के दिन यानी कि 6 जुलाई के को क्या कुछ खास था देश और दुनिया में, इस पर बातें करें तो 1892 में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद के लिए चुने गए। वह ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। आज ही के दिन 2006 में सिक्किम में भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक नथुला दुर्रा सिल्क रोड 44 साल बाद व्यापार के लिए दोबारा खोला गया। आज ही के दिन विश्व जुनसिक दिवस जानवरों को इंसानों में फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक फैलाने के लिए हर साल 6 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1885 में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का पहली बार सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था।
1: इसल आजुक दिनक इतिहास जनमालोकन श्रोतालोकन से जानकारी साझा केलहुँ। और कहियाँ श्रोतालोकन के बतबियनि जे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में सब तरहक सामग्री हमारा लोकन लग उपस्थित होइ छी, श्रोता लोकन से बातचीत हमारा लोकन सेहो करब, बातचीत जाहि मुद्दा पर करब ओ मुद्दा हमारा लोकन के से भारत के अंतरिक्ष के उड़ान में सफलतम दौर, और दूसर जे हमारा लोकन के चर्चा के विषय थिक।
2: जी हाँ बिल्कुल, उसमें बात हम लोग करेंगे महिलाओं की सामूहिक शक्ति से सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में परिवर्तन है, सब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर लें या महिलाओं के बारे में बात कर लें, महिलाएं आज समाज में कितना आगे पुरुषों के साथ हर वो क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे।
1: देखियो पूर्व कहिया हम सबसे पैघ बात उठे जो भारतवर्ष में अगर हम पौराणिक काल से वहाँ देख लेब तो महिला और पुरुष में कतौ असमानता नहीं दिल गेल छे, महिला और पुरुष के लगभग बराबर के हकदार गेल छे सामाजिक तौर पर, शास्त्रीय तौर पर, संवैधानिक तौर पर। तकर ज्वलंत उदाहरण अहाँ देख लेब जे प्राचीन समय में सबसे जे पैघ शास्त्रार्थ भेल रहे आर्ध शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में, ओहि में निर्णायक मंडली यानी निर्णायक के जे भूमिका निभेने रहथिन ओ मंडन मिश्र के पत्नी भारती निभेने रहथिन, तो ऐसे आंकड़ा अंदाजा ही लागत है जे भारतीय परिवेश में भारतीय संस्कृति में महिला के समानता पुरुष के बराबर हमेशा रहले है। और उसमें एक बात और छे, वो बात ये जे किछ इतिहासकार किछ साहित्यकार जे छे से अपना लेखनी में महिला के वो स्थान नहीं दिलखिन जे स्थान महिला के पहले से प्राप्त छलिए, कतौ ने कतौ सँ हुनकर मान

ऐच्छिकता विकृत रहन ओ साहित्य लिखऽ काल में, ओ इतिहास लिखऽ काल में, जकर किछ दुष्परिणाम हमरा लोकन आई के तिथि में भुगत रहल छी। मुदा सामाजिक तौर पर अहाँ देखिए तो महिला हमरा समाज में सबदिना पूजनीय रहली है, चाहे वो देवी के रूप में होथ या मातृशक्ति के रूप में होथ। कतौ ने कतौ हमरा समाज में महिला के जे सम्मान रहलन है ओ सम्मान के कतौ कोनो शानी नहीं रह गेलै, और वर्तमान परिस्थिति में ओ अखनो लागू है, जो ओ कोना लागू है ए विषय पर चर्चा हम लोगन आगा जरूर करब। मुदा ताहि से पहले आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हम लोगन के समय भ गेल है मैथिली गीत सुनबा के। आ श्रोता लोगन अखन सुनै छी सुंदर सन मैथिली गीत।

0: रहना चाहिए और समय के साथ चलना ही हम सब के लिए ज़रूरी है। हम भी कोशिश करते हैं आकाशवाणी दरभंगा से सारे कार्यक्रमों को आपके रेडियो पर समय के साथ प्रस्तुत करें, आप तक पहुँचाएँ, और आपको यूं ही इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जानकारियों को हम बढ़ाने की थोड़ी कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो लोकल अपडेट्स के माध्यम से हो, आज के इतिहास के माध्यम से हो। और अब समय हो चुका है हालचाल का, हालचाल प्रस्तुत करेंगे रंजीत कुमार झा।
1: धन्यवाद कयाम, नमस्कार। राज्य सरकार स्टेट हाईवे के ओई पुल पर टोल टैक्स असूलत जे 250 मीटर से अधिक नमहर है। पथ निर्माण विभाग सब एहन अधीन पुल के संख्या 94 गो है। विभाग अ पुल पर सर्वे कराकर करवा रहा है। एक बाद तय कल जाए कि इनमें से कौन कौन पुल पर टोल टैक्स ले जाए। पुल के लंबाई के आधार पर टोल टैक्स राशि के निर्धारण कल जाए। सर्वे के दौरान पुल के संगे संगे ओकर अप्रोच रोड के लंबाई के सेहो नापल जाए। राज्य मंत्रिमंडल 1 जुलाई के बैसार में राज्य के सड़क और पुल के बेहतर रख रखाव के लिए बिहार राज्य पथ उपयोगकर्ता शुल्क दर्रा के निर्धारण और संग्रहण नियमावली के मंजूरी देने छल। केंद्र सरकार प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर लगायल गेल प्रतिबंध के वापस लौ लेलक है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होबा और हॉर्मुज जल डमरू मध्य सँ LNG आपूर्ति सामान्य होबा के बाद ये निर्णय लेल गेल है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिसूचना जारी कर सब प्रतिबंध के हटा दिल गया है, जेकरा तहत घरेलू और आयातित गैस के आपूर्ति सरकार के प्राथमिकता के अनुसार कैल जा रहा छल। सरकार अ आयात के व्यवस्था 9 मार्च से पश्चिम एशिया में संघर्ष के मद्देनजर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लागू कने छल। संकट काल में केंद्र सरकार ऊर्जा के सुनिश्चित करवा के लिए 3 गोबर का डेग उठौने छल, जाहे प्राकृतिक गैस के आपूर्ति पर नियंत्रण, रिफाइनरी द्वारा पेट्रो रसायन और फेड स्टॉक के जगह LPG उत्पादन के बढ़ेने आई और थोक उपभोक्ता के लिए डीजल के बिक्री समिति शामिल केनाइ सेहो अ 3 गो में शामिल छल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ब्रॉडकास्ट ऑडियंसन रिसर्च काउंसिल वर्क के निर्देश दिलक है कि वो टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 के तहत पंजीकरण पूरा होब तक न्यूज और नॉन न्यूज दुनू तरह के चैनल के टेलीविजन रेटिंग जारी केनाई बंद कर देत। इन निर्देश टीवी न्यूज रेटिंग से पहले लागल रोक सब तरीका से चैनलों के बढ़ावित छल। अमे भारत के टेलीविजन ऑडियंस और जजमेंट सिस्टम तखन तक रुकल रहत जखन तक कि वर्क के लेल नवका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत मंजूरी नहीं भेट जाइत है। वर्क भारत के एकमात्र टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट एजेंसी है जे हर हफ्ता व्यू और शिप डाटा जारी करैत है। बंगाल के खाड़ी में बन रहल आबदाब निम्न वायुदाब के वजह से राज्य में मौसम के बदलाव के संकेत भेट रहा है। 20 जिला में सोमवार को बारिश और वज्रपात के अलर्ट जारी कैल गया है। मौसम विभाग के अनुसार मिथिलांचल के किछ क्षेत्र के संगे संगे मिथिलांचल के अर्ध क्षेत्र में बारिश के संगे संगे वज्रपात होब के संभावना मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त कैल गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र के लेल री रजिस्ट्रेशन के अंतिम तिथि बढ़ा दिलक है। आब 15 जुलाई 2026 तक विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन छात्र करा सकैत छथि। नीट UG PG पुनर्परीक्षा के परिणाम 20 जुलाई तक घोषित भ सकैत अछि। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के तरफ से स्पष्ट कयल गेल है कि मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र में देरी नहीं होब के देल जायत। बताबे चले कि 21 जून को भेल पुनरीक्षा में 20 लाख से बेसी अधिक छात्र शामिल भेल छला है। बिहार में चुनाव में आम पंचायत के चुनाव में तय समय यानी दिसंबर 2026 में पूरा होब के संशय अखन बन रहा है। तेसर चक्र के पदवार आरक्षण के अखन दर प्रक्रिया शुरू नहीं भ सकल है। अब बीच वर्तमान आयुक्त के कार्यकाल से हो के आप 3 सप्ताह शेष रह गए हैं। पंचायत चुनाव से संबंधी अखन तक सिर्फ आबादी के निर्धारण 2011 के जनगणना के आधार पर पदवार प्रकाशित कैल जाए। उत्तर अ साल अखन तक 6 महीना से बेसी के समय बीत जेबा के बावजूद पंचायत चुनाव के लक मतदाता सूची के प्रकाशन, मतदान केंद्र के निर्धारण और आरक्षण निर्धारण जैसन महत्वपूर्ण कार्य के लक कोनो पहल नहीं कैल गेल। उत्तर राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद के कार्यालय करीब 3 सप्ताह तक आब शेष रह गेलन हैं। बिहार में नल जल योजना, पेयजल आपूर्ति योजना के ऑनलाइन निगरानी आब कैल जाए। लोक स्वास्थ्य अभियान

प्रशासन विभाग मुख्यालय से ही पता चल सकल है कि राज्य में कौन सा बोरिंग चालू है और कौन सा बंद पड़ल है। एकर विभाग IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रणाली पर काज करो सा निर्णय लेत। राष्ट्रीय सरकारी स्तर के एजेंसी जांच के लिए विभाग के RFP रिजेक्ट और प्रोफर प्रोपोजल जारी कलक है। विभाग के कोशिश है कि चालू वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन निगरानी प्रक्रिया शुरू भ जाए ताकि आम जनता के पानी के दिक्कत से समस्या के समाधान भ सकें। केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BBB रामजी योजना के तहत बिहार के लेल 1663.56 करोड़ रुपया जारी कर दलक है। ई राशि योजना के सफल क्रियान्वयन और दिशा के पूर्व में राज्य के लिए निर्धारित 6715.83 करोड़ रुपया के अंतरिम बजट में जारी कैल गेल है। राज्य के 100 प्रखंड के अलावा जिला और अनुमंडल मुख्यालय में 150 गो मॉडल स्कूल खोजल जाए। शिक्षा विभाग एकर तैयारी शुरू कर दिलक है। बतावे चली कि राज्य सरकार छात्र छात्रा के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराबो के लिए बिहार में 105

करोड़ 83 लाख रुपया के अंतरिम बजट में जारी कैल गेल है। राज्य के 100 प्रखंड के अलावा जिला और अनुमंडल मुख्यालय में 150 गो मॉडल स्कूल खोजल जाए। शिक्षा विभाग एकर तैयारी शुरू कर दिलक है। बतावे चली कि राज्य सरकार छात्र छात्रा के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराब के लिए बिहार में 5,534 प्रखंड में एक गो मॉडल स्कूल खोलवा का फैसला कलक है। 5,034 के अतिरिक्त 150 गो नवका मॉडल स्कूल से हो खोलल जाए। एक लकर शिक्षा विभाग के सब जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र भेज कर विद्यालय के चयन क आगा के कार्रवाई करवा के आदेश जारी कैल गेल है। राज्य के पंचायत स्तर पर मछली उत्पादक समिति है। 8,053 गो पंचायत में मत्स्य सहकारी समिति बनाब के लिए डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लेलक है। चरणबद्ध तरीका से 100 पंचायत में सहकारी मत्स्य सहयोग समिति बनाओल जाए। एकरा संग ही राज्य में मछली उत्पादन बढ़त और मछली उत्पादक के आय से दुगुना कैल जाए। लोग के कम मूल्य पर स्थानीय और ताजा मछली कोना प्राप्त हुए एकरा लेल राज्य सरकार सब तरह प्रयास कर रहल अछि। कला संस्कृति और युवा विभाग में अलग से खेल विभाग के गठन 10 जनवरी 2024 को कैल गेल छल। गठन से लोग को अखन तक 2.5 साल में खेल विभाग कोनो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन नहीं कर सकल है। आधारभूत संरचना से विकसित भेल पर खिलाड़ी के विकास में सबसे अहम भूमिका निभाव वाला कोच के मामला में अखन धर विभाग काफी पाछा चल रहा है। आलम ये कि स्वीकृति पद के खिलाफ 1/4 कोच कार्यरत छे अर्थात 3/4 पद अखनो खाली है। संगे कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा जो बयान जारी कैल गेल है उसमें कहल गेल है कि खेल अकादमी के तरफ से 33 गो पद सृजित है जाहि में आधा से बेसी अखनो खाली है। एकरा अलावा इहो कहल गेल है कि खेल में विभिन्न खेल समिति के तरफ से ओतेक ध्यान नहीं देवा के कारण स्थानीय स्तर पर खेल के जे गतिविधि है वो कतौ ने कतौ सनई सनई स्थिति से जारी है। ई हाल चाल अखन अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छे। लहरियासराय शहर के देवधा चौक पर रवि को लगभग 80 गो ग्रामीण चिकित्सा के सहभागिता के संगे CME यानी कंस्टिट्यूशनल मेडिकल एजुकेशन कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल। अई कार्यक्रम में हड्डी टूटबा के स्थिति में प्राथमिक उपचार कोना करी और सड़क दुर्घटना में घायल मरीज के जान बचाब के लिए प्रारंभिक चिकित्सा प्रबंधन कना कैल जाए अई विषय पर शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर झा विस्तार पूर्वक जानकारी दिलन। वो बतौलन कि आपातकालीन परिस्थिति में त्वरित और सही उपचार के महत्व पर प्रकाश डालल जाए। संगे हाथ और जांघ में इंस्ट्रा म्यूचुअल इंजेक्शन कोनो स्थान पर देल जाए एकरा बारे में जानकारी देल गेल। भाजपा जिला कार्यालय में रवि को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण पक्ष के अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन कैल गेल। सम्मेलन में कार्यकर्ता डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कक हुनका श्रद्धांजलि देलन और हुनक आदेश पर चलबा के संकल्प लेलन। माँ श्यामा मंदिर में समुचित प्रबंधन के लिए विभिन्न पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन के अंतिम तिथि 6 जुलाई तक निर्धारित है। श्यामा मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन झा बतौलन कि विभिन्न पद पर नियुक्ति के लिए पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन के तिथि 25 जून तक निर्धारित कैल गेल छल लेकिन एकरा बाद एकरा बढ़ाकर 6 जुलाई तक विस्तारित कर देल गेल छल। ओ बतौलन कि श्यामा मंदिर प्रबंधन के लिए प्रबंधक सह प्रबंधक लेखापाल सहायक लेखापाल बिजली मिस्त्री कंप्यूटर ऑपरेटर और जनसंपर्क समन्वयक के एक एक गो पद नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कैल गेल छल। ओते पुजारी पद के लिए 4 गो पद के रिक्ति के प्रकाशित सेहो कैल गेल छल। दरभंगा के देश स्तर पर मखाना के हब बनाब के लिए ठोस पहल कैल जा रहल अछि। 10 करोड़ के लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संगे 8 कसेर के लागत से एनेविल लैब के स्थापना दरभंगा में मखाना तथा जलीय कृषि उत्पाद के उत्पादन प्रसंस्करण और व्यापारीकरण के नवका पहचान दियत जे अतक के लिए वरदान साबित भ सकैत अछि। स्थानीय सांसद से लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर बिहार सरकार के उद्यान और बागवानी निदेशक अभिषेक कुमार और कृषि विभाग के राजस्तरीय अधिकारी के संगे एहि मुद्दा पर चर्चा कैलन। बताबत चली ओ जानकारी दिलन कि सांसद ठाकुर बतौलन कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में बिहार के लिए 50 करोड़ रुपया के प्रावधान अलग से प्रस्तावित कैल गेल।

0: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के ओर से रवि को भारत के विदेश नीति और समकालीन परिदृश्य विषय पर विशेष व्याख्यान के आयोजन विभाग अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी के अध्यक्षता में कैल गेल। बेनीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 और 11 के डखरा में नल जल योजना के स्थिति बदसोबदतर होबा पर ADM मनीष कुमार झा रवि को निरीक्षण के बाद कार्यपालक अधिकारी प्रथमा कुमारी पुष्पंकर से जवाब तलब कैलन है। जिला अधिकारी के निर्देशानुसार ADM वार्ड 10 और 11 में नल जल योजना के जांच कैलन। आधिकारिक सूत्र के मुताबिक वार्ड 10 में जल मीनार बरसों से बंद पड़ल छल और पूरे वार्ड में लंबा समय से जल आपूर्ति सेवा ठप पड़ल छल। समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी में आगामी 8 जुलाई से 6 दिवसीय स्वर्गीय सुरेश शर्मा मेमोरियल अंतर्राज्यीय डबल बुलेट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन कैल जाएत। एहि टूर्नामेंट में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुल 16 गो टीम हिस्सा लेत। एहि के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: हालचाल के बाद अब प्रस्तुत है लोकल अपडेट्स। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर है 6202777740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर है 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनों की बात करें तो दरभंगा से सुबह 6:30 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:33 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो दरभंगा से सुबह 9:30 पर मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: यातायात संबंधी और मौसम संबंधी जानकारी जखन अपने लोग कई जानकारी साझा कलन और देखो कैम जना कि हम लोग चर्चा करी छलूं है
1: कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं के बारे में कि श्रोताओं अगर हम बात करें महिलाओं की सामूहिक शक्ति जिसमें हम जिसे हम नारी शक्ति भी कह सकते हैं, समाज के सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने की सबसे बड़ी प्रेरक है। जब महिलाएं एकजुट होकर आगे बढ़ती हैं तब वे न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करती हैं बल्कि लैंगिक क्षमता, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के जरिए पूरे समुदाय की तस्वीर बदल देती है। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के सामूहिक, जैसे बिहार में जीविका समूह सदस्यों की छोटी बचत और ऋण के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती हैं। शिक्षित महिलाएं अपने परिवार को शिक्षित करती ही हैं, साथ ही समाज के अधिक अंधविश्वास, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी क्रूरता को मिटाने में भी आगे रहती हैं।
0: देखियो कोई हम सबसे पैघ बात उठे जहाँ कहलूँ जो शिक्षित और अशिक्षित, अठमन हम 2 के समय लेब। डिग्री लेने के शिक्षित और अशिक्षित के परिभाषा डिग्री के मानक सब फाइनल नहीं होइत छै। व्यवहारिक ज्ञान से फैसला होइत छै जे अहाँके डिग्री कते कारगर अछि। दोसर बात सवाल अठमन हमरा महिला से संबंधित कऽ रहल छी तऽ हम पहले कहलूँ हैं जे आदि काल से, सनातन काल से हमरा समाज में महिला के प्रति जे सम्मान लोक के छलनि हैं ओ सम्मान आइयो कायम छन। किछ अपवाद हर जगह होइ छै, ओहि अपवाद के गिनती नहीं कयल जाइ छै। और महिला जखन कोनो समूह में काज करै छै, जहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण देलहुँ जे जीविका संगठन के, आई जीविका संगठन पूरे राज्य में अपन समूह बनाकर महिला के आगा एबाक लेल तो प्रोत्साहित कैये रहल छै, संगे संगे वही काम के सेहो अंजाम दऽ रहल छै जाहि काज के करबाक लेल पुरुष काल्हि खुनी अपन दम्भ भरै छलाह जे ई काजटा हम ही टा कऽ सकै छी। आई यहाँ देख लियो महिला हमर समाज के, हमरा समाज के माय बहिन बेटी जे छै आई हवाई फोर्स में शामिल भ कऽ लड़ाकू विमान उड़ा रहल छथि। ई हुनकर मानसिकता के परिचय छनि जे महिला अंदर से कतेक स्ट्रांग होइ छै। महिला के अबला नहीं बुझियो, महिला सबला छिए, बस ओकर इच्छा शक्ति के जागृत होबाक आवश्यकता छै। ओकरा जरूरत छै जे समाज में जहाँ देखै छियै लिंग भेद करै छियै जे ई महिला छथिन, ई पुरुष

0: ई लड़की छे, ई लड़का छे, ई बेटी छे, ई बेटा छे। बेटी के पढ़ाव में कम ताकत लगेबे, बेटा के पढ़ाव में पूरा ताकत झोंक देबे, ऐसे संभव नहीं भ सके छे। आ यहां देख लियो जे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र होए, आर्थिक क्षेत्र होए, खेल जगत होए, विज्ञान जगत होए, हर जगत में आज भारतीय महिला पूरे सृष्टि में, पूरे प्रकृति में अपन परचम लहरा रहल छथि। ई कोनो मौखिक बात नहीं थी, ई बात सामाजिक परिदृश्य में अहाँ के सामने आबि रहल अछि। अहाँ खेल जगत में देख लियो तो 101 महिला अहाँ के विश्व स्तर पर अपन उत्कृष्ट प्रदर्शन क के भारत के झंडा के ऊंचा बढ़ौलन है। अहाँ अगर बात करै छी सुरक्षा के क्षेत्र में, तो यहाँ देख लियो जे भारत के बेटी आई लड़ाकू विमान उड़ा कर दुश्मन के दूध के दाँत तोड़ दिलखिन है, खट्टा कर दिलखिन है। ई कखन संभव है जखन हमरा लोकन अ मानसिक विकृति से बाहर निकलू है जे ई महिला छथि, हिना काज लड़नाय नहीं छियन, हिनकर काज घर संभारनाय छियन। महिला आठ पहर होइ छै अपना सबके, अगर हम गिनती करी 24 घंटा के तो आठ पहर मानल जाय छै। आठ पहर में आठ गो रूप लै छथिन, कखनो अहाँ के पत्नी के रूप में, कखनो अहाँ के गुरु के रूप में, कखनो अहाँ के दोस्त के रूप में, कखनो अहाँ के अभिभावक के रूप में। बशर्ते हमरा लोकन के जेका मानसिकता भ गेल अछि जे महिला छथिन, ई बेटी छै, तो ई कमजोर हेतै, अइ मानसिकता के, अइ तंद्रा के हमरा लोकन के तोड़बाक चाही। आ यहाँ देख लियो जे चाहे वो कोनो प्रायोगिक परीक्षा होय या कक्षीय परीक्षा होय, कि पुरुष या लड़का सँ कम परिणाम महिला के रहै छै। आ यहाँ के टेंथ के रिजल्ट देख लियो, इलेवेंथ के रिजल्ट अहाँ परिणाम देख लियो, तो लड़की और लड़का के जखन अहाँ मार्क्स के अनुपात देखै छिए, ओकर विश्लेषण करै छिए, तो कतौ ने कतौ लड़का और लड़की में अहाँ के समानता प्राप्त होइए। तो ई जे हमरा लोकन के मानसिक विकार धऽ लेने अछि जे बेटी कमजोर होइ छथिन, महिला कमजोर होइ छथिन, एहि चीज सँ हमरा लोकन के बाहर अयबाक चाही। और जतेक पुरुष के आजादी भेटै छनि, ओतेक आजादी महिलों के हमरा समाज में भेटबाक चाही। आप सवाल उठते छे महिला के सम्मान पर, तो महिला के सम्मान करवा के तो भीड़ में महिला के सम्मान करियो, अकेला में तो महिला के योगा में सब क्यों गर्दन झुका दी छथिन। भीड़ में महिला के सम्मान होबक चाही। महिला जखन 50 गो 100 गो मर्द के बीच में अकेला हो, तखनो सीना तैन के ठाड़ रहती जे नहीं, 100 में हम अकेला छी, 100 गो हमर रक्षक छथि। तखन महिला के संगे समानता के व्यवहार जे हेतै, तखन हमर राष्ट्र आगा बढ़त, हमर निर्माण जे छै से आगा बढ़त। तखन हम ककरो कहि सकै छियै कि हम अपना राष्ट्र में कतौ महिला और पुरुष में विभेद नहीं करै छियै। आइयो शहरी क्षेत्र के अगर अहाँ बात छोड़ दिए, तो सुदूर ग्रामीण इलाका में बच्चा के, हालांकि सरकार बदल ले, सब किछु बदल ले, अब अहाँ देखबे ग्रामीणों क्षेत्र में वो ललका साइकिल लेने, स्कूल ड्रेस पहिरने बच्चा, असगरो बचिया स्कूल जाके हिम्मत कऽ पाबि रहल छै। तो यह अधिकार भेटलिए, और अही के ई ज्वलंत उदाहरण थी जे आइ यहाँ कोनो परीक्षा में देख लेते हुए तो लड़का और लड़की समान अनुपात में ओकरा क्लियर करै छै, चाहे UPSC हुए, BPSC हुए, IAS के परीक्षा हुए, चाहे आइ यहाँ देख लियो जे महिला फौज में जा रहल छथि, आइ यहाँ देख लियो स्थानीय बिहार पुलिस में, आइ यहाँ प्रत्येक जे गाड़ी के पेट्रोलिंग घड़ी निकलै छै तऽ अगर दूटा पुलिस के जवान मर्द बैसल छथि तऽ दूटा ओहिठाम महिलो पुलिस के जवान बैसल छथिन। ई कतौ ने कतौ समानता के अधिकार महिला के आगा अभाव में, बहुत आगा अभाव में जे छै से हुनका मदद कलकनि है। और सामाजिक स्तर पर सेहो लोक के जे विकृत मानसिकता छलनि है, ओहि में कतौ ने कतौ बदलाव भेलै, जकर परिणाम भेलै जे आब लोक बेटा और बेटी में कोनो विभेद नहि करै छथि, समान शिक्षा के अधिकार हुनको भेटलनि है, और महिला एहिमे अपन पूर्णतया भागीदारी निभा रहल छथि।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और महिलाओं के नेतृत्व की बात करें तो जमीनी स्तर पर नेतृत्व करने का मंच उन्हें दिया गया है, जैसे सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य के रूप में भी वो काम कर रही हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी महिलाओं ने किसी मुद्दे पर सामूहिक आवाज उठाई है तो हमारे समाज में एक बड़ा सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव हुआ है, चाहे वो चिपको आंदोलन की बात कर लें या फिर
0: मेघा पाटेकर,
1: बिल्कुल उसमें उन सारी चीज़ों में महिलाओं ने एक यूनिटी दिखलाई है। महिलाएं जहां भी जिस क्षेत्र में उतरी है उस क्षेत्र में हमने बहुत सारी बातें की कि महिलाओं का आज
0: हमारे तो महिला के योगदान से अपन इतिहास भरल पड़ल छ, जरूरी छ इतिहास के जानवा के लेल। लेकिन अहिठाम तो विचित्र स्थिति कयाम तखन भेले जे मानसिकता से भरल लोग इतिहास के लेखनी कहलखिन और हमरा लोकन के वह इतिहास पढ़वा के लेल भेट गेल। सिलेबस में हमरा लोकन के सेहो वह इतिहास पढ़वा के लेल भेट गेल और अपना

आज में एकटा बड़ा सुंदर ई छलैए जे किताब में लिखल छै बात सत्य हेतै। लेखनी पर लोक के अतेक विश्वास छलनि हैं, आब लोक के सामने में हकीकत आबि रहल छनि, सब गोटे के सामने में सब चीज आबि रहल छनि और सब गोटे सब चीज के विश्लेषण करबा में आब सक्षम भ रहल छथि। और आब ओकरे ई परिणाम भेलै जे जिनका घर में दू गो बेटी और दू गो बेटा छनि तो ओ ई नहि कहै छथिन जे हमर दू गो बेटा स्कूल जायत आ दू गो बेटी हमर घर में खाना पकायत। ओ दुनू बेटा और दुनू बेटी के समान भाव सँ ओकरा अपना अगर बेटा के स्कूल छोड़ जाय छथि तो ओही गाड़ी पर बेटियों के लोक स्कूल छोड़ जाय छथिन। ई जे समाज में परिवर्तन अयलैए ई परिवर्तन कतौ ने कतौ महिला सशक्तिकरण के लेल बहुत कारगर सिद्ध भेलैए। और अखन हमरा लोकनि नमस्कार मिथिला के आजुक अइ अंक में एक डेग और बढ़ी के आयम और सबसे पहले श्रोता लोकन के सुंदर सन फिल्म संगीत सुनाबै छियनि, ओकरा बाद फिर हमरा लोकनि चर्चा लक उपस्थित होयब। आ श्रोता लोकनि सुनै छी सुंदर सन फिल्म संगीत।

0: अखन वाला कनी फिल्म संगीत सुनै छन में कहियामे और आब श्रोता लोकन से बातचीत करै छी जे अंतरिक्ष में जे भारत के जे उपलब्धि सब हासिल भेलै और कहियो आई सौ दस साल बारह साल पंद्रह साल पहले जे हमरा लोकन अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ रहल छन में पूरा विश्व में, आई हम पूरे विश्व में कोनो विकसित राष्ट्र के संगे कदम से कदम मिलवाक चला मिलाक चलबाक लेल तैयार छी। और कतौ न कतौ आई हमर जे इसरो के जे वैज्ञानिक लोकन छन जे अनुसंधानकर्ता छथि ओ आई अनुसंधान कऽ कऽ ई साबित कर कऽ देलनि हैं कि विश्व में अगर कोनो देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में ठाढ़ अछि तऽ भारतो देश केकरो सँ पाछा नहि अछि, भारतो आई सबसँ अग्रणी पंक्ति में ठाढ़ होबाक दावा करैत अछि और पुख्ता दावा के संगे अग्रणी पंक्ति में ठाढ़ अछि।
1: जी हाँ बिल्कुल, अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती उड़ान वर्तमान में बेहद तेजी से नए आयाम छू रही है। हाल ही में हुए ऐतिहासिक एक्सेस फोर मिशन के तहत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर आने अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए भेजे हैं। इसके साथ ही भारत 2028 तक अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने और 2040 तक चांद पर पहला मानवयुक्त मिशन भेजने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। एक्सियम्स फोर मिशन के तहत भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की सफलता उड़ान भरी और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयासों को अंजाम दिया। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता को लगातार आगे बढ़ाने के लिए गगनयान का विकास प्रगति पर है, जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में की कतार में खड़ा करेगा जो अंतरिक्ष में अपने दम पर मानव भेज सके। अंतरिक्ष के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्पेस किड्स इंडिया के तहत शक्ति सैट मिशन शुरू किया गया है, जिसमें 108 देशों की छात्राओं को उपग्रह तक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: संगे देखू जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आ युवा पीढ़ी के सेहो कतौ न कतौ आकर्षण ओहि क्षेत्र से बढ़लन है। देखने हेबे जे हाल फिलहाल में मिथिला के क्षेत्र से दू गो तीन गो छात्र के इसरो संगठन में जे छै से हुनका जे छै से नियुक्ति भेल छलन है, हुनकर सिलेक्शन भेल छलन है। तो लोक के और नया नया छात्र के जे अंतरिक्ष उड़ान और विज्ञान के तरफ जे आकर्षण बढ़लन है, ओकर सुखद परिणाम आब सेहो हमरा लोकन के बीच आब रहल अछि और नया नया जे छै से प्रतिभा इसरो सँ जुड़ रहल छथि और भारत जे छै से वैश्विक स्तर पर ओहिमे आब खर्चो करय लए तैयार अछि। पहले बजट के प्रावधान थोड़े कम रहैत छल, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था जेना जेना बढ़ल गेलै भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तनाहिते तनाहिते धीरे धीरे अपन डेग आगा बढ़ेने गेलै और आइ ओहि पंक्ति में जाकर ठाढ़ भऽ गेलै जत अमेरिका सन विकसित राष्ट्र जे छै से दावा ठोकै छलखिन हैं, दम्ब बढ़ै छलखिन हैं जे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमर केओ सानी नहि अछि, हमर केओ हाथ नहि पकड़ सकैए, लेकिन भारत हुनका पाछा सँ देलकनि हैं धटाक सँ जे अय अहाँ अमेरिका छी तऽ हमहूँ भारत छी, अगर अहाँ एक डेग आगा बढ़ब तऽ हम अहाँके ओहिसँ तीन डेग आगा बढ़िकऽ एकर जवाब देबाक लेल तैयार छी। और ओहि सोच के संगे ओहि विकसित सोच के संगे भारत आई अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपन नमहर उड़ान जे से भरलक है और ये बात केकरो से नुकैल नहीं है, चोराओल नहीं है जे आई कौन तरह है भारत जे से अपन हरेक क्षेत्र में जे से अपन उपस्थिति प्रमुखता से दर्ज करा रहा है। और नमस्कार।

मिथिलामे कैयम हमरा लोकनिक समय के जे छै से बड़ा प्रतिबद्धता रहैत अछि, समय के संगे सब किछु हमरा लोकनिक श्रोता लोकनिक बीच उपलब्ध कराबऽ पड़ैत अछि। तऽ सबसँ पहिले एकटा आओर फिल्म संगीत के आनंद लै छी, ओकरा बाद फेर श्रोता लोकनिक बीच हमरा लोकनि उपस्थित होयब, आओर ओकरा बाद हमरा लोकनि समसामयिक घटनाक्रम के संगे संगे श्रोता लोकनि सब विदा लेबाक सेहो आज्ञा लेब, मुदा ताहिसँ पहिले सुनै छी सुंदरसन फिल्म संगीत।

0: कुछ कमी सी लगती है।
1: फिल्म संगीत सुनने चलूँ है और कयाम आजुक नमस्कार मिथिलांक वालों के समय भेल समसामायिक खबर जानबा के समसामायिक खबर लोग पहुँची छे कयाम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 6 दिन की यात्रा पर आज से उनकी यात्रा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। आईसीसी T20 क्रिकेट महिला विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोनी को दिया गया।
1: तो इस आज समसामयिक खबर जो हमारे श्रोता लोग जानकारी साझा कल और देखो कहिए हम आज नमस्कार मिथिला अंक समालोकन के विदा लेबा समय से भले तो श्रोता लोग किस अपील हमारा करें अनुनय विनय करें जे प्रकृति के बचाव के लिए देखियो अब मानसून दस्तक देर से भले सही लेकिन मानसून आबि रहा है तो पेड़ पौधा अ प्रकृति के बचाव के लिए जरूर हमारे लगाबी। संगे जल संरक्षण यानी कि पानी बचाव के दिशा में ठोस कदम हमारोकन के उठेबा चाहिए और बारिश के पानी के संचय ओकरा जे छै से हमारोकन उपयोग में लाबी जैसे भूगर्भ जल स्तर जे छै तकर स्थिति निपटान वाला बनल रहे कारण जे दिनानुदिन भूगर्भ जल स्तर जे छै से नीचा जा रहा है और जाहि हिसाब से नीचा जा रहा है लगे जे आवे वाला पीढ़ी में पानी के बहुत बड़ा किल्लत है तो हमारोकन के ई प्रयास करबा चाहिए आवे वाला भविष्य के लिए एक निक प्लेटफॉर्म हमारोकन तैयार कर जाए तो पानी बचाबी गाछ वृक्ष लगाबी प्रकृति बचाबी अही संदेश के संगे आजुक नमस्कार मिथिला के अंक सँ हमारोकन लैत छी विदा।
2: नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
4: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आइए सुनते हैं समाचार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है।
2: आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक

0: पदार्थरोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
2: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
4: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे।

0: के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉ. मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service.

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये 4था दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: उम्मीद है कि जनाब प्राबो सुबियांतो और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामे दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन तजारत और सरमायाकारी खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा जिसमें मुल्क के बाली मैदान सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हजारों भारतीय शहरी और भारत नजार लोग यकजा होंगे और अपने मादर वतन से अपने रबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे। 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परम्बरन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा होगा। सारिफिन उमूर खुराक और तकसीम अम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक बैन अल-अक़वामी तंजीमें सारिफिन तहफुजाती हुकाम तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन और मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वह सारिफिन के तहफ्फुज़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोजा बातचीत की सदारत करेंगी। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ्फुज़ से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज शामिल है जिन्हें अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दिसंबर 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत करेगा जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्रिक्स मुल्कों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये 2 रोजा इजलास वजारत दाखिला के तहत मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के जेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इंसदाद मुनशियात एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे ताकि मुनशियात की इस मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: गुवाहाटी में होने वाले इस इजलास में सिंथेटिक्स मुनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्मगलिंग इंटेलिजेंस मालूम के तबादले ऑपरेशनल राबताकारी सलाहियत साजी और इदारा जाती ताउन को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मंदूबीन में नई नफसियाती असरात रखने वाले मुनशियात जिनमें डार्क नेट के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक माली लेन देन और इसके गलत इस्तेमाल जैसे उभरते हुए चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में भारत मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कोशिशों को भी उजागर करेगा। इजलास के दौरान रुकन ममालिक मुनशियात से मुतालिक बदलते हुए खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेंगे और बैन अल-अक़वामी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादला ख्याल करेंगे। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा।

0: ने कहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे, जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबैन इदारा जाति तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई, जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले ये मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी, लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब ये मीटिंग राम मंदिर के अहाते में मुनाकद होगी। तफसील हमारे नमानिकार से।
1: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट के अतिया बक्सों के जरिए मौसूल अतियात की गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है, और इखराजात के बारे में बयान, बैलेंस शीट और माली साल 2025-26 से मुतालिक दीगर माली दस्तावेजात की मंजूरी भी शामिल है। नोटिस में चेयरमैन की इजाजत से दीगर मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है, जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे, जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नमानिकार से।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब शाह सबसे पहले न्यू टाउन के इको पार्क जाएंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनाब शाह भवानीपुर में वाकई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आबाई रिहायशगाह पर मुनक़दा तकरीब में उनके मुजस्मे पर गुलाह अकीदत पेश करेंगे। शाम के वक्त मरकजी वजीर दाखिला 20वां बांग्ला मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने उन्हें जुरत, हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वजीर आजम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजूं खिराज अकीदत है। मुंबई और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाकये में कई अफराद हलाक हो गए। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने रायगढ़ जिले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली जिलों और पुणे के तमाम सरकारी, म्यूनिसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्राजील के तजर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से

0: भर हो गई। 34 साल नेमार ने ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा बैन अलाक्वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राजील की छठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त खत्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग हालांड ने मैच के आखिरी लम्हात में दो गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए एक गोल जरूर किया लेकिन वो शिकस्त का फर्क कम करने के सिवा कुछ न कर सके। नेमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राजील की फुटबॉल के एक शानदार बैन अलाक्वामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राजील के लिए यह मुसलसल सातवां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम की स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-2331-4444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289-094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #askEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में एलएनजी सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयत पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर तवानाई तिजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है जिनेवा में मसनू जहानत AI से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क़यादत वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
4: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
3: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
4: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
3: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 1663 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कराएगी। और पूरे प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 1663 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के लिए योजना की पहली किस्त की राशि जारी की। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह राशि अगले 3 महीने के लिए जारी की गई है। इस राशि में राज्य सरकार का भी हिस्सा मिलाया जाएगा, जिससे पंचायतों का विकास आसानी से होगा। गौरतलब है कि यह राशि पूर्व में 9 महीने के लिए निर्धारित अंतरिम बजट से जारी की गई है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा और अन्य दलों की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगी। कल भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार कठोरतम दंड मिलेगा।
1: दुखड़ी में आपके हम लोग साथ खड़े हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। जो भी लोग इसमें ओवर एक्ट किए हैं या जो भी लोग जो पदाधिकारी में इसकी संलिप्तता है, उन लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसीलिए कोई विद्वेष की भावना नहीं रखिए। पूरी तरह से हम इस घटना हुई है उसमें हम सब लोग आपके साथ साथ मरमाहत हैं।
0: इधर इस घटना के मामले में अफवाह फैलाने

0: के आरोप में पुलिस ने 12 कंटेंट क्रिएटर पर मामला दर्ज किया है। पटना साइबर थाने के DSP नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत और तथ्यहीन पोस्ट के मामले में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 50 से अधिक पोस्ट को हटाया गया है। राज्य सरकार ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में बनने वाले 4 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। नगर विकास विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में नए निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह रोक अगले वर्ष 30 जून तक प्रभावी रहेगी। विभाग के अनुसार पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में प्रस्तावित टाउनशिप में पहले ही जमीन खरीद बिक्री पर रोक है। राज्य में गन्ना किसानों को आधुनिक खेती करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपए की गन्ना यांत्रीकरण योजना की स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना किसानों के बीच 3218 आधुनिक कृषि यंत्र वितरित किए जाएंगे, साथ ही 80 नए यंत्र बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैंक में न्यूनतम 7 यंत्र अनिवार्य रूप से रहेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कृषि आधारित स्टार्टअप से कॉलेज के छात्रों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत छात्रों को कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य और मधुमक्खी पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभागों की जानकारी दी जाएगी। राज्य में हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला गार्डों की तैनाती की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्वेता गुप्ता ने बताया कि राज्य के 11 जिलों में चल रहे सभी 61 वन स्टॉप सह सखी केंद्र पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मंत्री ने बताया कि पटना सहित 27 जिलों में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कोई स्थान तय नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अल्पावास गृह बंद हो गए हैं उन स्थानों पर शक्ति केंद्र के नाम से अल्पावास गृह खोले जाएंगे। राज्य में पंचायत स्तर पर मछली उत्पादक समितियों का गठन किया जाएगा। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि सहकारिता विभाग से मंजूरी के बाद पंचायत स्तर पर मत्स्य सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। श्री अशोक ने कहा कि इस समिति में पंचायत के सभी मछली उत्पादकों को शामिल किया जाएगा और समितियों के माध्यम से ही मछली की खरीद बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत मत्स्य सहयोग समिति का उपनियम बनाया जा रहा है, इसी के आधार पर समिति का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालयों में भी मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार इसके पूर्व सभी प्रखंडों में एक एक स्कूल का चयन मॉडल स्कूल के लिए किया गया है। इन मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशाला और अनुभवी शिक्षक होंगे। इसके साथ ही छात्रों को 9वीं और कक्षा से ही नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने आधार से नकद निकासी के दौरान 5,000 रुपये से अधिक की निकासी पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ OTP दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। निगम के अनुसार नए नियम के साथ 5,000 रुपये से अधिक की निकासी के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा। OTP सत्यापन के बाद पैसा निकाला जा सकेगा। इससे पहले नकद निकासी के लिए निर्धारित सीमा तक राशि निकालने के लिए केवल बायोमेट्रिक सत्यापन ही पर्याप्त था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना

0: समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही विभाग ने अरवल, बांका, गयाजी, नालंदा और नवादा समेत इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: दिनांक 6 जुलाई राज्य के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर एवं पटना जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश से राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। ज्यादातर स्थानों का तापमान 33 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मधुबनी जिला प्रशासन ने बढ़ती गर्मी और तापमान के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री स्कूल समेत वर्ग 8 तक की कक्षाओं में पठन पाठन सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक करने का आदेश दिया है। यह आदेश आज से 11 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। समग्र राज्य आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इधर प्रदेश में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। ट्रस्ट की बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब यह राम मंदिर परिसर में ही होगी। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरह पंचायत के उदा गांव से पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गया जिले के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगों को मोबाइल सिम देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से कई कंपनियों के 47 सिम कार्ड बरामद किए हैं। किशनगंज पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 516 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। वहीं जिले के कोचा धामन थाना क्षेत्र से मवेशी व्यापारी से हुई लूट की घटना के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के परसोथुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने दुकानों में चोरी करने के आरोपित मोहम्मद अजीम को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक को भी जब्त किया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पूर्णिया और कटिहार जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से प्रतिभा खोज अभियान के तहत 350 खिलाड़ियों का चयन किया है। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरण ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक आयोजित चयन शिविर में 12 से 14 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। महानिदेशक ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को एथलेटिक्स और तीरंदाजी समेत अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी क्षेत्र में खिलाड़ियों की संख्या अधिक होगी तो उन स्थानों पर नए एकलव्य केंद्र खोले जाएंगे। इस अभियान के अगले चरण में जमुई, रोहतास, पश्चिम चंपारण और कैमूर के जनजातीय बहुल क्षेत्र में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, पटना एम्स को 24 एकड़ जमीन मिलेगी, 200 बेड

0: बढ़ेंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, बांकीपुर विधानसभा सीट पर राजद के साथ कांग्रेस भी जता रही दावा, अब शीर्ष नेतृत्व सुलझाएगा पेच। दैनिक भास्कर ने अयोध्या राम मंदिर पर लिखा है, श्री राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज, चंपत राय समेत 3 ट्रस्टियों की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार। प्रभात खबर लिखता है, राज्य में इको टूरिज्म के लिए 70 जगहें बनेगी पर्यटकों की पसंदीदा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर झील और राजगीर बनेंगे प्रमुख आकर्षण। आज अखबार का शीर्षक है, 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड से बदलेगी पटना की तस्वीर, वेंडिंग जोन से न्यू मार्केट तक होगा कायाकल्प, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, पटना पालीगंज मोकामा और नौबतपुर में बनेगा अत्याधुनिक बस डिपो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत बिहार के लिए 1663.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कराएगी। और पूरे प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और
0: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। मच्छर जाली लगवाएं, जब होगा शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा, वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा और अन्य दलों की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा किए जाने की

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH

0: माध्यम से भी सुन रहे हैं।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप पंकज उदास और अनुराधा पौरवाल की आवाज में इस प्यारी से गजल को सुन रहे थे। चलिए अब करते हैं आज की थोड़ी बात। आज बाबू जगजीवन राम की यौमे वफात है। 6 जुलाई 1986 में नई दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ था। उनकी पैदाइश 5 अप्रैल 1908 में बिहार के आरा के भोजपुर जिला में हुई थी। आरा जिला के भोजपुर में हुई थी, जिस जब वो हिंदुस्तान के मुमताज मुजाहिद आजादी थे, साबिक नायब वजीर भी आजम भी थे और समाज इंसाफ के अजीम आलमबरदार भी थे। 1971 की भारत पाक जंग के दौरान वो वजीर दफाए भी थे और इन्हें हिंदुस्तान में जरई इनकलाब का मामार भी माना जाता है। 31 साल तक उन्होंने मरकजी वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए। उन्होंने 1946 में उबूरी हुकूमत के दौरान वजीर मेहनत की हैसियत से भी शानदार काम किया। वो दलितों और पसमानदा के तबकात के हुकूक के जबरदस्त हामी थे। उन्होंने उनको हुकूक के लिए आईन में रिजर्वेशन की बुनियाद रखी और छुआछूत के खात्मे के लिए उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट की तश्कील भी की। बाबू जगजीवन राम ने पार्लियामेंट में तकरीबन 50 साल तक मुसलसल बगैर किसी वक्फे के आवाम की नुमाइंदगी की और वसालत के वजीर के हैसियत से उन्होंने 1953 में भी प्राइवेट इंडिया एयरलाइंस को कौमी तहवील में लेकर इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल कायम किया। 1977 से 1979 तक के दरमियान वो हिंदुस्तान के नायब वजीर आजम रहे। तो ये थी आज की बात। चलिए अब सुनते हैं आज का रेडियो मुशारा महफिले सुकन। इसमें शामिल होने वाले शोरा हैं मोहम्मद आसिफ, इम्तियाज अहमद दानिश और मुअज्जम अली अंसारी। निजामत करेंगे इम्तियाज अहमद दानिश।
1: सामईन, आज के इस स्टूडियो मुशायरे में जो दो अहम फनकार यहाँ मौजूद हैं उसमें जनाबे मीम आसिफ आरवी जो आरा से तशरीफ लाए हैं और जनाबे मुअज्जम अज़्म जो छपरा से तशरीफ लाए हैं और खाकशार का ताल्लुक भी आरा से है। तो इससे कबल के इस सिलसिले का आगाज करूं, शायरी के मुतल्लिक नाकदीन ने अपनी अपनी राय दी है। किसी ने इसे अपने गमों का मदावा बताया तो किसी ने तज़ईन कायनात के तौर पर इसे देखा। गोया के इस ज़िम्न में शकीब जलाली का ये शेर याद आता है कि हमारी आह हमारे ही दिल की आह नहीं, न जाने कितने दिलों से निकल के आई है। इसी शेर के साथ मैं जहमत सुखन दे रहा हूँ जनाब मुअज्जम अज़्म साहब को।
2: गजल का मतला अर्ज है
1: इरशाद
2: कि हर एक जख्म को रिश्तों में ढाल कर रख दे।
1: वाह,
2: एक मतला और एक शेर बस।
1: वाह,
2: कि हर एक जख्म को रिश्तों में ढाल कर रख दे, गमों की आंच पे दिल को निकाल कर रख दे।
1: बहुत खूब।
2: हर एक जख्म को रिश्तों में ढाल कर रख दे, गमों की आंच पे दिल को निकाल कर रख दे।

0: और न जाने कितने नगीने जड़े हैं धागों में, तो ये बुजुर्गों की चादर संभाल कर रख दे।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब।
0: तो ये बुजुर्गों की चादर संभाल कर रख दे। एक मतलब दो शेर और,
1: इरशाद।
0: दुनिया की साजिशों को यूं बेकार कर दिया,
1: दुनिया की साजिशों को यूं बेकार कर दिया,
0: हमने हर एक जख्म को शहकार कर दिया।
2: क्या कहें,
0: दुनिया की साजिशों को यूं बेकार कर दिया, हमने हर एक जख्म को शहकार कर दिया।

0: होगी,
1: अजम की जीत क्यों नहीं
0: अजम की
1: होगी?
0: जीत क्यों नहीं होगी, हार का एतराफ मत
1: मत करना। बहुत खूब बहुत खूब,
0: अजम की जीत क्यों नहीं होगी, हार का एतराफ मत करना।
1: एक गजल और सुनाएं आप।
0: जी तरन्नुम में
1: इरशाद
0: के ख्वाब को जिंदगी बनाने में।

0: में उम्र गुजरी है इस
1: वाह वाह
0: फसाने
1: वाह
0: में,
1: वाह बहुत हो।
0: उम्र गुजरी है इस फसाने में कि इतना

0: दिल उजड़ता है घर बसाने में, दिल उजड़ता है घर बसाने में, मैंने ठोकर पजिस को रखा था,
1: मैंने ठोकर
0: पे जिस को रखा था, बस वही है तेरे खजाने में, बस वही है तेरे खजाने में। और ये शेर देखिए कि हम फकीरों पर क्या नए कपड़े,

0: में
1: वाह वाह वाह
0: याद भी कांपती है आने में। और मकता है कि अज़्म सौदा गिरा है ये फिर भी,
1: अज़्म सौदा गिरा है ये फिर भी।

0: बहुत बहुत
1: बहुत अच्छे
0: बहुत
1: बहुत अच्छे। हो
0: इससे कबल कि मैं
2: गया
0: जनाब मीर आसिफ आरवी को जहमत सुखन दूं, उनका एक कता बड़ा मशहूर है कि उर्दू से पूछा जुल्फ तेरी क्यों बिखर गई, संवरी थी जो कि मीर से गालिब से दाग से, कहने लगी नसीब पे रोती हूँ आज मैं, इस घर को आग लग गई घर की चाह।
2: क्या बात।
0: इस कता के साथ मैं जनाब मीर आसिफ आरवी को जहमत सुखन दे रहा हूँ।
1: मोहतरम, मेरा लहजा और मेरी गजल तंजो मजा की है। वैसे तीन चार कतात पहले समाप्त फरमा लें, उसके बाद एक नज़म आपकी खिदमत में पेश है। दुश्वार सफर पेश खिदमत है। दाग व मोमिन ज़ौक या इकबाल व गालिब की बियाज।
2: जी जी बहुत खूब।
1: दाग व मोमिन ज़ौक या इकबाल व गालिब की बियाज, इन किताबों के बहुत शैदाई थे अब्बा हुजूर।
0: वाह वाह
2: क्या बात है।
1: इन किताबों के
2: बहुत शैदाई थे
1: अब्बा हुजूर। कद्र गौहर शाह दानद, मुझ में वो खूबी कहाँ।
0: वाह।
1: कद्र गौहर शाह दानद, मुझ में वो खूबी कहाँ, अब मुताला उसका दीमक कर रहे हैं बाशऊर।
0: वाह वाह बहुत खूब।
2: वाह
0: बहुत खूब।
1: अब मुताला उसका दीमक
2: कर रहे हैं
1: बाशऊर। खत्म मुलाजा हो
0: इरशाद।
1: सबब ये है मेरी आंखों से अश्कों के बरसने की।
2: सबब ये है
1: सबब ये है।

0: मेरी आंखों से अशकों के बरसने की सितम मुझ पर खुद अपनी नस्ल के लोगों ने ढाया है। सितम मुझ पर खुद अपनी नस्ल के लोगों में ढाया है। हकीकत जो है अपने अश्क गम की मैंने बतला दी, मगर ए बर्फ और बादल तुझे किसने सताया है।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब
2: बहुत खूब
1: बहुत
2: बहुत।
0: मगर ए बर्फ और बादल
2: तुझे किसने सताया,
0: तुम क्यों टप टप किए हुआ है।
2: तुझे कितने सताया,
0: चुन चुन के समेटों तो बिखरते हैं फुदुक कर।
2: अच्छा,
0: चुन चुन के समेटों तो बिखरते हैं फुदक कर। सुनते हैं कि मेंढक की यही होती है खसलत।
1: वाह,
0: सुनते हैं कि मेंढक की
2: यही होती है,
0: यही होती है खसलत। आखिरी कता, तू भी बेटी बन के अपनी माँ की ममता में पली। तू भी बेटी बन के अपनी
1: माँ की ममता में पली,
0: माँ की ममता में पली। मुझको भी ममता का हक दे, अपना तेवर नर्म कर।
1: वाह वाह,
0: मुझको भी ममता का हक दे,
2: अपना तेवर नर्म,
0: अपना तेवर नर्म कर। मेरी मम्मी तू तिलक के खौफ से कातिल न बन। मेरी मम्मी तू तिलक के खौफ से कातिल न बन। मैं जहाँ हूँ नाम उसका रहम है तो रहम कर।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब।
0: मैं जहाँ हूँ नाम उसका रहम है तो रहम कर।
2: वाह वाह, बहुत बहुत इशारे में बहुत बड़ी बात कही गई है।
0: अब एक नज़्म है, दुश्वार सफर, चंद बंद पर मुश्तमल है। क्या सुनाऊँ एक सफर का आपको हाले जुबूं, क्या सुनाऊँ एक सफर का आपको हाले जुबूं। किस कदर रोता रहा दिल हर कदम पर, क्या कहूँ। माजरा इस रंज गम का लेके टमटम से चलूं, खुद पे या तकदीर पर इल्जाम किसके सर धरूं। ए गमे दिल क्या करूं,
2: ए वहशते दिल क्या करूं,
0: ए वहशते दिल क्या करूं,
2: क्या बात है, क्या बात है।
0: बंद मुलाजा हो, आगे बढ़ने की हिदायत कर रहा था कोचबान। आगे बढ़ने की हिदायत
2: कर रहा था कोचबान,
0: कोचबान और वो अड़ियल का टट्टू हो चुका था बेईमान।
1: वाह,
0: जिद अकड़ जारी थी दोनों शख्सियत के दरमियान। और सवारी का ये आलम, अब गिरूं के तब गिरूं। ए गमे दिल क्या करूं,
2: ए वहशते दिल क्या,
0: ए वहशते दिल
2: क्या करूं,
1: क्या करूं। बहुत खूब,
0: मन मुलाजा हो।
1: शायद
0: इस कदर टमटम का घोड़ा सुस्त था रफ्तार का, इस कदर टमटम का घोड़ा
2: सुस्त था
0: रफ्तार का। रुक गया तो रुक गया गाजी बना इनकार का।
1: वाह,
0: रुक गया तो रुक गया
2: गाजी बना इनकार,
0: यानी हर चौथे कदम पर मुंतजर था मार का। क्या मैं स्टेशन इसी से जाऊं या पैदल बढ़ूं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं।
1: बहुत खूब,
2: बहुत उम्दा।
0: 10 मिनट के इस सफर ने 1 घंटा ले लिया।
1: वाह,
0: 10 मिनट के इस सफर ने
2: 1 घंटा ले,
0: 1 घंटा ले लिया। घर से ही तकदीर शायद मुझ पे थी उस दिन खफा। क्या टिकट लेता वहाँ तो हश्र का मैदान था। और सिग्नल का को भी देखा, हो चुका है सर नगू। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। जो भी हो अंजाम, लेकिन जाके बैठा ट्रेन पर। जो भी हो अंजाम,
2: लेकिन जाके
0: बैठा ट्रेन पर। आने वाली है मुसीबत, कब थी पहले से खबर। जिस बला का खौफ था, जैसे पड़ी उस पर नजर। लर्जा तारी हो गया, गारत हुआ अमनो सुकून। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल
2: क्या
0: करूं। देख कर डब्बे में टीटी को हुई हालत खराब, देख कर डब्बे में टीटी को
2: हुई हालत
1: खराब।
0: धीरे धीरे बढ़ रहे थे मेरी जाने वो जनाब। मुझसे मांगेंगे टिकट तो क्या उन्हें दूंगा जवाब। कूद जाऊं ट्रेन से या लैट्रिन में जा घुसूं। ए गमे दिल क्या करूं,
1: ए वहशते दिल क्या करूं।
2: वाह वाह,
0: ए वहशते दिल
2: क्या करूं,
0: क्या करूं। मुझसे बोले आप भी अपना टिकट दिखलाइए। मुझसे बोले
1: आप भी अपना टिकट दिखलाइए।
0: चेक बहुत करना अभी है, देर मत फरमाइए। इस कदर घबरा रहे हैं आप क्यों, बतलाइए। थी समझ से बात बाहर, क्या जवाब उनको मैं दूं। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। देख कर मुझको परेशान वो समझ बैठे थे हाल। देख कर मुझको परेशान
1: वो समझ बैठे थे
0: हाँ।

0: और बोले फाइन लेकर 300 का है सवाल। और बोले फाइन लेकर
1: 300 का है,
0: 300 का है सवाल, आपकी वरना शराफत पर ना आ जाए जवाल, होशमंदी का तकाजा था यही देकर बचूं, ए गमे दिल क्या करूं,
2: ए वश्ते दिल क्या करूं।
0: आखिरी बंद समाप्त फरमाए, जेब में जब हाथ डाला बढ़ गई वहशत मेरी, जेब में जब हाथ डाला बढ़ गई वहशत मेरी, काट कर भागा था कोई थी बुरी किस्मत मेरी,
2: वाह,
0: काट कर भागा था कोई थी बुरी किस्मत मेरी, फिर हुआ क्या ये बताने की नहीं नीयत मेरी, इससे आगे लब खुले आसिफ तो हो इज्जत का खून, ऐ गमे दिल क्या करूं,
2: ऐ वहशत दिल क्या करूं। तो ये थे जनाब मीम आसिफ अरबी, और अब खाकसार से मैं इम्तियाज अहमद दानिश चंद अशआर आपकी गोशे गुजार, कि जमीन तो छीन ली अब आसमान रहने दे,
0: जमीन तो छीन ली,
2: जमीन तो छीन ली
1: अब आसमान रहने दे,
2: अब आसमान रहने दे, दिले हजी में शफक का गुमान रहने दे।
0: क्या कहना है, क्या कहना है, क्या बात,
2: हर एक ईंट में पोशीदा है मेरी तहजीब, हर एक ईंट में पोशीदा है मेरी तहजीब, पुरानी शक्ल में मेरा मकान रहने दे।
0: क्या कहने, क्या कहने,
2: और तमाम उम्र मुसाफत नहीं गुजरी है,
0: तमाम उम्र
1: मुसाफत मुसाफत,
2: तू अपने रुख पे सफर की थकान रहने दे।
0: क्या कहना है जनाब,
2: और यही तो आखिरी हरबा बचा है मेरे लिए,
0: यही तो आखिरी हरबा
1: बचा है मेरे लिए,
2: खुदा के वास्ते मुंह में जबान रहने,
0: क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, मुकर्रर इरशाद हो,
2: यही तो आखिरी हरबा बचा है मेरे लिए,
0: वाह वाह,
2: खुदा के वास्ते मुंह में जबान रहने दे,
0: रहने दे,
2: उन्हें भी धूप की शिद्दत का कुछ तो हो एहसास,
0: उन्हें भी धूप की शिद्दत का
2: कुछ तो हो एहसास, सरो पे शीशे का ये सायबान रहने दे, किनारे आ लगी आखिर ये कश्ती ये उम्मीद,
1: किनारे आ लगी आखिर ये
2: कश्ती ये उम्मीद, हवाए वक्त भला बाद बान रहने दे। गजल के चंद अशआर
0: इरशाद,
2: कि भाईचारे का ये दामन इस तरफ फट जाएगा,
1: वाह,
0: भाईचारे का ये दामन
2: इस तरफ फट जाएगा, क्या खबर थी एक दिन मेरा भी घर बढ़ जाएगा,
0: क्या कहना है, क्या
2: भाईचारे का ये दामन इस तरफ फट जाएगा, क्या खबर थी एक दिन मेरा भी घर बढ़ जाएगा, जिसकी शाखों पर परिंदे चहचहाते थे कभी, जिसकी शाखों पर परिंदे चहचहाते थे कभी, मेरे आंगन का घना वो पेड़ भी कट जाएगा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
1: बहुत अच्छे,
2: अपनी झूठी शान की तस्वीर में थे सब मगर, ये किसी ने भी न सोचा कद मेरा घट जाएगा,
1: बहुत अच्छा,
2: क्या खबर थी एक दिन इस जिंदगी की दौड़ में मेरा साया मुझको तन्हा छोड़कर हट जाएगा।
0: क्या कहने हैं, क्या कहने हैं,
1: बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा,
2: बस यही तोहमत तराशी हम अगर करते रहे,
0: बस यही तोहमत तराशी
2: हम अगर करते रहे, बच्चा बच्चा अपने घर का ये सबक रट जाएगा।
0: क्या कहने जनाब, क्या कहना है,
2: कि ये किसी को है कहाँ मालूम घर का इश्तहार,
0: ये किसी को है कहाँ मालूम
2: घर का इश्तहार,
1: इश्तहार
2: किस घड़ी अपने फसीले शहर पे सट जाएगा।
0: क्या कहने हैं,
2: भाईचारे का ये दामन इस तरह फट जाएगा, क्या खबर थी एक दिन मेरा भी घर बढ़ जाएगा। चंद अशआर तरन्नुम से आपके गोशे गुज़ार,
0: सुभान अल्लाह,
2: उसके बाद ज़हमत तमाम ग़ालिब की जमीन में है।
1: जी जी इरशाद,
2: कि तीर से जख्म दिल

0: दिल। ये थे हमारे आज के महफिल सुखन के फनकार, और अब मैं सामईन इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।
2: सामईन, अभी आप सुन रहे थे रेडियो मुशायरा महफिल सुखन। इसमें शिरकत करने वाले शोरा थे मोहम्मद आसिफ, इम्तियाज अहमद दानिश और मुअज्जम अली अंसारी। निजामत कर रहे थे इम्तियाज अहमद दानिश। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते चंद गजलों का लुत्फ उठाते हैं।

अभी आप जावेद अख्तर की लिखी ये गजल सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में। आइए अब अगली गजल सुनते हैं भूपेंद्र और सुरेश वाडकर की आवाज में।

अभी आप गुलजार की लिखी गजल सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाटकर की आवाज में। इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त यहीं खत्म होता है। जरीफ आत्मा को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मंजिल फिल्म के गाने से, आवाज दी है किशोर कुमार ने।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना सुनिए जयपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज में, फिल्म है सावन को आने दो।

इसी गीत के संग फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं विद्यापति गीत। आज कलाकार हैं गौतम मिश्र।

विद्यापति गीतों का आनंद अभी आप ले रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारी पहली सभा जारी है, कृपया अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से पहली सभा के कार्यक्रमों को। पहली सभा के कार्यक्रमों में अब हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं पंडित जसराज। सुनिए इनका गायन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। अब समय हो चला है, सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष श्रीवास, शिव कुमारी और राम दुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
3: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान
4: जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है। लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया

0: राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है?
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी।
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी।
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
2: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावक

0: लोगों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे अपने श्रोताओं की ओर से कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है।
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है। दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा

0: कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ, जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी,

0: इन तीनों के बीच में एक तारतम्य में एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं,
1: हाँ।
0: तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार,
1: जी
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: जी,
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी,
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें,

0: मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: तो असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया?
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी।
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8448440632 8448440632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और NCERT के वेबसाइट पर YouTube में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा, अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल हैंडसेट पर न्यूज ऑन AIR के माध्यम से। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नए फिल्मों के गाने। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं Red 2 के इस गाने से, जिसे आवाज दी है जुबिन नौटियाल ने।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नए फिल्मों के गाने। ये गाना हमने लिया है फिल्म बस एक धड़क से। श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजें हैं। रश्मि बिराग ने इस गीत को लिखा है, जावेद मोहसिन ने संगीत निर्देशन किया है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना रेड टू, आंख मिचौली, हीर एक्सप्रेस, मेट्रो, इंडिनो, माँ, बस एक धड़क और रेड। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इन फिल्मों के गाने। आवाजें थी जुबिन नौटियाल, सचिन जिगर, शाश्वत सिंह, समीर कौर, नबी सरन, पैपॉन, श्रेया घोषाल। इन सबों की आवाजों में आपने ये फिल्मी गाने सुने। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब समय हो चला है महिलाओं को संबोधित हमारे कार्यक्रम नारी संसार का। आइए सुनते हैं नारी संसार।

नारी संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को लालती का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम मौजूद हैं आपके लिए आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करते हुए फिल्म संगीत का भी भरपूर आनंद लेंगे। तो श्रोताओं, सदा की भांति आज भी हम आपको चर्चा का शीर्षक बता दें। पहला विषय है विश्व जूनोसिस दिवस और दूसरा करियर विकल्प के रूप में हस्तकला। श्रोता बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए हम बातें करते हैं विश्व जूनोसिस दिवस के बारे में। बहनों, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों से बचना या बीमारियों के प्रति जागरूक करना है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती है। ऐसी बीमारियों को जूनोसिस कहा जाता है। बहनों, इन दिन को मनाने की शुरुआत महान वैज्ञानिक लुईस पाश्चर द्वारा 6 जुलाई 1885 को रेबीज के पहले सफल टीके के प्रयोग की स्मृति में की गई थी। यह उपलब्धि चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। श्रोता बहनों, जूनोसिस रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या फंगस के माध्यम से फैल सकते हैं। इनके प्रमुख उदाहरणों में रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और कुछ अन्य संक्रामक रोग शामिल हैं। ये रोग संक्रमित पशुओं के संपर्क, उनके काटने, दूषित भोजन या दूषित पानी के माध्यम से पशुओं तक पहुंच सकते हैं। बहनों, विश्व जूनोसिस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों का पशुओं के साथ सुरक्षित व्यवहार, पशुओं के नियमित टीकाकरण, स्वच्छता तथा रोगों की रोकथाम के उपायों के प्रति जागरूक करना है। यह दिवस

मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाता है। श्रोताओं, जूनोसिस से बचाव के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, पालतू पशुओं को समय पर टीका लगवाएं। दूसरा, पशुओं के संपर्क के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं। तीसरा, स्वच्छ और सुरक्षित भोजन का सेवन करें। चौथा, बीमार पशुओं से दूरी बनाए रखें और पशु चिकित्सक की सलाह लें। पशुपालन स्थलों पर स्वच्छता का भी ध्यान रखें। श्रोता बहनों, आज के समय में विश्व जूनोसिस दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि कई नई संक्रामक बीमारियों का संबंध पशुओं के से पाया गया है। इसलिए जन जागरूकता, सतर्कता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर इन रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बहनों, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जागरूकता, स्वच्छता और समय पर उपचार के माध्यम से जूनोसिस रोगों के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो बहनों, आगे पुनः हम आपसे बातचीत करेंगे। आइए अब लेते हैं फिल्म संगीत का आनंद।

प्यारी बहनों, हम आशा करते हैं कि ये गीत आपको अच्छा लगा होगा। आइए पुनः हम अपने कार्यक्रम में कुछ बातें करें। विषय है करियर विकल्प के रूप में हस्तकला। श्रोता बहनों, आज के समय में रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक क्षेत्र है हस्तकला। हस्तकला केवल कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह रोजगार, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। श्रोताओं, बदलते समय के साथ हस्तकला ने एक प्रभावशाली करियर विकल्प का रूप ले लिया है। हस्तकला का अर्थ हाथों से विभिन्न प्रकार की उपयोगी एवं सजावटी वस्तुओं का निर्माण करना है। इसमें मिट्टी के बर्तन, बांस, लकड़ी की वस्तुएं, कढ़ाई बुनाई, जूट उत्पाद, आभूषण निर्माण, पेंटिंग, खिलौने, वस्त्र सज्जा तथा अनेक प्रकार की कलात्मक वस्तुएं शामिल हैं। श्रोताओं, भारत की हस्तकला विश्वभर में अपनी स्वतंत्रता, विशिष्टता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हस्तकला के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए रचनात्मक सोच, धैर्य, कौशल और नवीनता की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में हस्तनिर्मित वस्तुओं की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है। लोग मशीन से बनी हुई वस्तुओं की अपेक्षा हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुओं को अधिक पसंद करने लगे हैं। यही कारण है कि हस्तकला कलाकारों के लिए नए अवसर लगातार विकसित हो रहे हैं। श्रोताओं, हस्तकला के क्षेत्र में व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार कर उन्हें देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता भी

हस्तशिल्प कलाकारों को प्रोत्साहित करती है। श्रोतावनों, हस्तकला के क्षेत्र में प्रशिक्षक, डिजाइनर, उत्पाद विकास विशेषज्ञ, उद्यमी तथा निर्यातक के रूप में भी कार्य किया जा सकता है। अनेक शिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र हस्तकला से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, जहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा अपने कौशल को और अधिक निखार सकते हैं। श्रोता बहनों, महिलाओं के लिए हस्तकला एक अत्यंत उपयोगी करियर विकल्प है। घर पर रहकर भी वे विभिन्न हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है। श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तकला रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही है। श्रोता बहनों, हस्तकला एक कला ही नहीं बल्कि सम्मानजनक जीविका का माध्यम भी है। यह व्यक्ति को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है तथा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। तो बहनों, आगे पुनः हमारी बातचीत होगी आपसे। आइए फिर अब चलते हैं संगीत की दुनिया में, आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी संसार। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं छोटी मुलाकात आधारित वार्ता आरती जी से।

नमस्कार, मैं आरती और आप सुन रहे हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। बहनों, गर्मी के मौसम में महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाइड्रेट रहने के लिए 8 से 10 गिलास पानी पीना भी जरूरी है, साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ पिए। इसके अलावा तरबूज, खीरा, संतरा जैसे पानी से भरपूर फल और सब्जियां खाए। भारी तैलीय और मसालेदार भोजन से बचे। हल्का सुपाच्य खाना ले। बाहर निकलते समय त्वचा की रक्षा करे। शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त पानी पीते रहे। बहनों, दही, छाछ, लस्सी और ठंडा दूध पिए, ये पेट को ठंडा रखते हैं और पाचन में मदद करते हैं। जी हाँ, पौष्टिक आहार, कच्चे सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और मौसमी फल जैसे तरबूज और खरबूजा खाए। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन कम करें, इनसे पानी की कमी हो सकती है। बाहर निकलते समय सीट ढके और सन स्क्रीन का इस्तेमाल करें। बहनों, मैं आपको बता दूं कि शरीर हाइड्रेट रह सके इसके लिए फल और सब्जियों के साथ ही और कौन सी चीज़ है जिसके सेवन से गर्मी से बचा जा सकता है। धीरे धीरे तापमान बढ़ने के साथ ही इसका सीधा असर शरीर और त्वचा पर भी पड़ने लगता है। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे सूर्य की तेज किरणों से बचा जा सके। तेज गर्मी की वजह से ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन और स्किन जलने की समस्या आम तौर पर होती है। ऐसे में हमें गर्मी से बचाव के लिए अपनी स्किन के साथ ही हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, आइए मैं आपको बता देती हूँ।

इस मौसम में खीरा तरबूज जैसी चीजें में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इसके सेवन से भी गर्मी से बचा जा सकता है। गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से बचना चाहिए। ऐसे में हमें नींबू पानी और नारियल पानी और बेल के शरबत का सेवन करना चाहिए, जो पेट को ठंडा रखने के साथ गर्मी से शरीर को बचाता है। प्राकृतिक चीज़ों से हमें फ्लेवर मिलेगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसका सेवन बच्चों के साथ ही किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। ऐसा करके आप हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। इससे आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। खासकर इस मौसम में रात का बचा हुआ यानी कि बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे में गर्मी के दिनों में ताजा और फ्रेश खाना खाना चाहिए। इसके अलावा हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन चुनें। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और ताजी सब्जियों के साथ सलाद शामिल करें। वसा युक्त भारी और मसालेदार खाद्य पदार्थों से दूर रहे, क्योंकि ये आसानी से शरीर की गर्मी बढ़ा सकते हैं। अपने खाने में पुदीना, धनिया और तुलसी जैसी ठंडक देने वाली जड़ी बूटियां शामिल करें। ये जड़ी बूटियां न केवल स्वाद बढ़ाती है, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाती है। बहनों, मीठे पेय पदार्थ की जगह नारियल पानी पिए और मसालेदार खाने से बचें, क्योंकि ये शरीर की गर्मी बढ़ा सकते हैं और गर्मी में आपको ज़्यादा असहज महसूस करा सकते हैं। बहनों, मैं कहती हूँ, इस मौसम में पानी तो जान है। आम तौर पर बच्चे पानी पीने को लेकर सचेत नहीं होते हैं। अगर प्यास लगी तभी वे पानी पीते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे इस मौसम में पानी खूब पिए। गर्मियों में 3 से 5 लीटर पानी तक की ज़रूरत बॉडी को होती है। ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा आउटडोर गेम्स खेलने जा रहा है तो उसके हाथ में कम से कम 1 लीटर पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए।

श्रोता बहनों, अभी आप सुन रहे थे छोटी मुलाकात आधारित वार्ता। वार्ताकार थी आरती जी और विषय था गर्मी के मौसम और आहार। हम आशा करते हैं कि इस वार्ता से आपको बहुत सीख मिली होगी। तो बहनों, अब कार्यक्रम में समय हो चला है हर दिन कुछ खास का। हर दिन कुछ खास में आज हम बातें करते हैं जिसका विषय है सही आहार का महत्व। प्यारी बहनों, कहा भी गया है कि जैसा आहार वैसा विचार। अमूमन लोग मानते हैं कि आहार केवल मुख से ही ग्रहण किया जाता है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। केवल मुख से लिया जाने वाला आहार ही नहीं, किसी भी कर्मेंद्रिय से हम जो भी ग्रहण करते हैं वह हमारी आत्मा के लिए एक प्रकार से आहार ही है। हमारी आँखें जो हमारी आत्मा का दर्पण मानी जाती है, यदि हम बार बार गलत चीज़ें देखते हैं तो धीरे धीरे हमारी नैतिकता और सोच पर गहरा असर डालती है। यही हाल कानों का भी है। हर दिन हम सैकड़ों गाने सुनते हैं, पर यदि वे गाने भावनात्मक रूप से उत्तेजक या नकारात्मक हैं तो वे हमारे भीतर ऊर्जा भर सकते हैं। इसी तरह जब हम गलत संगत में बैठकर गलत बातें सुनते हैं तो वे भी हमारी मानसिकता को दूषित कर देते हैं। श्रोता बहनों, जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार का चयन करते हैं, उसी तरह हमें मानसिक और आत्मिक आहार के लिए सही सामग्री का चयन करना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायी संगीत सुनें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं। श्रोताओं, अपने जीवन में यह बदलाव लाने से हमारी सोच शुद्ध होगी और आत्मा शांत।

0: उद्योग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली।

ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव के 231 .5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। इस सभा के कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद हम आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 1:15 से और पुनः समाचारों के बाद 2:30 से। 2 बजे प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 2:10 समय होगा रोजगार सूचना का। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

इस सभा में 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत। एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। तरुण कुसुम युवानी के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5 बजे। फिल्म संगीत 5:40 से। हिंदी समाचार 6 बजे। विद्यापति गीत 6:10 पर और मैथिली संवाद 6:25 पर।

अनुभव के चश्मा सौ गामघर के अंतर्गत सुनेंगे आप ये कार्यक्रम। गामघर में आज आप सुनेंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। समय होगा 6:23 और 7 बजे खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा हम करेंगे जापानी पुदीना की आधुनिक खेती और समसामयिक कृषि कार्य पर। से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:47 समय होगा जिले की हलचल का और 7:52 पर पुनः फिल्म संगीत के साथ हम उपस्थित होंगे। सिंगरहार का समय होगा 8:15 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये जानकारियां थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की।

0: सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवाते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, बलवीर और साथियों को, फिल्म हंसते जख्म में। कैफी आदमी का लिखा ये गीत था, संगीत निर्देशन मदन मोहन का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं दिल तो पागल है फिल्म से, उदित नारायण और लता मंगेशकर के

संगीत निर्देशन मदन मोहन का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं दिल तो पागल है फिल्म से उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।

हमको दीवाना कर गए। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। शब्द रचना समीर की थी और संगीत रचना हिमेश रेशमिया की। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। गीत समीर का लिखा हुआ है और संगीत जतिन ललित का है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। यह शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। शिविर में चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा और अन्य दलों की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, संगठन महामंत्री भीखूभाई तलसानिया और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा की फीस वापसी

के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा इस महीने की 7 तारीख तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़ा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। वहीं भोजपुर जिले के बेहिया पीटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 327 पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती हुकूमत अब आम लोगों की शिकायतों के फौरी हल के लिए हर एक माह के दूसरे मंगल को पटना में रियासत सतही सहयोग शिविर मुनाकिद करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट अहाता वाक़े संवाद भवन में होगी। ये खसूसी शिविर उन दरख्वास्त दहिंदों के लिए होगा जो ज़िला सतह पर मुनाकिद सहयोग प्रोग्राम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसले के हल से मुतमईन नहीं हैं। शिविर में मुंतखब दरख्वास्त दहिंदों की शिकायतों का जायज़ा वज़ीर आला सतह पर लिया जाएगा। दरख्वास्त सहयोग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन की जा सकेगी। दरख्वास्त दहिंदा अपने पहले से दर्ज दरख्वास्त के हवाला नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी कंफर्म करके दरख्वास्त का अमल पूरा कर सकते हैं। मुंतखब दरख्वास्त गुजार को शिविर की तारीख, वक्त और दूसरी ज़रूरी मालूमात एसएमएस के तवसुत से भेजी जाएगी। मजीद मालूमात हेल्पलाइन नंबर 1100 के तवसुत से हासिल की जा सकती है। पटना ज़िला की बांकीपुर असम्बली सीट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 13 जुलाई तक पर्चा भर सकेंगे। 14 जुलाई को पर्चों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 जुलाई है। वोटिंग 30 जुलाई को होगी, वहीं वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस्तीफा के सबब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इस सीट के लिए जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी और दीगर जमातों की तरफ से जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किए जाने का इम्कान है। भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें कौम परस्ती और बेलौस खिदमात की अलामत बताया है। जनाब मोदी ने एक आर्टिकल में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी अखंड भारत के लिए वक्फ थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत देते हुए कहा कि वह कौम की यकजहती, सालमियत और सकाफती नेशनलिज्म के ज़बरदस्त हामी थे। पटना वाक़े बीजेपी के रियासती सदर दफ्तर में इस मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में पार्टी के रियासती सदर संजय सरावगी, तंजीमी सेक्रेटरी भीखू भाई दिलसानिया और एमपी रविशंकर समेत कई रहनुमाओं ने डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया। मानसून की सरगर्मी से रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे ज़्यादा 47.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान दर्जे हरारत में कोई नुमाया तब्दीली नहीं होगी। कौमी इम्तहानात एजेंसी NTA ने कौमी

बैंक ऑफ इंडिया। कुल 779 यानी 779 पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन शुरू होने की तिथि है 30 जून 2026। आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 20 जुलाई 2026। आयु सीमा 25 साल से 45 साल के बीच है। ऑफिशियल वेबसाइट है bankofindia.bank.in। SBI ने कुल 1500 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 18/6/2026 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 8/7/2026 यानी 8 जुलाई 2026 तक है। आयु सीमा 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच। ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in। रेलवे RRB टेक्निकल एग्जामिनेशन के माध्यम से कुल पद 6557 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। आवेदन की तिथि है अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026। आवेदन 30 जून 2026 से प्रारंभ है। आयु सीमा है 18 वर्ष से 30 वर्ष ग्रेड 3 के लिए और टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। आप इसके लिए RRB के वेबसाइट पर जाकर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

JKSSB कुल 130 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। आवेदन शुरू होने की तिथि 22 जून 2026 है और आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। इसके लिए आप विशेष जानकारी वेबसाइट JKSSB

0: hb.nic.in पर ले सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर अपने मोबाइल हैंडसेट और रेडियो सेट पर आप हमें सुनते हैं। सुनते रहिए हमारे सभी कार्यक्रमों को। और फिलहाल चलते हैं दिल्ली केंद्र दोपहर समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया।

0: गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ

0: यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है।

0: और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अभिजीत अलका याग्निक की आवाजों में, समीर का लिखा ये गीत, अनु मलिक के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बादशाह से।

आप सुन रहे थे फिल्म सड़क का ये गीत मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिल्म संगीत अभी आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। आइए अब आनंद लें लोक गीतों का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शारदा सिन्हा, अरविंद कुमार झा और विभा

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आज के लोकगीत में आपने सुना शारदा सिन्हा, अरविंद कुमार झा और विभा सिन्हा को। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20

चुके हैं, समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं कि
1: हटा
0: नहीं भाई ये
1: सकते
0: हमारे
1: हैं
0: लिए
1: जी,
0: आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किल है। देखिए, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने के, 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या नहीं करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें थोड़ा सा पैसा, पैसे की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे,
0: बच जाएंगे। और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो है दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देते थे, या अपने साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और आप अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए, आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
0: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाले की, अब कुछ कुछ तो कर ले कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
1: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल
0: शांत हो जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया राशि

0: बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इस ये सब भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है। शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा। सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, ईएमआई, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयां। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखकर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखते हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के जमाने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी जरूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात,
1: माँ तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी है, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है, और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था, पैसा पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर रख देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दें, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दें। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल रखी है। और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहां की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के, कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहां पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती
1: हैं, कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है, उसको कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर K.M. मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है,

0: और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
1: बिल्कुल, और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते हैं क्या
1: एक गीत।

0: चोरी हो चोरी ताली पलक पिया मूरी।
1: ऐसे ही जो काली काली घटाएं है ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखारानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
2: बिल्कुल, हमारे साथ ही लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहां पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम जामुन अमरूद नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां, शहद, फल जामुन आंवला बेल आदि, मेवे मशरूम बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद लाख राल ये सब चीज़ें इन सब में, घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए, और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहाँ पर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
1: बिल्कुल, सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़े?
2: कोई भी पढ़ सकता है,
1: पढ़िए आप पढ़िए।
2: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी, 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, आधा चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। 1 कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज

0: सुनहरा होने तक भूने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी। तलने के लिए तेल लेना है आपको। मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं। दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें। आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें। छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो, और गर्म तेल में मध्यम तेज आंच पर गर्म तेल करें, और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए, और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें। और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं, और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
1: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे अरे

0: तो साथियों आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है जंगल की, जो हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहां पर उन्हीं पत्तों पर वहां की सब्जियां साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियां और जंगली पत्तों पर बैठकर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन

0: ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहां जाके देख सकते हैं, वहां पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है ना।
1: तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।
0: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से, तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है, पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक

0: ओरियन सिंड्रोम, जो पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज, और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है, ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें, खतरा क्या है?
0: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है, फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे बहुत आगे चल के इंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस?
0: पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी, तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है, और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है
1: जी।
0: ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
0: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है, और इरेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना, कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी।
0: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
0: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम, एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: अच्छा, एक पैर का नगमा,
1: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: देते थे, अभी लैक्टोज देते हैं, टेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी थ्री, ओमेगा थ्री, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका टिबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक ही चीज ही टेस्ट रहता है
1: जी।
0: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
1: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीसीओडी और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
0: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है। तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
1: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
0: यूएचजी में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
1: जी,
0: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको
1: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
0: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
1: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
0: अजीब दास्ता।
1: अजीब दास्ता है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसिलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसिलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसिलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली। जब वो अच्छे से समझाते हैं तादा काम इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है। और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: हाँ। तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्जा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जिसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज
0: जी,
1: और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3-4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाय आलमंड, व्हाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर,

0: सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शुगर. शुगर एकदम बंद. पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं. शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें राइस जैसे
1: जी.
0: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो. तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है. गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं. और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन डी,
1: विटामिन डी धूप से
0: सनलाइट.
1: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
0: बहुत कमी है.
1: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं. तो धूप सेकना बहुत जरूरी है. धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से. आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना.
0: नहीं नहीं, जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है.
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है.

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीजें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: हाँ
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के ट्रांसफर के लिए
1: ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना
1: चाहिए? फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी
1: को, हाँ, तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए।
0: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर
1: खाए। फल जरूर खाए। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी
1: मीठा, हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
0: वो खा सकते हैं,
1: खा सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
1: हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, अनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: हाँ। चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं।
1: हाँ।
0: जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं, तो आप क्या कहेंगे किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाता
1: है। हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गया। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है।

0: और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
1: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: गर्भाशय में सिस्ट
1: तो
0: बन जाता है,
1: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
0: गर्भाशय रहता, गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएं रहती है और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 20 और 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर न आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओवरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
1: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
0: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है।
1: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
0: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
1: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: सुरमई अखियो,
1: सुरमई अखियो में
0: नन्ना मुन्ना
1: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है, पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ, आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: जो परक्टली
1: उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में।
0: तो इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ, पीरियड से सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्री बीज अंडा, और फिर बाद में।
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, तकलीफ तो होती है उनको।
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना?
1: एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते,

0: वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकेंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट लास्ट है
1: जी,
0: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
1: जी। जी तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
0: हाँ होती है, पीसीओडी में पीरियड से रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है। कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
1: जी,
0: ये भी होता है
1: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी और...
0: हाँ नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
1: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
0: कम
1: होती
0: हो
1: है,
0: जाती है स्केंट पे।
1: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
0: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो महिलाएं

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। इस समय शाम के 5 बजे हैं। इसी के साथ अब आरंभ होती है आज की हमारी ये संध्याकालीन सभा। सभा के आरंभ में युवाओं के लिए सुनिए हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम।

अपनी ज़िंदगी की हर परेशानियों को जल्द से जल्द दूर भगाएं, उनकी ज़िंदगी में खुशियां आएं, बस इतनी ही तो ख्वाहिश है ईश्वर से आप सभी सुनने वालों के लिए हमारी। एक बार फिर शाम 5 बजे से शाम 5:40 तक हम करेंगे आपके साथ ऐसी बातें जिनसे हमारी जिंदगी सवरती है। साथ ही साथ युवा दोस्तों, आप जानते हैं कि सभ्यता संस्कृति ये एक ऐसी चीज है जो हम खुद बनाते नहीं, ये हमें विरासत में मिलती है। हमारी जिंदगी की खूबसूरती को यह और ज्यादा बेहतर करती है। जड़ों से जुड़ी हुई यानी माटी की सौंधी खुशबू लिए प्यारे प्यारे लोकगीत हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए ना बिना देर किए हुए सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, बारिश के समय की भी शुरुआत हो गई है, ये कजरी चंद्रिका कुमारी का गाया हुआ।

तरुण कुसुम इस कार्यक्रम के आज के इस अंक को सुनने वाले आप तमाम युवा दोस्तों को आपके इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं युवा दोस्तों? बिल्कुल अच्छे होंगे भाई। हम तो ईश्वर से हमेशा दुआ करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले युवा श्रोता, तमाम रेडियो लिसनर्स

सकी है शाम नहीं घर आए, बदरा घिर घिर आए ना। सच में ये काले बादल आसमान में तो सुबह से ही छाए हुए हैं, लेकिन बिना बरसे ही ये हमसे दूर चले जाते हैं। बारिश का इंतजार खेत खलिहानों को भी है, किसानों को भी है। कहते हैं ये बारिश की बूंदे जो नई जिंदगी को जन्म देती है, हरियाली और खूबसूरत की जो जननी होती है। चंद्रिका कुमारी का गाया ये प्यारा सा कजरी हम आपको सुनवा रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। युवा दोस्तों, कोई भी चीज तभी खूबसूरत है जब हम स्वस्थ हों, अच्छे हों, खुद बेहतर महसूस करते हो। कहते हैं खुशियां भी तभी अच्छी लगती हैं जब हम स्वस्थ हो, हमारे घर में सभी लोग स्वस्थ हो। स्वास्थ्य जो है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा धन है। बड़े बड़े धनवान भी इस स्वास्थ्य रूपी धन के लिए तरसते हैं। अपने बेहतर स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखिए। इन दिनों मौसम लगातार बदल रहा है, अचानक तेज धूप, चिलचिलाती गर्मी, फिर बारिश की बूंदे, अचानक तेज हवाएं, ये सब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। तो ऐसे में हमें हमेशा ख्याल रखना है। देखिए, अब मान लीजिए कि तेज धूप में हमें जरूरी है घर से निकलना, भाई काम करना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ाई लिखाई के लिए अपने स्कूल कॉलेज जाने हैं, तो धूप की परवाह किए बगैर तो घर से निकलना ही होगा। लेकिन भाई साहब, हम थोड़ी सी सुरक्षा तो कर सकते हैं ना, थोड़ी सी सावधानी तो बरत सकते हैं ना। जो हमारे हाथ में है, संभव है, वो तो हम कर सकते हैं ना। हमारे हाथ में संभव है कि हम अपने सर को ढककर ही धूप में निकलें, पानी खूब मन भर पी लें ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। गर्मियों के दिनों में अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से गर्मी के मौसम में भी आप और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अगर बहुत तेज धूप में आपको सफर के लिए निकलना है, अगर आप पैदल सफर के लिए निकल रहे हैं, तो सर तो ढके ही, संभव हो तो छाता भी जरूर रख लें। ये जो छाता है ना, ये आपको तेज धूप ही नहीं बरसात से भी बचाता है। तो दोस्तों, छोटी छोटी जो सावधानियां है ना, वो बड़ी बड़ी परेशानियों से हमें बचा लेती है। लगता है ना कि क्या भाई साहब छाता लेके जाएंगे, हाथों में बोझ हो जाएगा। अरे सर, ये बोझ नहीं है, ये हमारी सुरक्षा है। और अपनी सुरक्षा का ध्यान हमें खुद ही रखना होगा। बार बार कोई आकर हमें नहीं समझाएगा। कहते हैं जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हमें अपने लिए भले बुरे का फैसला स्वयं करना पड़ता है। हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग हमें किस तरह से करना है ये तो हम पर निर्भर करता है ना। ढेर सारी प्यार भरी बातें जारी रहेगी युवा दोस्तों, फिलहाल ये प्यारे प्यारे लोकगीत आप तक पहुंचाते हैं।

तरुण कुसुम इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं माटी की सौंधी खुशबू लिए प्यारे प्यारे लोकगीत। युवा श्रोताओं के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आकाशवाणी दरभंगा से शाम 5 बजे से 5:40 के बीच। युवा दोस्तों, छोटी छोटी बातें जिंदगी को बेहतर करती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि भाई इन छोटी बातों का क्या असर पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग कभी गलत नहीं होते। उन्होंने हमें हमेशा कहा है कि बेटा बूंद बूंद से ही तालाब बनता है। एक घड़ा जो होता है खाली हो, बूंद बूंद टपकते टपकते एक दिन ऐसा आता है कि वो घड़ा लबालब भर जाता है। हमारी आपकी जिंदगी भी उस घड़े की तरह है जो बिल्कुल खाली है। हम उसमें क्या डालते हैं, क्या भरते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। कहते हैं कि दोस्तों, हम केवल भोजन जो करते हैं ना, उसका ही असर हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क पर नहीं होता। हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम कैसी बातें करते हैं, ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है, हमारे सोच को निर्धारित करती है। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छे लोगों की संगति में रहने पर आप भी अच्छे बन जाते हैं। अगर वहीं आप बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो आप में भी बुराइयां प्रवेश कर जाती है, पता भी नहीं चलता आपको। आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बुरा नहीं बनूंगा, लेकिन कब बुरी आदतें आपके अंदर चली आती हैं आप समझ ही नहीं पाते। इसलिए जिंदगी में जब भी कभी लगे कि भाई जिंदगी में बहुत सी चीजें हमने आज तक क्यों नहीं सीखा, अरे हम तो पिछड़ गए, हम तो छूट गए। देखिए, ये जिंदगी है। आप जिस दिन जिस पल ये सोच लेते हैं, ये फैसला कर लेते हैं ना कि मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ये समझना है, वो जो पहला पल होता है, जो वो जो पहली शुरुआत होती है ना, उसी दिन से आप सफलता के करीब पहुंचने लगते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को जो बेहतर है जिंदगी में, उसे जरूर अपनाइए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, औरों की जिंदगी को भी खूबसूरत बनाइए। एक बार फिर इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपका ये रेडियो हम सफर। कखने

युवा दोस्तों, बचपन में याद होगा जब हम अक्षर ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे, शब्दों को बनाना सीख रहे थे, बड़ा भारी लगता था। आज जिन चीजों को देखकर हम मुस्कुराते हैं ना, कह रहे ये तो हमारे लिए बड़ा ही आसान काम है। याद कीजिए, उन्हें आसान चीजों को सीखने में कितनी मेहनत लगी हम सबको। पहले

बचपन में वो चीज़ें जो हमें बहुत भारी लगती थी, जैसे जैसे हमने उसका अभ्यास किया, निरंतर अभ्यास किया, मेहनत की, तो वो चीज़ जो कल तक भारी लग रही थी अब वो बड़ा ही आसान लगता है। और हम लोगों को भी उसके बारे में बताते हैं, समझा पाते हैं। जिंदगी में हर वो चीज़ जो आज हमें भारी लग रही है ना, वो केवल इसलिए कि उसके समझने या उसको सीखने की शुरुआत हमने अब तक नहीं की है। दुनिया में

जिंदगी में हर वो चीज़ जो आज हमें भारी लग रही है ना, वो केवल इसलिए कि उसके समझने या उसको सीखने की शुरुआत हमने अब तक नहीं की है। दुनिया में कोई भी काम भारी नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो भारी या मुश्किल तभी तक है जब तक हमने उसे जानने समझने की कोशिश नहीं की, शुरुआत नहीं की। बिल्कुल निराश मत होइए। मैंने ऐसे युवाओं को भी देखा है कॉलेज में, स्कूल में, जो बेहतर मार्क्स नहीं ला पाते थे, बेहतर श्रेणी नहीं ला पाते थे। लोग समझते थे कि अरे यार, इसकी तो अच्छी श्रेणी भी नहीं रहती है, बस पास कर जाता है किसी तरह से। वैसे बच्चों ने, वैसे युवाओं ने भी खुद की मेहनत के बल पर अपने ही कक्षा के उन छात्रों से भी ऊंचा मुकाम हासिल किया, जो जब वो साथ पढ़ते थे ना, तो श्रेणी की जो बात होती है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो उनके वैसे दोस्त जो प्रथम श्रेणी लाया करते थे, वे भी उस मुकाम को नहीं पहुंच पाए जहां वे बच्चे पहुंच गए, जो भले ही स्कूल कॉलेज में थोड़े पिछड़े थे, लेकिन बाद में उनकी तैयारी ने उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी सफलता दिलाई है। इसलिए कभी हार मत मानिएगा, ईमानदारी से समर्पित होकर बस सीखने की, समझने की कोशिश करते रहिएगा। देखे ना, जिंदगी में सफलता ज्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकती। वादा कीजिए कि आज से ही उन तमाम चीजों को सीखने और समझने की आप कोशिश करेंगे जो आपको डराती है, जो आपको लगता है कि बहुत भारी है, मुश्किल है। आज वादा कीजिए ना युवा दोस्तों, अपने इस रेडियो हम सफर से, कि आप सब जिंदगी में अपने सिलेबस के उन सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आज जो चीजें भारी लग रही है वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। आप बेहतर चीजों को सीखते हैं ना, तो आप जैसे युवा दोस्तों से हम सबों को भी तो सीखने का मौका मिलता है ना। जिंदगी में कोई भी संपूर्ण नहीं होता भाई साहब, कुछ ना कुछ अधूरापन हर इंसान में होता है, और कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ना कुछ बेहतर गुण हर युवा में होता है। ये बात मैंने कई बार कहा है, आप हर युवा कुछ ना कुछ एक ऐसे विशेष गुण को लेकर इस धरती पर आए ना, जो सामने वाले में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। जरूरत है आपको आपके उस विशेष गुण को पहचानने की। देखे ना, कोशिश कीजिए ना, पहचानिए ना अपने गुण को। जिंदगी में आपसे बेहतर और कोई दूसरा नहीं हो सकता।

युवा दोस्तों, घड़ी की सुई इस कार्यक्रम में और ज़्यादा देर बने रहने की हमें इजाज़त नहीं दे पा रहा। आज तरुण कुसुम इस कार्यक्रम में जिन कलाकारों के गाए लोकगीत हमने आपको सुनवाए, वे थे गुणेश्वर दास, अरविंद कुमार झा, ओम प्रकाश सिंह और चंद्रिका कुमारी। इसके साथ ही तरुण कुसुम इस कार्यक्रम के आज के इस अंक से दीजिए अपने इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर को विदा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे थे हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। शाम के 5:40 हो चुके हैं और आकाशवाणी दरभंगा से ये समय है चंद गीत और गजलों का। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गाना, गायक कलाकार हैं कुणाल गंजावाला। गीत रचना सुब्रत सिन्हा की है और संगीत प्रीतम का।

हिमेश रेशमिया को आप सुन रहे थे। ये फिल्म थी रेडियो। सच में दोस्तों, हमारा ये जो मन है ना, एक रेडियो की तरह ही तो है। कई स्टेशन है इस मन में, कोई दुख के, कोई सुख के, कोई अपनेपन के। चंद गीत और गजलें आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

अपने सुनने वालों को याद दिला दें, आज की हमारी सभा में रात 10 बजे आप सुनेंगे अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय याद रखें, आज ही रात 10 बजे से 11 बजे के बीच।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आप सुन रहे हैं आज की हमारी सायंकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय शाम के 6 होने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया

0: शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, जानकारी प्राप्त कीजिए। आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे महाकवि की रचनाएं विद्यापत गीत। ग्रामीण भाइयों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा गांव घर अपने निर्धारित समय 6:30 से। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमारा कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सा। खेती गृहस्थी किसान भाइयों का ये कार्यक्रम होगा 7:00। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा जापानी पुदीने की आधुनिक खेती, साथ ही मौसम संबंधी ताजा जानकारियां भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान श्रोता प्राप्त कर सकते हैं। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम 7:00 प्रसारित किया जाएगा। 7:30 पर प्रादेशिक समाचारों का समय होगा।

से हम अपने पटना केंद्र से लेकर आपको सुनवाएंगे और शाम 7:47 पर जिले की हलचल आप सुनेंगे, इसे भी हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। कुछ प्यार भरे फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर फिल्म संगीत के हमारे कार्यक्रम में। रात 8:15 ये समय होगा हमारे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार का। रात 9:30 पर श्रोता सुनेंगे पब्लिक स्पीक, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और आज रात 10 श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। रात 10 से 11 के बीच प्रसारित होने वाले हमारे इस कार्यक्रम में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो हमारा ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9430029353 यानी 9430029353। हेलो आकाशवाणी, ये जीवंत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 से।

दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए अवश्य करें। यातायात नियमों का पालन जहां हमें सुरक्षित रखता है, वहीं ये सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीरों की जान को भी बचाता है। बारिश के इन दिनों में छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें। उन्हें ऐसी जगह खेलने जाने से मना करें जहां पानी से भरे हुए गड्ढे हो, या जेसीबी द्वारा खोदे गए ऐसे गड्ढे जिनमें जल भराव हो।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप के माध्यम से अब हम आपके स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध हैं। आप हमें अपने मोबाइल सेट पर भी सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप के माध्यम से। शाम के 6:10 हुए हैं, समय हो चला है महाकवि की रचनाओं का। सुनिए विद्यापति गीत।

अभी आप सुन रहे थे महाकवि की ये रचनाएं विद्यापति के गीत। आज विद्यापति गीतों के कलाकार थे। कुंज बिहारी मिश्र, काशीनाथ झा किरण और गौतम मिश्र। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी बैजू कुमार झा। राज्य सरकार आब आम लोकक शिकायत केर त्वरित समाधान लेल सभ मासक दोसर मंगल केँ पटना मे राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करत। एकर शुरुआत 14 जुलाई सँ मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन मे होयत। ई विशेष शिविर ओहि आवेदक लोकनिक लेल होयत जे जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम मे शिकायत दर्ज करैलाक बादो समाधान सँ संतुष्ट नहि छथि। शिविर मे चयनित आवेदक लोकनिक शिकायत सभक समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर कयल जायत। आवेदन सहयोग पोर्टल केर माध्यम सँ ऑनलाइन कयल जा सकत। आवेदक अपन पहिने सँ दर्ज आवेदनक रेफरेंस नंबर आ मोबाइल नंबर केर माध्यम सँ OTP सत्यापन कऽ आवेदन प्रक्रिया पूरा कऽ सकैत छथि। चयनित आवेदक लोकनिकेँ शिविरक तिथि, समय आ आन आवश्यक जनतब SMS केर माध्यम सँ पठाओल जायत। बेसी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 केर माध्यम सँ लेल जा सकैत अछि। पटना जिलाक बांकीपुर विधानसभा सीट केर उपचुनावक लेल अधिसूचना जारी होयबाक संगहि नामांकनक प्रक्रिया आइ सँ शुरू भऽ गेल अछि। प्रत्याशी 13 जुलाई धरि नामांकन कऽ सकता। 14 जुलाई केँ नामांकन पत्रक जांच होयत। नामांकन वापसीक अंतिम तिथि 16 जुलाई अछि। मतदान

31 जुलाई के हैत। ओतहि वोटक गिनती 3 अगस्त के हैत। ध्यातव्य जे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनक इस्तीफाक कारणे एहि सीट पर उपचुनाव भ रहल अछि। एहि सीट लेल जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर के अपन प्रत्याशी घोषित कयलक अछि। ओतहि राष्ट्रीय जनता दल रेखा गुप्ता के अपन उम्मीदवार बनौलक अछि। भाजपा आ आन दल सब दिस सँ जल्दीए प्रत्याशीक नामक घोषणा कयल जयबाक संभावना अछि। राज्य सरकार 16 वित्त आयोगक अनुशंसा पर राज्यक ग्राम पंचायत सभ मे सब घर सँ सालाना 1200 टाका टैक्स वसूली के लऽ कऽ विरोध दर्ज कयलक अछि। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहलनि जे ओ पंचायती राज मंत्री लोकनिक लेल आयोजित कार्यशाला मे एहि फैसला के बिहार सन राज्यक लेल शिथिल करबाक मांग कयलक अछि। पटना मे संवाददाता सभ सँ गपशप करैत ओ कहलनि जे फैसला जारी रहबाक स्थिति मे हुनक कोशिश होयत जे लोक सभ पर एकर भार कम पड़य। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG परीक्षाक फीस वापसी लेल बैंक खाता

0: फैसला के बिहार सन राज्यक लेल शिथिल करबाक मांग कयलक अछि। पटना में संवाददाता सब सँ गपशप करैत ओ कहलनि जे फैसला जारी रहबाक स्थिति में हुनक कोशिश हैत जे लोक सब पर एकर भार कम पड़े। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG परीक्षाक फीस वापसी लेल बैंक खाताक विवरण अपडेट करबाक समय सीमा एहि मासक 7 तारीख धरि बढ़ा देलक अछि। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में NTA सूचित कयलक कि जे उम्मीदवार लोकनि अपन बैंक खाता विवरणक पुष्टि कऽ देलक अछि हुनका लोकनिक लेल रिफंड प्रक्रिया शुरू भऽ गेल अछि। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आई 125वीं जयंती अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉ मुखर्जी के श्रद्धांजलि अर्पित करैत हुनक साहस राष्ट्रवाद आ निस्वार्थ सेवा के शाश्वत प्रतीक जनौलनि। श्री मोदी एकटा आलेख में कहलनि जे डॉ मुखर्जी के जीवन अखंड भारतक लेल हुनक अटल प्रतिबद्धताक प्रमाण अछि। गृहमंत्री अमित शाह डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्रद्धांजलि अर्पित करैत कहलनि जे ओ राष्ट्रक एकता अखंडता आ सांस्कृतिक राष्ट्रवादक प्रबल समर्थक छला। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एहि अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया आ सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कतेको वरिष्ठ नेता लोकनि डॉ मुखर्जी के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। मानसूनक सक्रियता सँ प्रदेशक बेसीतर भाग सभ मे बरखाक परिस्थिति बनल अछि। मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार अगिला 4 दिन धरि राज्य मे बरखा होयबाक पूर्वानुमान अछि। विभाग काल्हि कटिहार आ किशनगंज जिला मे अत्यधिक भारी बरखा जखनकि बांका भागलपुर आ पश्चिम चंपारण जिला सभ मे भारी बरखाक चेतावनी जारी कयलक अछि। एम्हर पछिला 24 घंटा के दरमियान भागलपुर मे सबसँ बेसी 47.8 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कयल गेल। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्रक भिड़हा मोड़ लग एकटा ट्रक के चपेट में अयबा सँ ऑटो रिक्शा सवार दू गोट महिला के मृत्यु भऽ गेलनि जखनकि 10 आन घायल भऽ गेलाह। ओतहि भोजपुर जिला के बिहिया बिहटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित भऽ कऽ पलट जयबा सँ चालकक मृत्यु भऽ गेल। दोसर दिस दरभंगा जिलाक बहेड़ी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 4 चक्का गाड़ी के चपेट में अयबा सँ मोटरसाइकिल सवार एक युवकक मृत्यु भऽ गेलनि जखनकि 2 आन गंभीर रूप सँ घायल भऽ गेलाह। अररिया जिलाक बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 327E पर पुलिस वाहन जांच अभियानक दरमियान एक कार सँ भारी मात्रा में शराबक संग 2 गोट तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। समय हो चला है ग्रामीण भाइयों के लिए हमारे इस कार्यक्रम गांव घर का।

0: गाम घर सुननिहार सुधी श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हाक नमस्कार। श्रोतागण, आई गाम घर के दलान पर उगना भाई बैसल छत तो गोर लगे छी। उगना भाई
1: खूब प्रसन्न रहू। विजय भाई आज सोम दिन है। आजुक दिन हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल ल क अबै छन हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा से। एहि कार्यक्रम अंतर्गत आइ हुनका लोकनिक लेल लोकल आयल छियन एकटा प्रायोजित कार्यक्रम, संगहि बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित एकटा भेंटवार्ता, गीत नादक सेहो आनंद लेब। मुदा ताहि सबसँ पहिने दू टप्पी कऽ लैत छी।
0: उगना भाई देखियौ, आइ विश्व जूनोसिस दिवस अछि। ई दिवस प्रत्येक बरख 6 जुलाई के मनाओल जाइत अछि। एहि दिवस के बनेबाक मुख्य उद्देश्य जानवर से मनुख में फैले वाला संक्रामक बीमारी जेकरा जूनेटिक रोग कहे ओकरा बारे में जागरूकता बढ़नाई और लोक सब के एकर बचावक उपाय के प्रति सचेत केनाई है।
1: ठीके कहनो विजय भाई, मुख्य रूप से ई एहन जानवर से

0: उगना भाई एखन हमरा लोकन ममता ठाकुर के स्वर में शिव भजन सुन रहा छलों आ हमरा लोकन सुने छी एगो भेंट वार्ता के विषय बुजुर्गों के लिए पेंशन का महत्व आ भेंट वार्ताकार सूर्य नारायण यादव आ उनका सा भेंट कर रहल छथि शंकर कुमार चौधरी तो सुनल जाए भेंट वार्ता
1: तो सुनल जा।
2: आई हम राधा कृष्ण नगर चूना भट्टी दरभंगा में आयल छी एतो बुजुर्ग शिक्षक छथि श्री सूर्य नारायण यादव जी ई अवकाश प्राप्त छथि तो हिनका से स्नेही बुजुर्ग श्रोता भाई बहिन लोकनिक लेल ई जनतब देव चाहे छियन जे पेंशन जे सरकार द्वारा देल जायत अछि ओकर जीवन में की महत्व अछि बुजुर्ग लोकनिक लेल अइ प्रसंग में अपने अपन परिचय के संग जनतब
3: वार्ड नंबर 14 राधा कृष्ण नगर निवासी छी जे वृद्धावस्था में सरकारी से हमरा जनैत ई अवस्था से सबके गुजरा पड़ते केहनो बड़का पद पर छथि आ छोट से छोट व्यक्ति छथि आर्थिक रूप से सबल होय दुर्बल होय जहन अवस्था खिन भ जाय छै तो ओहि स्थिति में अखन जे गिरावट भ रहल छै केकरो कोई देखनिहार नहीं छै तो जीवन भरि जे राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति अपन योगदान देलथिन कोनो क्षेत्र में अपन बाल बच्चा के पोसला आ वृद्धावस्था में हुनका दर दवाई या नाना प्रकार के छै कुछ व्यंजन बेचने छै तो तेकरा प्राप्त करक हेतु ललायित रहतथिन हुनका नहीं भेटतनि आ ओ जीवन जे छै से तखन हुनका निरर्थक बुझा में एतनि जे हम कथी ले जीवै छी
2: ठीके कहलहुँ
3: तो ओहन स्थिति में ई पेंशन जे छै सरकारी सहायता ई परम आवश्यक छै बहुत सोच समझ के पेंशन नीति रहे आ रहक चाही आ सम्मानजनक रहक चाही आब ओ त युग बदल गेलै पैसा के महत्व घटल जा रहल छै सम्मानजनक सरकार के ध्यान देना चाही जे बुजुर्ग के बुढ़ापा पहाड़ नहीं बुझा में होवे जीव के हुनका अधिकार छैन संविधान से प्राप्त अधिकार छै जे हुनका भेटक चाही हम एकर प्रबल समर्थक छी पेंशन नीति के और अवश्य भेटक चाही
2: अपने कहलौ जे पेंशन अवश्य भेटबाक चाही ठीके कहलौ कारण बुजुर्गा अवस्था में कतेक ओ अपन धियापुता से बुजुर्ग लोकन कहथिन जे हमरा आर्थिक मदद करो विशेष रूप से जहन अइ उम्र में अपन संतान से किछु मांगा पड़ै छन जे हुनका सब दिन दै देलखिन त विशेष रूप से एकटा ई एहन बुझबा में अबैत छन जना ग्लान बुझबा में जाय छन जे हिनका से मंगियन आ प्राय धियोपुता के ई देखै छियन जे हुनकर अइ गप पर ध्यान नहीं दै छथि अइ प्रसंग में अपने के की विचार अछि ओ की जनतब दियन
3: बुजुर्ग जे छथि वृद्धावस्था जे होइ छै तो ओहि शरीर के रक्षा करय के लेल हमरा समझ से अधिक धन के जरूरत पड़ै छै ओ शरीर जीर्ण भ गेलै ओ दवाई दारू लगबे करतै बच्चा के जीवन भरि सेवा कलथिन परंतु ओहि स्थिति में अब बच्चा जे छै से लाचार भेल जाइ छै।

0: बाल बच्चा के अपन पढ़ाई लिखाई छे, वो बुजुर्ग तरफ में कम ध्यान दे छे। बच्चा प्राय देखल गेला जमहर चर्चा होइ छे तो यह चर्चा होइ छे जे बुजुर्ग के तिरस्कार कर कैल जाइ छे। आ जे पेंशन होल्डर छे, सरकारी पेंशन होल्डर या पूर्व कर्मचारी सब के भेजे कनी सम्मानित सेहो रहै छथि आ कुछ बच्चा सेवो करै छे ओही अर्थ लेवल ले।
1: ठाम ई एकटा प्राचीन परंपरा रहल अछि जे धियापुता ले किछ लऽ कर जाइए, तऽ अइ गप के जे एखनुक बेर मे पूर्ति भऽ रहल अछि सेहो तऽ अर्थे सँ जाहिसँ हिनका लोकनि के मान सम्मान भेटैत छनि।
0: जी हाँ, बिहार और मिथिला के ई तऽ प्राचीन रिवाज रहलैए सदा सँ। जे अहाँ अपना आप तऽ सब अहाँ के जूनियर भऽ गेल, अहीं सँ उम्मीद छै शुरू सँ तऽ अहाँ वीर सेवा केनही छथिन,
1: आशा लगले रहै छै,
0: आशा लागल छै आ ओहो चाहै छथिन जे हम बाल बच्चा सब भेट जाय नाति नातिन सब पोता पोती सब, तो कुछ सौगातो लऽ कऽ जाय।
1: ठीके कहलो,
0: और से प्रयास ओ करै छथिन आ से यदि कोई आवश्यकता के पूर्ति नहीं होइ छै तो हुनका बहुत कष्ट होइ छनि जे हम आइ लायक नहि रहि गेलहुँ, कमाइ लायक तऽ रहबे नहि करै छथिन। ओ तऽ
1: कारण जे शरीर अस्वस्थ भऽ जाइ छनि,
0: शरीर
1: आँखिसँ कम देखबामे अबै छनि, हाथ थरथरा लगै छनि, तऽ ई सब जे नाना प्रकारके रोग व्याधि बुजुर्गा अवस्थामे सेहो ग्रसित करऽ लगैत अछि, इहो एकटा कारण होइ छै। तऽ एहन परिस्थितिमे सबके सहयोगक आवश्यकता, उपेक्षाके
0: एहन परिस्थिति होइ छै जे आब ओ कहतै जे जैबो करतथिन तऽ बिना एकटा सहयोगी के नहि जा सकै छथिन। आब जे सहयोग जे करतनि, कोनो सवारिये पर लऽ जेतनि, हाथे पकड़ि के लऽ जेतनि, सेहो तऽ आर्थिक युग छै।
1: ठीके कहलहुँ हँ, ओहू लेल तऽ द्रव्य चाही, पाइए चाही, रुपये चाही,
0: सहयोगी के जे कुछ देथिन नहि तऽ अपन ओ केना लऽ जेतनि हुनका, तऽ मन मे लगले रहि जाइ छै जे कनी हम बच्चो सँ भेंट करऽ जैतौ। सहयोगी भेल सड़क बाल बच्चा तऽ बाहर जाइ छै कमाइ के लेल, रहै नहि छै घर पर, महिला वर्ग रहै छै, मुदा ओहन हालत मे जै समय मे हुनका अधिक जरूरत छै अर्थ के, काम नहि करऽ लायक रहि गेलथिन शरीर के चलाबऽ लेल या रीति रिवाज के पालन करऽ के लेल, अत्यंत आवश्यक छै जे हुनका आर्थिक सहायता भेटौ। सरकार सोचते छै किछु आओर उदारता पूर्वक सोचऽ के आवश्यकता छै, हमर सुझाव अछि।
1: ठीके कहलहुँ अपने, तऽ सूर्य नारायण यादव जी अपने बड़ नीक जकाँ बुजुर्ग लोकनिक लेल जे अपन विचार ओ देलियनि, आ पेंशन के बड़ महत्व अछि एहि अवस्थामे, तऽ एहि गप पर सब गोटा ध्यान दी। जे गोटा पेंशन पबैत छी सरकारी योजनासँ ओ तऽ बड़ नीक, जे नहि पबैत छी ओहो लोकनि जागरूक भऽ कऽ एहिसँ लाभ उठाबी। अपने के धन्यवाद।
2: हाँ, तऽ उना भाई हमरा लोकन एक गोट बाह्य ध्वनियांकन पर आधारित भेंट वार्ता सुनि रहल छलहुँ। भेंट वार्ता के विषय छल बुजुर्गों के लिए पेंशन का महत्व। भेंट वार्ताकार छला सूर्य नारायण यादव आ हुनका सँ भेंट कऽ रहल छला शंकर कुमार चौधरी।
3: आ आप विजय भाई सुनै छी प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, तो सुनल
2: जाए।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

दुनिया। नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर एक सप्ताह के बाद आ गया दिन सोमवार का और कार्यक्रम का नाम बुनियाद है। युवा साथियों, आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर हम आते हैं जिससे आपको करियर में क्या चुनना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ कर सकते हैं, अपने राज्य में यूनिवर्सिटीज की क्या स्थिति है, ढेर सारी जानकारियां हम विशेषज्ञ से दिलवाते हैं और लगातार सजग रहते हैं कि

0: आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। एक बात हमेशा राजेश कहता है आपसे कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई पढ़ लीजिएगा ना तो प्लेन स्टडी सीधे सीधे पढ़ने से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हो जाएंगी। जी हाँ, आप स्वव्यवसाय भी कर सकते हैं, आप सरकारी और निजी क्षेत्र में जाकर रोजगार भी तलाश सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें करनी है। बीएड एक हॉट केक है, बीएड हाँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जी हाँ, बीएड एक हॉट केक है। इसमें एक नया तो नहीं कहें लेकिन बहुत ही उम्दा हाँ कोर्स आया है, बीएड स्पेशल एजुकेशन। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, हमने पहले भी चर्चा की है, रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। आज फिर से हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर अवनीश रंजन को बुलाया है, बातें होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हम कि ये कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार में और झारखंड के बहुत बड़े हिस्से में, हम चाहते हैं कि कोई भी युवा इस बात से अनजान नहीं रहे कि अब टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसलिए उसे चुनना चाहिए टेक्निकल पढ़ाई को। हम एक फोन नंबर भी देते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में है, जो टेक्निकल पढ़ाई का एक हब है और मेडिकल यानी MBBS और PG जो है मेडिकल का, उसकी पढ़ाई के साथ साथ 13-14 टेक्निकल पढ़ाई है जो यहाँ कराई जाती है सक्सेसफुली। पैन इंडिया टीचर्स हैं और पैन इंडिया अब स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो अनर्थक अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें। कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा आपके राज्य में मिल रही है, स्टूडेंट्स की कमी नहीं है यहाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाएं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, हालांकि एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही होगा, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने एक नंबर हाँ लिया है जो आपके लिए है, जिस पर आप और अधिक जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051, 1800121051। एक बात और बताते चलें, तब हम डॉक्टर अविनीश रंजन को बुलाएंगे और पूरा हाँ उनके विषय में जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है, हाँ जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब यहाँ के लोग जो प्लेसमेंट सेल है ना, आपके रोजगार के लिए भी सजग है, उसमें आपको 100% असिस्टेंस देता है। बहरहाल डॉक्टर अविनीश रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे सुनने वालों को और पूरा परिचय आप अपना दीजिए।
1: मेरा नाम डॉक्टर अवनीश रंजन है और मैं फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में डीन के पद पे हूँ। और हमारे फैकल्टी में मुख्यतः दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक रिहैबिलिटेशन के जिसको पुनर्वास विज्ञान बोलते हैं, दूसरा स्पेशल एजुकेशन जो विशेष शिक्षा के रूप में हम लोग उनको जानते हैं।
0: डॉक्टर अवनीश, एक बात हम सबसे पहले अपने पूरे बिहार और झारखंड के युवाओं उनके माता पिता के लिए पूछना चाहते हैं कि बीएड हॉट केक है लेकिन बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन हाँ ये कहाँ अलग है और कौन ज्यादा है, बीएड स्पेशल एजुकेशन कहाँ है, इसके बारे में बताइए।
1: जी ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे वो सारे इंक्लूज

0: सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब यह हुआ कि वैसा विद्यालय जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
1: तो एक बात तो यहाँ हम कह सकते हैं, हाँ अविनीश जी, आपके सामने या आपसे जो बातचीत हो रही है, जो आपने बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड के बारे में बताया, कि हमें लगता है कि बीएड स्पेशल एडुकेशन जो है वो एक कदम आगे है बीएड से, क्योंकि इसमें समग्र यानी वैसे बच्चे जो सही हैं, वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी उनमें कमी है, उनके लिए, हाँ उनके लिए भी बीएड स्पेशल एडुकेशन में तैयारी करवाई जाती है, प्रोफेशनल तैयार करवाए जाते हैं, क्या कहते हैं
0: जी? अगर एडवांस स्टेज की बात करें तो जब आप सिलेबस देखेंगे, करिकुलम इनका जो बना है, उसमें वो सारे पेपर्स हैं जो जनरल बीएड एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावे स्पेशल पेपर्स कुछ हैं जिसमें दिव्यांगता के बारे में, उनकी पहचान के बारे में, उनके मनोविज्ञान के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके दैनिक क्रियाकलाप वो कैसा करते हैं, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में, होम बेस्ड एजुकेशन जो गृह आधारित शिक्षा होती है उसके बारे में, पेरेंट्स को कैसे काउंसलिंग करेंगे उसके बारे में, ये सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करके और एक कम्पैक्ट प्रोग्राम तैयार किया गया जिसको हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं और ये कोर्स हमारे यूनिवर्सिटी में संचालित हो रहे हैं।
1: सोमवार का दिन है, कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, वर्षों हो गए ये कार्यक्रम आप तक हमें पहुंचाते पहुंचाते, और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अविनीश रंजन, बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन की बातचीत चल रही है, एकदम हॉट केक है, जी हाँ बीएड स्पेशल एडुकेशन इस पर चर्चा चल रही है, बहुत सारे टेक्निकल पढ़ाई है जिसे आप पढ़ करके अपने करियर में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आपके लिए एकदम खड़ा है। 13-14 टेक्निकल कोर्स है, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, बीएससी के कोर्सेज हैं टेक्निकल क्षेत्र में, इसके अलावा एएनएम जीएनएम हाँ फार्मेसी के कोर्सेज हैं, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सेल करके आगे ला सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर है 1800-121-0051, और एक नंबर है, मोबाइल नंबर है 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in, इस पर जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर अविनीश एक बात बताइए, बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड, क्या दोनों की पढ़ाई सेम है, दोनों का ड्यूरेशन कैसा है, ये सारी जानकारी दीजिए हमारे सुनने वालों को, और आपसे भी कह रहे हैं जो घर बैठकर बाजा पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, जिस चीज़ पर भी आप हमारे इस बुनियाद कार्यक्रम को सुन रहे हैं और करियर के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिए समझिए और तब निर्णय लीजिएगा।
0: आज जब से NEP 2020 लागू हुआ है, उससे पहले 2 साल के बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद, उसी तरीके से 2 साल के स्पेशल एजुकेशन बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद, लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में, तो उसका ये कंपल्सन था कि हर एक बीएड कोर्स को इंटीग्रेटेड बीएड में ट्रांसफर किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बीएड की पढ़ाई होगी, मतलब बच्चों का एडमिशन प्लस टू करने के बाद एडमिशन होगा, जिसको आईटेप बोलते हैं, जनरल बीएड को आईटेप का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और इजी टेप बोलते हैं ISITEP जो स्पेशल बीएड के प्रोग्राम होते हैं, उसका मतलब हुआ इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एंड स्पेशल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसमें ये 4 साल के कोर्स हैं, 4 साल के कोर्स में ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट, अगर साइंस का लेना है, साइंस में ग्रेजुएशन करना है तो साइंस के पेपर, आर्ट्स में करना है तो आर्ट्स के पेपर, कॉमर्स में करना है तो कॉमर्स के पेपर, साथ साथ बीएड के भी सब्जेक्ट्स सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 के बीच में पढ़ाए जाते हैं, और ये ड्यूअल डिग्री वाला कोर्स है, मतलब जब आप इस इजी टेप या जिस

0: इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स को करेंगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी, साथ साथ बीएड की भी डिग्री मिलेगी, मतलब चार साल में दो डिग्री लेके आप निकलेंगे।
1: बहुत खूब, हमने पहले कहा था ना युवा साथियों कि बीएड स्पेशल एजुकेशन बहुत ही उम्दा कोर्स है। आप राजेश की बात सुनते हैं और आज से नहीं बीसियों साल से आपके लिए इस तरीके के कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं, और जानकारियों के आधार पर बहुत सारे युवा रोजगार में आ गए, करियर में आ गए, ऊंचाइयों पर पहुंच गए। बीएड स्पेशल एजुकेशन बहुत ही उम्दा है, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जी हाँ, नंबर नोट करें जिस पर आप फोन करेंगे, 1800 121 0051, 1800 121 0051, और 9431899002। बुनियाद कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम लेकर आते हैं अपने राज्य बिहार में स्थित टेक्निकल पढ़ाई का हब वाला यूनिवर्सिटी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। हम एक उन्नत और सुरक्षित बिहार चाहते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अवनीश जी, दो दो डिग्री लेकर निकलेंगे, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, लेकिन समय आज के कार्यक्रम में ज्यादा नहीं बचा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब दो दो डिग्री लेकर निकलेंगे तो एंड ऑफ द डे, अंत में बच्चे युवा यही चाहते हैं कि अच्छा रोजगार मिले, तो रोजगार के लिए कहां कहां और किधर जा सकते हैं? हालांकि आपने अभी बताया है लेकिन फिर से बताइए।
0: मैंने पहले कहा कि चूंकि सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको, और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: बहुत ही उम्दा व्यवस्था है रोजगार के लिए, इसके अलावे भी है, मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ आने वाला एपिसोड कंटिन्यू रहेगा, और जो लोग हमें सुन रहे हैं आज, आने वाला यानी आने वाला सोमवार जरूर हमें ट्यून कीजिएगा, और भी जानकारी देंगे कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है रोजगार की, और कहां कहां संभावनाएं हैं, और चर्चा करेंगे अगर जो आपके फोन कॉल आए और आपने जो हमसे सवाल पूछा। बहरहाल बीएड स्पेशल एजुकेशन एकदम हॉट केक है, हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए। नंबर नोट करें अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, 1800 121 0051, और दूसरा नंबर है 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय टेक्निकल कॉलेज का हब जमुआर सासाराम रोहतास में। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, सोमवार को मैं भी होऊंगा और डॉक्टर अविनीश भी होंगे, सुनना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: विजय भाई, एखन हमरा लोकन प्रायोजित कार्यक्रम सुनो बुनियाद आ एकर संगे आब आजुक अनुभव के चश्मा से कार्यक्रमक बेर संपन्न भ रहल अछि। खेती गृहस्थी में हमरा लोकन स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के स्वागत करै छियन। हिनका लोकनिक लेल लक आयल छियन एकटा भेंट वार्ता, एकर संगे गीत नादक आनंद तो लेबे करब। मौसम संबंधी जे स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के जनतब सेहो देबन, मुदा अ सब से पहिने अपना में किछ सामयिक कृषि संबंधी गप क लै छी।
4: उगना भाई, देखियो जे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सबसे पहले हमरा लोकन किसान भाई सबके स्वागत करै छियनि, आ हमरा लोकन गप करब पुदीना के आधुनिक खेती। तो उगना भाई, पुदीना एकटा एहन चीज अछि जकर नामे सुनते हमरा सबके मुँह में पानि आबि जाइत अछि। अइसँ प्राप्त सुगंधित तेलक उपयोग, सौंदर्य प्रसाधन, विभिन्न

0: विभिन्न प्रकारक खाद्य पदार्थ के सुगंधित करबा आ पान के मसाला के सुगंधित करबा खांसी जुकाम आ सिर दर्दक दवाई में सेहो कयल जाइत अछि।
1: ठीके कहलहुँ विजय भाई, पुदीना एकटा औषधीय पौधा होइत अछि आ एकर कतेको उन्नत प्रभेद अछि, जेना MAS1, कालका, कोसी, शिवालिक, गोमती आ हिमालय। एकर उपज क्षमता 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एक वर्ष में होइत अछि। एकरा हमरा लोकनि वर्ष में 2 बेर रोपनी करैत छी। एखन हमरा लोकनि के जे करैत छी एकर रोपनी, ओकर उचित बेर अछि ओ अछि जुलाई से अगस्त मास धरि। एकरा बाउग कयल जाइत अछि, लगाओल जाइत अछि। पानि के प्रबंधन 10 से 15 दिन के अंतर पर 10 से 12 बेर पटौनी करय पड़ैत अछि, कारण एहिमे बेसी पानि लगैत अछि।
0: बेसी पानि लगैत अछि।
1: एकर संगे खाद उर्वरक में 10 से 20 टन सरल गोबर के खाद प्रति हेक्टेयर। एकर अतिरिक्त नेत्रजन, स्फुर आ पोटासक मात्रा 150, 70 और 40 किलोग्राम के अनुपात में प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होइत अछि। तो एहि प्रकारे हमरा लोकनि एकर खेती करैत छी। फसल चक्र में अंतर्वर्ती खेती लेल आलू, मकई पुदीना, आलू पुदीना, गहूम पुदीना, बैगन पुदीना, कुसियार पुदीना के लगा सकैत छी। कमौनी निकौनी 3 से 5 बेर आवश्यकता अनुसार करबाक चाही आ फसल सुरक्षा ओ कीट व्याधि के प्रबंधन पर सेहो ध्यान देबाक चाही।
0: एकर
1: कटनी आ दौनी आ भंडारण ताहू पर ध्यान दी, तखने लाभ भेटैत अछि। तऽ एकर कटनी रोपनी के 4 महीना के बाद कऽ सकैत छी आ एकर कटनी भूमि सँ 5 सेंटीमीटर ऊपर सँ करबाक चाही। तकर बाद 12 घंटा सुखेलाक बाद पानि के आसवन अथवा बाष्प आसवन द्वारा तेल निकालि कऽ भंडारित कयल जाइत अछि।
0: एहि
1: प्रकारे हमरा लोकनि ई पुदीना के खेतियो करै छी आ एकर से हमसब जे उत्पाद तेल सेहो निकालि कऽ बेचैत छी, जे बड़ महग होइत अछि, कारण एकर कतेको दवाई में व्यवहार होइत अछि, अन्य कतेको प्रकारक काज में। तो विजय भाई गपशप फेर करब, मुदा आब सुनैत छी ई हमरा लोकनि
0: गीत
1: तो सुनल जाए।

0: एखन हमरा लोकनि सुनलहुँ ई नचारी अरविन्द कुमार झाके गाओल आ आब हमरा लोकनि सुनै छी ई भेंट वार्ता मत्स्य पालन पर तऽ सुनल जाय
1: सुनल जाय।
2: किसान भाई लोकनि आइ खेती गृहस्थी कार्यक्रममे अपने सब गोटे के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार। आई आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर मंगलानंद झा, अपने वरीय वैज्ञानिक छी, एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चैनपुरा बसेठ जे जिला मधुबनी अंतर्गत है। डॉक्टर मंगलानंद झा जी, अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत संगे अपने के नमस्कार।
3: अपनों के नमस्कार अनिल जी।
2: हम आई अपने से गप करब जे कोनो काज के जखन आधारभूत प्रक्रिया संपन्न भ जाइए तो ओकर बाद वो आगू काज बढ़ो के लेल अहाँ कह सकै छी जे वो काज आरंभ कैल जा सकैए। पुरना पोखर के देखभाल केला के उपरांत नीक जकां व्यवस्था भ गेल तो किसान भाई लोकन के माछ पालक भाई लोकन के मन में आशंका रहै छनि जे माछ पालन कोना करी। ओना तो ई काज पारंपरिक ढंग से बहुत वर्ष से लोग कर रहा है मुदा एक वैज्ञानिक विधि की है जैसे बेसी लाभ भेट सके। हम सब मिश्रित मत्स्य पालन के संदर्भ में बहुत रास सुनने छी मुदा डॉक्टर साहब हम आई अहाँ से जानना चाहब जे हमर किसान बंधु छथि माछ पालक भाई लोकनि छथि जानना चाहे छथि

0: जे मिश्रित मत्स्य पालन की अछि एहि संदर्भ में कहल जाय।
1: अनिल जी, मिश्रित मत्स्य पालन छै जे अपन देशी किस्म के जे माछ छै जाहिमे कतला छै, रेहू छै, मृगल छै, कतला के हम सब भाकुर कहै छियै अपना भाषा में, रोहू माछ कहै छियै, नैनी माछ कहै छियै, जे अपन पुरान अपन एहिठमन का प्रजाति अछि। विदेशी जे छै यहाँ के किस्म छै जाहिमे कि यहाँ के सिल्वर कार्प छै, ग्रास कार्प छै, कॉमन कार्प छै, जे चाइनीज किस्म छै। छओ के यदि हमसब मिश्र एक जगह मिश्रित करै छियै तकरे हमसब मिश्रित मछली पालन कहै छियै। मिश्रित मछली पालन केला से एहि दुआरे फायदा छै जे तालाब के अंदर में खाना के तीन टा लेयर छै, एकटा ऊपर के छै, एकटा मध्य के छै, एकटा नीचा के छै। तें भिन्न भिन्न स्तर में रहो वाला मछली जे भिन्न भिन्न स्तर में रहै छै तकरा में यदि एक जगह यदि हम मिश्रित करै छियै तो तीनू लेयर के मछली यदि तालाब में डालै छियै ओहि किस्म के मछली, जेना अपन कतला छै, भाकुर जकरा कहै छै, से ऊपर से खाना लै छै, सिल्वर कार्प सेहो ऊपर से खाना लै छै, रोहू अहाँ के मध्य सिरा से खाना लै छै, कॉमन कार्प छै, नैनी छै, नीचा से खाना लै छै, एकरा बाद में ग्रास कार्प छै, तो ग्रास कार्प जे छै से ग्रास कार्प लै छै अहाँ के तालाब के अंदर में, जे लोग अलग से ओकरा पौधा दै छै, एहन चीज दै छै जैसे कि ओकरा भोजन भेटे, नहि अंत में होइ छै तऽ किछु कुम्भियो जल कुम्भी घेरा लगा कऽ दऽ दै छै जे ओकरा भोजन भेटैत रहे। भोजन नहि के लेल अहाँ के घर में जते किचन के जे पदार्थ है, जे साग सब्जी कटनो है, ओकर जे किछु डस्ट छै ओहो ई तालाब में अहाँ देल जा सकै छै, जे ओकरा जे दऽ देलियै घेरा के अंदर में तो ग्रास कार्प अहाँ के खेतै। तें मछली में एक दोसर के खाना के लेल कतौ प्रतिस्पर्धा नहि होइ छै, आ तालाब के हर लेयर में जे खाद्य पदार्थ छै से माछ के भेटै छै, और संपूर्ण जे माछ के अपना तालाब के अंदर में जे तीनू लेयर में जे दोहन छै से मछली पालन के लेल जतेक छै अपन उर्वरक छै, खाद उर्वरक हम देलियै जे तीनू लेवल में यदि आबि गेलै तऽ लेला के बाद में ओहिसँ वृहत हमरा आमदनी हमरा भेटैए, एक दोसर से प्रतिस्पर्धा नहीं छै। आ ओहिमे तीनू लेयर के यदि पड़ि गेला के बाद में तीनू लेयर के माछ पड़ि जेतै तऽ एक दोसर के आपस में रगड़ा झगड़ा भोजन के लेल नहीं होइ छै, माछ में बेसी वृद्धि होइ छै, तैं हमसब ई मछली पालन हमसब करै छी।
0: तो ई जे मिश्रित माछ पालन होइए एहि लेल पोखर के जे संरचना हेबाक चाही वैज्ञानिक रूप से तकनीकी रूप से ई केहन हेबाक चाही एहि संबंध में कहल जाए।
1: एहि के लेल तब तालाब के पहले जीर्णोद्धार करूँ, जतेक खाऊ मछली छै तकरा निकाल दियौ, निकालना के बाद में जतेक खर पतवार छै तकरा अहाँके नियंत्रण कऽ लिअ, नियंत्रण केला के बाद में एहिमे जीरा यदि डालै छै, छोट जीरा यदि किस्म छै तो ओकरा 8,000 से 10,000 डालू, नम्हर यदि अहाँ के किस्म अछि जाहिमे साइज यदि ओकर भऽ गेलै 4 इंची के यदि साइज छै, 3 से 4 इंची के जे साइज छै तकरा मात्र 55 से डालल जाइ छै, जे कट्ठा में मानि के चलू 1 से 10 ओहिसे बेसी अहाँ नहीं डालू। डालला से यहाँ के आगा आब के बाद में चूंकि हम छोट साइज के माछ के जे एहि दुआरे किछु बढ़ा कऽ देल जाइ छै जे मोर्टिलिटी कनिक बेसी होइ छै, नम्हर साइज जखने हेतै ताहिमे मरण किछु कम होइ छै, तैं 55 से में हमसब आशा करै छी जे 55 से हमर 3 इंची से 4 इंची के साइज के यदि मछली डालबै तऽ 55 से हमर जिंदा रहत। एहिमे दुनू तरहक प्लांकटन पायल जाइ छै, सूर्य के उपस्थित सँ जे पौधा जे छै स्वतः फोटोसिंथेसिस के क्रिया सँ से जंतु प्लवक अहाँ के बनै छै, पौधा जगत के सेहो वनस्पति जगत के प्लवक बनै छै, आ जंतु जगत के पबैत नीचा में जे मिट्टी छै ओही से जे बहुत सारा जे पदार्थ छै ओ सड़ि गेल के जे छै ओही से जंतु जगत के प्लवक बनै छै, जे दुनू प्लवक अपन मछली खाइए। जे कतला ऊपर से छै तो ऊपर से ओकरा कनि प्रारंभिक स्तर में ओ भोजन करै छै, जंतु प्लवक खाइ छै, नैनी खाइ छै अहाँ के नीचा से लै छै तो ओ जंतु प्लवक खायत, आप वनस्पति प्लवक सेहो खायत, रेहू मुस्कुल से प्लवक खाइ छै, जंतु ये वनस्पति प्लवक खाइ छै, तैं जे छै से एकर सामंजस्य एहि ढंग के बनायल जाइ छै जे हमरा तालाब में गोबर यदि हम दै छियै तऽ गोबर देला के बाद में जे 10,000 किलोग्राम गोबर पहिल किस्त में देल जाइ छै, जँ अहाँ के पास में गोबर नहि अछि तऽ नया नया तकनीक अहाँ के लिए जे अपना सबके बांस के बीच में जे करची अबै छै बैम्बू स्टिक एकरा हम सब कहै छियै, एकरा छोट छोट टुकड़ा में काटि कऽ या

0: एहिठमन मिल अखन चलै छै, सुगर किन मिल चलै छै या अहाँ गुड़े पेड़ आबै छी तऽ ओकरा हमसब सुगर केन बगास कहै छियै, एकरो या अहाँके पतोई छै, ओहो सारा चीज के यदि लऽ कऽ बंठल डंठल बना बना कऽ यदि अहाँ दऽ दिए 250 से 300 क्विंटल एकरा हर तीन महीना चार महीना के अंदर में यदि देबै तऽ ई सब प्लवक बननाइ क्राई बनतै, क्राई बनला के बाद में पौधा के जे जंतु जगत के वनस्पति जगत के प्लवक छै सेहो बनतै, जंतु जगत के प्लवक सेहो बनतै, अहाँ के मछली के भोजन बढ़िया भेटतै, एकरा विस्तार से मछली भोजन करत आ मछली के बढ़वार बेहतर हेतै।
1: संगे संग ई जे मिश्रित माछ पालन होइए तऽ एहिमे जे 6 प्रजाति के अपने जीरा दै लेल कहलियै तऽ एकर अनुपात की होइ छै, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जँ विचार कयल जाय तऽ कोन माछक जीरा कतेक अनुपात में देबाक चाही, माने किलोग्राम के हिसाब से अनुपात में किसान भाई लोकन के कह दियौ।
0: अहाँ के यदि संख्या में यदि अहाँ डालै छियै तऽ एकर रेशियो हमसब एक सए में रखै छियै, 3 प्रजाति छै, ई तऽ उपलब्धता के आधार पर छै, मानि लिअ ई 6 किस्म उपलब्ध रहै छै, तीने अपन यदि देशी किस्म उपलब्ध है, कतला ए, रेहू ए, मृगल ए, तो ऊपर के लेवल वाला के कतला 40%, रेहू अहाँ के 30%, मृगल अहाँ के 30% हम सब डलवाबै छियै, अहाँ किसान के भाई के डालक चाहिए। यदि 4 प्रजाति के अछि तो सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और यहाँ के 4 प्रजाति के अछि, एहिमे कतला जे छै से कतला यहाँ के 20% अहाँ के कतला डालू, 30% अहाँ के नैनी डालू आ फिर अहाँ के 30% जे बचि जाइ छै से अहाँ के डालऽ पड़त नैनी कॉमन कार्प डालू आ ओकरा बाद में अहाँ के जे बचि जाइए तऽ ई अहाँ के सिल्वर कार्प जे छै सेहो ऊपर से खाना लै छै, 20% सिल्वर कार्प अहाँ सेहो लोड डाल सकै छी। 6 प्रजाति के यदि छै ताहिमे हमसब डालै छियै 15% डालै छियै अहाँ के कतला, रेहू डालै छियै 20% आ कॉमन कार्प जकरा करै छियै से 20%, बाकी चारू मछली के अहाँ के 15% के यदि 15 के संख्या में यदि हम डालि देबै तकर मिश्रण समुचित वैज्ञानिक अनुपात में मिश्रण भऽ जाइ छै, कोनो तरहक प्रतिस्पर्धा नहि भरै छै, तालाब के अंदर में दोहन जे छै से पूर्ण रूप से जते खाद्य पदार्थ छै तकर हमरा दोहन भऽ सकैए, दोहन भेला के बाद में हमरा माछ के बढ़वार अहाँ के बेहतर हेतै।
1: एहन देखल जाइ छै वा सुनलो जाइ छै वा कहि सकै छी जे जानकारी लोक के भेटलनि हँ जे माछक उत्पादन जे प्रति हेक्टेयर अपना सभक ठाम अछि, खास कऽ मिथिलांचल में वा अपन प्रांत में जँ गप करी, आन प्रांत के अपेक्षा एकर उत्पादन अपना सब ठाम कम होइए, तऽ एकर कारण की छै आ एकर निदान की छै एहि संदर्भ में कहल जाय?
0: पहिल बात छै जे हमसब खाद और उर्वरक मिश्रित मछली पालन यदि करबै तऽ ओकरा पर्याप्त रूप में भोजन चाही, भोजन यदि अहाँ गोबर डाललिए, गोबर डालने के बाद में सबसे पहले हम सब देखै छियै जे एकरा अंदर में प्लवक कतेक बनलै, तऽ एहि के लेल हम किसान भाई के कहबनि जे अपन हाथ डालिए, अपन हाथ पानि के अंदर में डालू, एकटा हाथ अपन डालू, अपन अंगुली के एना के उठाउ, जँ अंगुली के अहाँ के देखऽ में आबि गेल तऽ एकर मतलब भेलै जतेक पारदर्शिता रहतै, एकर मतलब होइ छै जे एतेक माछ के खाना कम छै, यदि गोबर डाललों के बाद में एतेक अहाँके उत्पादन बेसी से बेसी लेबक चाही तऽ खाद संगे अहाँके उर्वरक सेहो अहाँके डालऽ पड़त, एहि के लेल 30 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या 25 किलोग्राम अहाँ यूरिया डाल सकै छी प्रति महीना के डेढ़ से। दोसर बात छै जे अहाँके सिंगल सुपर फॉस्फेट छै, ओकरा बाद में डाई सुपर सिंगल सुपर फॉस्फेट अहाँ 12 से 15 किलोग्राम अहाँ डाल सकै छी, या ट्राई सुपर फॉस्फेट छै तकरा अहाँ 8 से 10 किलोग्राम अहाँ एकरा डाल सकै छी, जाहि में देखै छी जे पोटास के यदि कमी छै तऽ पोटासो के अनुशंसा अहाँ के 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर सँ माहवारी एकरा डालू, चूना निश्चित रूप से हर महीना में चूना डालू, चूना अहाँ के 20 से 25 किलोग्राम चूना हर महीना में यदि अहाँ छिटाव करबै तो अहाँ के उत्पादन बेसी हैत, 1 क्विंटल चूना अहाँ जीरा डाल से 15 दिन पहले डालू, ओकरा बाद में दोनों के अंतर कर लिअ, जे गोबर डाललिए तो गोबर के यदि चूना पहले फिर अगला महीना में चूना यदि डालै छियै तो चूना डालला के बाद में गोबर यदि डालनौ तो गोबर के दोनों के बीच में अहाँ के कम से कम 10 दिन के अंतर जरूर होबक चाहिए, तखने अहाँ के पर्याप्त मात्रा में प्लांकटन बनते और प्लांकटन बनला के बाद में जंतु प्लांकटन बनते, वनस्पति प्लांकटन बनते, पर्याप्त भोजन भेटते। अब भोजन के बाद

0: अंतमे यदि तैयो देखै छी जे प्लांकटन पर्याप्त अहाँके नहि भेटल तऽ परिपूरक आहार के सेहो व्यवस्था छै जे ओकरा यदि हम माछ के देबै तऽ माछ मे विषत व्यवहार हेतै ओकर वजन के 3-4% एक हेक्टेयर के लेल यदि करै छी तऽ पहिल महीना मे अहाँके 2-3 किलोग्राम मूंगफली या अहाँके सरसों राई के खली छै से या चावल के कुंडा छै दुनू के बराबर बराबर मात्रा मे यदि बना कऽ दिए टोकरी में बना कऽ दिए लड्डू जका बना दिए बनेला के बाद में निश्चित समय निश्चित स्थान पर अहाँ डालियो आ डालना के बाद में अहाँ देखियो भेड़ खाना के उठा लिया आ नहीं तो होइया जे जूट वाला जे बोरा होइ छै बोरा में छेद क के ओरा लड्डू जका बना कर दियो छोट छोट गोली बना कर दियो देखियो जो खा यदि लेलके लेकिन कोशिश करू जै समय में डेली दै छियै ओही समय में दियो निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पानि के लेवल तक यदि अहाँ डालि देलिए पानि के लेयर में जेना डालल जाइ छै पेंसल्ला लोग गाड़ी दै छै तहिना ओकरा ओहि लेवल तक ओहिठाम निकलक चाही जे माछ ओहिमे छेद छेद कऽ कऽ कऽ अहाँके भोजन कऽ लेत जतबी भोजन करिए ततबी दियौ अहाँ जहाँ खाना अहाँ छीट के दे देबै तऽ खाना अहाँके बर्बाद भऽ जायत।
1: तो डॉक्टर मंगलानंद झा जी अपने मिश्रित माछ पालन के संदर्भ में माछ पालक भाई लोगन के बहुत सुंदर आ नीक जानकारी दलियन ताहि लेल अपने के धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: हाँ उगना भाई एखन हमरा लोकन मिश्रित मत्स्य पालन ए विषय पर भेंट वार्ता सुन रहा छोड़ भेंट वार्ता कर मंगलानंद झा आ उनका साथ भेंट कर अनिल कुमार कर
3: दुनू गोटा के बीच भेल गपशप सुनलहुँ आ अहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थी के बेर सम्पन्न भऽ रहल अछि स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि से चलबाक आज्ञा लै छियनि
2: गोर लगै छै उना भाई
3: खूब प्रसन्न रहू विजय भाई।

खेती गृहस्थी। अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों के लिए हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

0: पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: देखा हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन, रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर, 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू, राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपए कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट।
1: ये विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
2: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
1: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव

0: के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि इस बार उन्हें बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
2: बांकीपुर विधानसभा की जनता है, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला, इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी।
0: गौरतलब है कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भी राजद ने रेखा गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उन्हें 46,000 से अधिक मत मिले थे और वे दूसरे स्थान पर रही थीं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एनडीए की ओर से भी इस सीट पर जल्द ही उम्मीदवार के नाम घोषित किए जाने की संभावना है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एनडीए का किसी भी दल से मुकाबला नहीं है।
3: लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ही आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी, और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनौती।
0: इधर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बांकीपुर सीट पर एनडीए उम्मीदवार को ही जीत मिलेगी।
4: बांकीपुर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो सीट खाली हुई है और उस सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहले से ज्यादा वोट से जीतेगा। वोट में हम आगे रहेंगे, आरजेडी कांग्रेस और चाहे प्रशांत किशोर लड़े।
0: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पटना में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में डॉक्टर अनिल कुमार को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, सदस्यता अभियान तेज करने तथा आगामी चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपये कर वसूली के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायती राज मंत्रियों की कार्यशाला में उन्होंने बिहार जैसे राज्यों के लिए इस व्यवस्था में शिथिलता बरतने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने भी इस व्यवस्था पर असहमति जताई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आम लोगों पर इसका आर्थिक बोझ न्यूनतम रहे।
5: पंचायतों में प्रति परिवार सालाना 1200 रुपए की राशि का कलेक्शन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधे एक एक परिवार से उतनी राशि का कलेक्शन हो। पंचायतों के अपने भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूंकि हम लोग इस ओएसआर को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत आय के स्रोत डेवलप हो उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं, तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज की भी मांग की गई है।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
6: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर

0: स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए नकद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किए गए इस बदलाव के तहत आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होने वाले उच्च मूल्य के नकद लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। अब 5,000 रूपए या उससे अधिक की निकासी करने पर केवल बायोमेट्रिक सत्यापन पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य आधार आधारित भुगतान प्रणाली में सुरक्षा को मजबूत करना और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करना है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने कल कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटे के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा देने वाला राष्ट्रनायक बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, संगठन महामंत्री भीखू भाई दल सानिया और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर

0: एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही करने का आदेश जारी किया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भेड़ा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 महिलाओं की मौत हो गयी जबकि 10 अन्य घायल हो गए। वहीं भोजपुर जिले के बिहिया बीटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के पहेड़ी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र अंतर्गत वरगांव में पुलिस टीम को बंधक बनाए जाने के मामले में 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 54 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-327 पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। शिवहर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के नया टोला में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 3 महिला समेत 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज पुलिस ने विशनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। एसएसपी 21वीं वाहिनी बगा का 24वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैमूर जिले के सभी 151 पैक्सों में आज आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में समितियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा जोखा पेश किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रूपये कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दादा ये कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
2: किशनगंज के नए जिला पदाधिकारी के रूप में आईएएस अधिकारी नवीन कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया तथा प्रशासनिक, विकासात्मक और विधि व्यवस्था से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा तथा सीमावर्ती जिला में प्रशासन और पुलिस के बेहतर समन्वय पर भी बल दिया।
3: सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो प्राथमिकताएं हैं

0: निष्ठापूर्वक पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन करें और आगामी जो वार्ड है उसमें उसको लेकर जो भी प्रभावी नियंत्रण है उसी के लिए सब लोग जो है लगातार हम प्रयास करेंगे और बाकी जो विकास के कार्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के जो भी प्राथमिकता है उनका निर्वहन करें।
1: मानसून की सक्रियता को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ और नदी कटाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में बीते दिनों जिला पदाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने संभावित बाढ़ एवं नदी कटाव प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुहिया स्थित रेतुआ नदी के कटाव स्थल पर चल रहे कटाव विरोधी कार्यों की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बेनुगढ़ में निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज भारत नेपाल सीमा पर फतेहपुर एसएसबी बीओपी टेढ़ागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाना और प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ राहत सुरक्षा और विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। इधर नेपाल क्षेत्र में लगातार वर्षा के कारण मेची नदी का जलस्तर बढ़ने से नेपाल भारत सीमा पर एसएसबी के बक्सरविटा सीमा चौकी बाढ़ की चपेट में आ गई। एसएसबी ने त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी जवानों हथियारों गोला बारूद तथा सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अभियान के दौरान 15 कर्मियों को सुरक्षित निकालकर अन्य सीमा चौकियों पर स्थानांतरित किया गया। सीमांचल की बहुप्रतीक्षित ठाकुरगंज चतेरहाट नई रेल लाइन परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य शुरू हो गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की विस्तृत योजना भूमि अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में व्यापार कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध जून माह में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 1 से 30 जून तक चले अभियान में 239 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में ब्राउन शुगर स्मैक और गांजा के साथ 2000 लीटर से अधिक विदेशी एवं देशी शराब बरामद की। अभियान के दौरान कई वाहन 49 मोबाइल फोन भारत और नेपाली मुद्रा तथा 83 मवेशी भी जब्त किए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 14,52,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी अभियान जारी रहेगा। जिले में बीते दिनों बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सिपाही चालक पद की लिखित परीक्षा जिले के 10 केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नशा मुक्ति सप्ताह के समापन पर खगड़ा स्थित सम्राट अशोक भवन में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई तथा लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर जिले के 7 प्रखंडों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। जीविका और मद्य निषेध विभाग के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई प्रभात फेरियों के माध्यम से लोगों को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने के संदेश दिया गया। सीमा सुरक्षा बल की 132वीं बटालियन के तत्वाधान में खगड़ा स्थित बीएसएफ मुख्यालय के खेल मैदान में जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। डायमंड जुबली वर्ष के अवसर पर आयोजित सह प्रतियोगिता 10 जुलाई तक चलेगी। अधिकारियों ने युवाओं से खेलों के माध्यम से अनुशासन भाईचारा और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय जनता दल ने किशनगंज में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फहराया, दीप प्रज्वलित किया और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिले में मुहर्रम शांति सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। प्रशासन व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच संवेदनशील क्षेत्रों और जुलूस मार्गों की निगरानी ड्रोन कैमरा से की गई। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राष्ट्र पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के 322826 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के लिए 1050 टीमें 2092 टीकाकर्मी और 315 सुपरवाइजर तैनात किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाने की अपील की।
2: अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
3: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। इस समय शाम के 7:52 हुए हैं। आकाशवाणी दरभंगा से ये समय है फिल्म संगीत का। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म तेरी

प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये सुहाना सफर, जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दें, आज हमारे इस केंद्र से रात 10 बजे आप सुनेंगे अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गाने हमारे इस जीवंत कार्यक्रम में, तो नोट कीजिए हमारे ये मोबाइल नंबर 9430023353, यानी 9430029353। हेलो आकाशवाणी, आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय याद रखें, आज ही रात 10 बजे से 11 बजे के बीच। प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस सांध्यकालीन सुहाने सफर को एक बार फिर जारी रखते हैं। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्म है साथी। इस फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवाते हैं, कुमार सानू और देवाशीष दास गुप्ता का गाया हुआ।

मोहब्बत को दुनिया सलाम करती है। साथी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, कुमार सानू और देवाशीष दास गुप्ता का गाया हुआ। फिल्म संगीत का हमारे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। लीजिए इस कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल, फिल्म का नाम नगीना।

जावेद अख्तर का लिखा ये प्यारे सा गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नगीना, गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात 10 बजे एक बार फिर आप सुन सकेंगे अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:15 हुए हैं। समय हो चला है हमारे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक एहि नव अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन। श्रोता बंधु, एखुनका जे समय अछि ओहिमे हमरा लोकनि देखैत छी जे हमरा सबमे सँ बहुतो गोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केर उपयोग करै छी आ एहि सभक उपयोग दिनानुदिन बढ़िते जा रहल अछि। देखू ने, समयक संग तऽ हमरा सबके चलहे पड़ैत अछि आ एखुनका जे समय अछि ओ तऽ निश्चित रूपसँ वैज्ञानिक युग अछि, यांत्रिक युग अछि। तैँ हमरा लोकनि एहि यंत्र सभक संग वैज्ञानिक पद्धतिसँ अपन काज व्यापारमे लागल रहैत छी। दैनिक उपयोगी जे किछु सुविधा सब देलक अछि विज्ञान, ओकर लाभ उठबैत रहैत छी, सहयोग ओकर लैत रहैत छी। देखू ने, हमसब समयक संग चली ई तऽ निश्चित रूपसँ नीक बात अछि, बेजाय नहि अछि, मुदा ओकरा पर बेसी निर्भर रहब से ठीक नहि बुझाइत अछि। एखने किछु दिन पहिने कोरोना कालमे हमरा लोकनि देखलहुँ जे हमरा लोकनि बाहर नहि निकलि पाबि रहल छलहुँ, घरमे बन्द छलहुँ। ओहि समय एक दोसरासँ सम्पर्क करबाक, गप करबाक, बात विचार करबाक ई एकटा नीक माध्यम बनल हमरा सबके। आ ओहू मध्य जे साहित्य सब लिखल गेल ओकरा एक दोसराक सोझा आनबाक माध्यम बनल ई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब। एक तरहें देखल जाय तऽ हमरा सब लेल ई नीक अवसर सेहो बनबैत अछि, कारण हमसब एकर उपयोग कऽ अपन साहित्य, अपन संस्कृति, ओ सांस्कृतिक परम्परा सभक संरक्षण संवर्धन कऽ सकैत छी, करितो छी। हमसब साहित्यसँ सम्बद्ध बहुत रास काज सब तऽ भइयो रहल अछि। हमसब देखैत छी जे रचनाकार लोकनि अपन रचना सब प्रेषित करैत रहैत छथि एहि माध्यमसँ, ओकर समय

0: कक्षा सेहो होइत अछि। नीक गप अछि, नव रचनाकार लोकनि लेल ई सिखबाक अवसर होइत छनि। श्रोता बंधु, हमसब एकर एकटा आओर पक्ष देखैत छी। ई हमरा सबकेँ अपन इतिहाससँ सेहो परिचित करबैत अछि, वर्तमानक संग इतिहासक जनतब दैत अछि। देखू ने, एखन अमृत काल चलि रहल अछि आ हमरा लोकनि एखन पंच प्रण केर संकल्पक संग आगू बढ़ि रहल छी। इएह पंच प्रण अछि जे आबयवला बरख सबमे हमर देशकेँ विकसित देशक रूपमे विश्वक समक्ष सबसँ आगाँ आनिकऽ ठाढ़ करत। आ एहन समयमे हमरा लोकनि लेल आवश्यक होइत अछि अपन पूर्वज लोकनिसँ प्रेरणा लेब। जखन हमरा लोकनि हुनका सबसँ पढ़ैत छी, हुनकर सभक कयल गेल जे काज सब, ओकरा सबकेँ देखैत छी, प्रेरणा भेटैत अछि, आगाँ बढ़बाक हौस होइत अछि आ उत्साहक सङ्ग हमसब आगाँ बढ़ि जाइत छी। तऽ की विचार? आउ ने, पहिने हमरा लोकनि स्वाधीनताक सिपाही श्रृंखला सुनि लैत छी।
1: स्वाधीनताक सिपाही।
2: नमस्कार, आइ एहि श्रृंखलामे स्वाधीनताक सिपाही गंगा प्रसाद सिंह। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अनेक शह वीर योद्धा एहन भेलाह जे अपन सर्वस्व समर्पित कयलनि, अपन तन मन धन सब किछु देश लेल राष्ट्र लेल समर्पित कऽ देलनि। भगत सिंह सन वीर सपूत सेहो भेलाह जे हँसैत हँसैत फांसी केर फानकेँ चूमि लेलनि, तो चंद्रशेखर आजाद सन सिंह सपूत सेहो जे अपना वचनक अनुसार अंग्रेज द्वारा जीवित बंदी बनायल जेबासँ बचबा लेल स्वयं अपना हाथसँ अपना माथमे गोली मारि लेलनि। अनेकशः वीर योद्धा लोकनि अपन घर परिवार सब केर चिंता बिसरि कऽ राष्ट्र चिंतनमे लीन भऽ गेलाह, राष्ट्र केर स्वाधीनता संग्राममे अपनाकेँ पूर्णतः झोंकि देलनि। हुनका लेल सम्पूर्ण राष्ट्र सम्पूर्ण देशे परिवार भऽ गेल आ ओहि परिवारक कल्याण लेल सब किछु बिसरि कऽ अहर्निश जुटल रहलाह। एहने वीर स्वाधीनता सेनानी रहलाह गंगा प्रसाद सिंह, जिनकर जन्म 2 अप्रैल 1901 के अयोध्या प्रसाद सिंह केर पुत्र रत्न केर रूप में कोसी क्षेत्रक बरुआरी परसरमा में भेल छलनि। गंगा प्रसाद सिंह स्वाधीनता संग्राम केर क्रम में 4 खेप जहल यात्रा कयलनि। जहल केर यातना के फूलक हार जकां अंगीकार कयलनि। पहिल बेर 1921 में 6 मासक जहल भेलनि। 1930 आ 1932 में 1-1 बरख लेल जहल केर यातना सह पड़लनि। 1942 केर आंदोलन में हिनका 3 बरखक जहल केर सजाय देल गेलनि, जकरा ई सहर्ष स्वीकार कयलनि। गंगा प्रसाद सिंह 1920 में भारत में स्वराज केर स्थापना हेतु सहरसा में जे स्वाधीनता सेनानी लोकनि सक्रिय छलाह ताहि में शीर्षस्थ छलाह। ई राजमहल में आयोजित एकटा कार्यक्रम में गेल छलाह, ओतऽ सँ घुरतिये में हिनका बंदी बना लेल गेलनि। तहिया हिनकर अवस्था मात्र 20 बरखक छलनि। पिता हिनकर अध्ययन के लऽ कऽ चिंतित छलाह आ हिनका कॉलेज पठेबा केर ओरियान कयने छलाह। 1920 में ई कॉलेज में प्रवेश लइयो लेलनि, मुदा तखने महात्मा गांधी केर आह्वान पर ई पढ़ाई छोड़ि कऽ आंदोलन में सक्रिय भऽ गेलाह। हिनका संग हिनक पत्नी देवयंती देवी सेहो स्वाधीनता संग्राम में अपन योगदान देलनि। ओ गाम में महिला संगठन आ चरखा कैंप चला कऽ अपन सक्रियता बनौने रहलीह। हिनक धर्मपत्नी निर्धन लोकनिक सेवा सेहो करैत छलीह। गंगा प्रसाद सिंह 1942 में अनेक संगी सबकेर संग हिनको बंदी बनायल गेलनि, तो हिनका अन्य संगी केर संग अंग्रेज सरकार बर्बरता कयलक, मुदा

0: इनका शारीरिक दंड नहीं देल गेल। देश के स्वाधीन होयबा सँ किछुए पूर्व हिनका जहल सँ मुक्त कयल गेल छलनि। ई अपन संपूर्ण परिवार के अपना रंग में ढारी चुकल छलाह। हिनकर संपूर्ण परिवार सेहो स्वाधीनता संग्राम में कोनो ने कोनो रूपे सक्रिय छल। पत्नी तो एहि में अपन सक्रियता देबे कयल छीन। हिनकर 12 बरखक पुत्र विक्रम प्रसाद सिंह सेहो 1942 के आंदोलन में भाग लेलनि। बाद में अंग्रेज शासन के भय सँ हुनका ओही अवस्था में भूमिगत सेहो होबय पड़लनि। गंगा प्रसाद सिंह के पत्नी आ विक्रम के अनुज तिनको घर छोड़ी कऽ बरखो धरि पड़ायल रह पड़लनि। गंगा प्रसाद सिंह 1924 में मधेपुरा लोकल बोर्ड के उपाध्यक्ष आ सहरसा जिला बोर्ड के सेहो उपाध्यक्ष के पद के सुशोभित कयलनि। ई अपना गाम में 1947 में उच्च विद्यालय के स्थापना सेहो कयलनि, जकर जीवन पर्यंत अध्यक्ष रहला। हिनका स्मृति में सहरसा में गंगा टेक्निकल संस्थान के स्थापना कयल गेल, मुदा उपेक्षा कारणे ई संस्था मृत प्राय सन रहल। गंगा प्रसाद सिंह के स्नेह संपर्क में स्वाधीनता संग्राम के सपूत राजेंद्र मिश्र, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, बाबू राम बहादुर सिंह, पंडित छेदी झा द्विजवर, श्रीकांत मिश्र, पुच्छा मियाँ आदि सेहो रहला। हिनका सभक संग तन मन धन पूर्वक राष्ट्र सेवा में समर्पित रहला गंगा प्रसाद सिंह। गंगा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सूर्योदय अवश्य देखलनि, मुदा बरख 1947 में देश स्वाधीन हेबा के 10 बरख नहीं जीवी सकला आ 22 अगस्त 1956 के हिनकर देहावसान भ गेलनि। गंगा प्रसाद सिंह सशरीर हमरा लोकनिक बीच नहीं रहला, मुदा हुनकर यशोगाथा सदिखन विद्यमान छनि, जीवंत छनि। एहि सिंह पुरुष के नमन। एकरा संग ही स्वाधीनता सिपाही कर श्रृंखला एत ही संपन्न होइत अछि। आलेख एवं वाचन अमलेंदु शेखर पाठक केर, प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद।
1: स्वाधीनता सिपाही। श्रोता बंधु, पूर्व प्रसारित एहि स्वाधीनता सिपाही श्रृंखलाक बाद अब हम सब बढ़े छी अपन साहित्य दिस। आ देखू ने, हमरा लोकनिक जे साहित्य ओ दिनानुदिन समृद्ध होइत जा रहल अछि। प्रत्येक विधा में रचना सब भ रहल अछि। हम सब देखै छी जे साहित्य केर सब विधा एहि बीच संपुष्ट भेल अछि। जतौ धरि कथाक गप अछि, ओकर त एकटा नम्मा परंपरा रहल अछि, नम्मा इतिहास रहल अछि हमरा सब ओहिठाम। कथा कहबाक जे कला, ओ एहिठाम अदौ काल सँ विद्यमान रहल अछि। देशकाल परिस्थितिक अनुरूप कथा सब लिखल पढ़ल जाइत रहल अछि, एखनो लिखल जाइत अछि। तऽ आउ ने एक गोट कथा पहिने सुनै छी। शीर्षक अछि पैकेज वाला बर। कथाकार छथि मुकेश आनंद।
2: वासुदेव जी बहुत दिन सँ अपन कन्याक लेल सुयोग्य वर तकैत छलाह। कन्याक पढ़ाई लिखाई समाप्त भऽ गेल छल आ तकर बाद नौकरियो केना 2 साल बीत गेल रहै। सुनैत छलखिन लोकक धियापुता बेसी पढ़ि जाइ छथि तऽ अपन ब्याह कऽ लैत छथिन, मुदा हुनक बेटी ब्याहक सब भार भुवनेश्वर बाबूक दऽ देने रहथिन। सौभाग्य हुनक मानसिक और शारीरिक रूपसँ पूर्ण विकासक बाद आ बेटीक प्रति यह हुनकर अंतिम जिम्मेवारी रहनि। ओना तऽ जिंदगीमे जिम्मेवारीसँ कहियो मुक्ति नहि, से जिम्मेवारीके निर्वाह ओ पूर्ण गंभीरतासँ करय चाहै छलाह। एहि क्रममे भुवनेश्वर बाबू अपन सर सम्बन्धिक दोस्त महीम समेत कतौको गोटेके कहलखिन जे कोनो नीक कथा यदि अभरय तऽ सूचित करब, मुदा आब बहुत समय भऽ गेल रहनि। एहनो बात नहि जे बर सब नहि भेटथिन, मुदा कतौ वासुदेव बाबूके मोन नहि मानलकनि। पहिले ओ बरके दरमाहा मने पैकेज चेक करै छलाह। पैकेज मने 1 साल

में कंपनी जतेक पैसा दरमाहा में दै छल तकर हिसाब। बेटीक पैकेज 25 लाखक छलनि, तैं बड़क पैकेज ओहिसँ बेसी होय तखने ओ कथा उपस्थित करय लेल डेग उठाबैत। कन्यादानक परिप्रेक्ष्यमे वासुदेव बाबूक समस्या ई रहनि जे हुनकर कन्या सब तरहे नीक रहथिन, देखैमे सुन्दर आओर सुयोग्य। सुयोग्य सेहो एहन ओहन नहि, प्रतिष्ठित संस्थासँ पढ़ि बहुत नीक कंपनीमे कार्यरत छलीह। आब एहन कन्या लेल वर सेहो तेहन होयबाक चाही, वर देखैमे सुन्दर पवित्र, पैसा कमाइ कन्यासँ बेसी, खानदानी नीक परिवार आ यदि कनिको जाइत पाइ बचल होय तऽ नीक। कतेको ठाम गेला, कथा उपस्थित कयलनि मुदा काज सफल नहि भेलनि। एकठाम तऽ बरागत कथा स्वीकारो कय लेलखिन मुदा वास्तु बाबूके अपने मोन स्वीकार नहि कयलकनि। परिस्थिति तेहन छल, वर बहुत नीक कंपनीमे उच्च पद पर छलाह, मुंबईमे बहुत नीक पैकेज पर नौकरी छलनि, 50,000 मकानक किराए छलनि, खूब लंबा चौड़ा फ्लैट, मुदा गाममे वह पुरना स्टाइलके घर, माल जाल बान्हल सेहो चलि जेतै।

एकठाम था बरागत कथा स्वीकारो कैलखिन, मुदा वास्तु बाबू के अपने मोन स्वीकार नहीं कलकन। परिस्थिति तेहन छल, वर बहुत निक कंपनी में उच्च पद पर छला, मुंबई में बहुत निक पैकेज पर नौकरी छलन, 50,000 मकानक किराए छलन, खूब लंबा चौड़ा फ्लैट, मुदा गाम में वह पुरना स्टाइल के घर, माल जाल बानल सेहो चल जाते। मुदा सबसे दिक्कतक बात ई भेले जे घर पर बरक बाबू जी गमछा देह पर धेने उघारे देह बैसल छला, एना में केना ब्याह कैल जाए। एक ठाम और सेहो कथा करीब करीब ठहरिए गेल छले, मुदा परिवारे रहे बड़ एडवांस, अहूठाम लड़का रहत बड़ निक, मतलब पैकेज बड़ निक, गाम में खूब जमीन जथा, परंच बरक बाबूजी आ पूरा परिवार शुरू से दिलिये रहित छल, तें परिवार में लगे अपन संस्कृति कोनो लेस नहीं, प्रायः सब मैथिली अंग्रेजे जकाँ बजत। हाँ तो तखन भ गेल जखन कथा वार्ता के बीच में बर के बहिन आबि के बैस रहा। वासुदेव जी के पक्का विश्वास रहन जे नीक वैवाहिक जीवन लेल एक रंग परिवार, पैसा आ रहन सहन एक रंग भेनाई जरूरी होइ छै। हालांकि वो अपने साधारण परिवार से रहत आ कनिया पैग परिवार से, मुदा हुनकर जीवन बहुत सुखमय रहन, कारण बर कनिया के बीच निक सामंजस्य। मुदा हुनका ई मात्र संयोग बुझे, अपन बेटीक ब्याह पूरा ठोक बजा के करे चाहे छला, मुदा अपन तय कै गेल समय सीमा पर काज नहीं होबाक कारण प्राय उदास भ जाए छला। धीरे धीरे वासुदेव जी तनावग्रस्त रह लगला, कथा नहीं ठहरलाक कारण मुँह लटकौने घर आबत। हुनकर उतरल मुँह देख के पल्लवी आ ओकर माय सेहो उदास भ जाए छली। एक दिन संजोग से वासुदेव जी पुरान जानकार भुवनेश्वर जी दरभंगा टावर लग गुदरी बाजार में भेंट भेलखिन, दुनू गोटे तरकारी मोलबै छला। वासुदेव जी के मुँह लटकल देख के पूछलखिन की बात है, सबटा गप वासुदेव जी भुवनेश्वर जी के कह सुनलखिन। सब बात बुझ के भुवनेश्वर जी कहलखिन, अहाँ बच्चे से ओकर दिमाग में भरि देने छे जे विवाह अहीं ठीक करबे, वो अही स्मृति से बाहर निकल नहीं पाबि रहल है, से बात छै। वासुदेव जी कहलखिन, जी और बेटी संस्कारी है तें अहाँ के कष्ट नहीं पहुँचाबे चाहत है, वो अपन मोन अही दिस से हटा लेने है, नहीं तो आइ काल्हि के बच्चा कतौ माय बाप के पूछे छे, ओहो कमाइत बच्चा। हाँ गप तो ठीके कही छी भुवनेश्वर बाबू, आब हम की करूँ संशोधन, भुवनेश्वर बाबू कहला। तात्पर्य पूछलन वासुदेव जी, वैचारिक संशोधन करू, अपन व्यवहार में अपन पत्नी और कन्या के एही प्रक्रिया में सम्मिलित करू, अहाँ के काज बहुत आसान भ जाए। ठीके कही छी, आप सह करब, वासुदेव बाबू बजला। देखियो जिंदगी बीतेबाक छै ओकरा, तें ओकर पसीन बुझनाई जरूरी छै। से तो ठीके कही छी, वासुदेव बाबू बजला। और अहाँ के बेटी अहाँ से बेसी दुनिया देखने छै, ओकर निर्णयक आयाम पैघ हेतै। वासुदेव जी, बदलैत समय के बुझियो, धीरे धीरे हम सब अप्रासंगिक भ रहल छी, खाली बेसी पाई कमाई वाला सब बड़ नीक होए से जरूरी नहीं, एकदम सत्य, वासुदेव जी बदला। देखियो वासुदेव जी, अपन सीमित ज्ञानक कारण हम सब नीक वर्ग परिभाषा संकुचित कै देने छी, ऐसे समस्या ठाढ़ भ जाए छे। आवक लड़की हमरा अहाँ से कनिया जकाँ बरक निक बेजा नहीं सहते, ओकर जीवनक सहयोगी चाहिए, स्वामी ने हम बात बुझल भुवनेश्वर बाबू, आब हम घर जाए छी, वासुदेव जी कहला। एते जल्दी किया, जे बात अहाँ कहलूँ ताहि पर अमल आइए सँ और अखने से शुरू करब, बेस तखन शीघ्रता करू। वासुदेव जी तुरंत उठ विदा भेला, घर जाकर सबके एकठाम बजलखिन आ पल्लवी के कहलखिन, अहाँ अपन पसीन किया नहीं बजे छी, नीक बरक निर्णय अही करबे ने। बाबूजी हमरा बसक बात नहीं है बर तकनाए, ई तो अही के करय पड़त, पल्लवी मुँह झुका के बाजल। वासुदेव जी बुझ गेलखिन ई पल्लवी के शब्द नहीं छल, ई हुनके पूर्व में बाजल शब्दक प्रतिध्वनि छल, अहाँ प्रयास तो करू, वासुदेव जी कहलखिन। नहीं पप्पा, हमरा ई में बहुत डर हुई है। कोनो बात नहीं पल्लवी, हम सब मिलजुल के ई काज पार लगाए। हाँ पप्पा, ई निक रहत, हम मिलके करबे तखन कोनो दिक्कत नहीं, सब यदि एकठाम बैस के जे हम कहब या जे अहाँ कहबे से हम अगर विचार कऽ लेब तो हमरा बहुत निक लागल, पल्लवी चहकैत बाजल। वासुदेव जी सबटा फोटो आ परिचय सामने राखि लेलखिन, माय बेटी सबटा के एक एक कर देखे लागल। फोटो सबके देख कर पल्लवी आ ओकर माय के भाव भंगिमा समय समय पर बदल जाए, वासुदेव जी के भरोस भ गेलन जे आब निर्णय जल्दी भ जाए। घरक तनावक माहौल समाप्त भ गेल छल, ओकर स्थान पर उत्साह और उमंगक माहौल छल। साँझ में फिर सिंघारा जिलेबी आबे लागल, बरक चर्चा करे के फेरा में नाश्ता बनबे के समय घर में ककरो लगने छल। पल्लवी पहले जकाँ ठठा के हंसा लागल और ओकरा देख कर वासुदेव जी और हुनकर आंगनवाली से हो वासुदेव जी के विश्वास भ गेल।

0: जे पैकेज वाला बर भेटाय वा नहीं, पल्लवी के पसीन के बर जरूर भेट जेतन आ जल्दीए भेट जेतन।
1: श्रोता बंधु, हमरा लोकनि एखन पैकेज वाला बर ई कथा सुन रहल छलहुँ। निश्चित रूपे एहि तरहक कथा जखन हमरा लोकनि सुनै छी, लगैत अछि जेना हमरे परिवारक गप हुए, हमरे समाजक गप हुए। आ एना तऽ प्रायः हमरा लोकनि देखिते रहै छी अपना सभक समाजमे, अपन परिवारमे, अपन गाममे। तऽ आब एहि कथाक बाद पहिने हमसभ बढ़ै छी शब्द विमर्श दिस, तहन गीतनाद सेहो हेतै। एकटा शब्द अबैत अछि मरोत। मरोत भेल मुखपट, आँचरक कोरसँ मुँह ओ नाक पर देल आवरण जे संकोचपूर्वक गप करबाक काल महिला लोकनि रखैत छथि। ओना आब तऽ मरोत काढ़बाक जे परम्परा ओ कमे ठाम बचि गेल अछि। बहुत गोटा तऽ बुझितो नहि छी मरोत काढ़ब की होइ छै। मरोत काढ़ब भेल संकोचपूर्वक अपन मुँहकेँ झाँपब। आ माझ, माझ भेल बीच, केंद्र वा मध्य भाग। एहि लेल हमरा लोकनि माझ शब्द केर प्रयोग करै छी। एकटा शब्द अबैत अछि भगल। कहै छी ने, हे ई बड्ड भगल करैत अछि, मने छद्म चेष्टा वा बनौआ दशा। एहि लेल हमरा लोकनि भगल शब्द केर प्रयोग करै छी। आ भगली वा भगलिया, भगलिया भेल भगल केनिहार। जे भगल केनिहार छथि हुनका भगली वा भगलिया कहै छियनि। तऽ ई छल आजुक शब्द विमर्श। श्रोता बंधु, आब हमसभ अपन कार्यक्रम सिंगरहार के समेटी ओहिसँ पूर्व सुनि लै छी ई गीत।

एहि गीतक बाद आब तऽ कार्यक्रमसँ विदा लेबाक बेर सेहो भइए रहल अछि, मुदा ओहिसँ पहिने अपने लोकनिसँ आग्रह जे अपन सुझाव ओ प्रतिक्रिया अपने सब हमरा सब धरि निश्चित रूपसँ पठबैत रही आ हमरा सभक मार्गदर्शन ओ उत्साहवर्धन करैत रही। एहि लेल जे हमर सभक पता अछि ओ अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। हमर सभक पिन कोड अछि 8460004। श्रोताबंधु, अपने लोकनि अपन सुझाव वा प्रतिक्रिया आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो पठा सकैत छी। तऽ आब हमरा यानी राकेश चंद्र नंदनकेँ चलबाक आज्ञा देल जाउ। नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे हमारे ये मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। अपने सुनने वालों को एक बार फिर हम याद दिला दे अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का जीवंत फोन इन कार्यक्रम आज आप सुनेंगे रात 10 बजे से 11 बजे के बीच। इस कार्यक्रम में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गाने, तो नोट कीजिए हमारे ये मोबाइल नंबर 9430029353, यानी 9430029353। हेलो आकाशवाणी, इस कार्यक्रम के प्रसारण का समय याद रखें आज ही रात 10 बजे से 11 बजे के बीच।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी का। ये दरभंगा केंद्र है, इस समय रात के 8:45 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
5: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को

0: नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
5: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव

0: इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्ती है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल

0: विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shundipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee,

0: singles quarterfinal. He defeated 5th seed Alex de Minaur of Australia in straight set 7-5, 7-6, 6-3 this evening. World number 1 and defending champion Jannik Sinner will face Jan-Lennard Struff of Germany in the quarterfinal match tomorrow. In another quarterfinal fixture, Serbia's Novak Djokovic will take on Canadian player Felix Auger-Aliassime. In the women's singles quarterfinals, American Jessica Pegula will clash with compatriot Coco Gauff, while Czech player Karolina Muchova will take on Japan's Naomi Osaka tomorrow. In a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight, we will bring discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology. President and CEO, National E-Governance Department, Nand Kumaram, and former National Cybersecurity Coordinator, Dr. Gulshan Rai, will be present in our studios to answer the queries of listeners. And you can ask questions on the subject on telephone number 011-2331-0481, 2371-7117, 2371-7106, and 2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वीर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वुजरा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वजीर आजम के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि यह दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया

0: उन्होंने भारतीय बिरादरी की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहरीन के अपने हम मनसब की इंतहाई सताइश की। दोनों वुजरा ने बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और खित्ते में जारी अहम वाकयात के तनाजुर में तबादला ख्याल भी किया। डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये मामूल की 800 से ज्यादा रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। आज नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाने की गरज से आने वाली रथ यात्रा के लिए रेलवे की वजारत ने आज तैयारियों का जायजा लिया।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इस साल ओनम त्योहार के दौरान 100 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। दो जबानों में नशर होने वाले हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को बाख्तियार बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल होगा। कौमी ई गवर्नेंस महकमे के सदर और सीईओ नंद कुमारम और कौमी साइबर सिक्योरिटी के साबिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलशन राय हमारे सामईन के सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आप इस मौजू पर रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01132481 2371717 2371716। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के अवाम की भारतीय हुकूमत से मदद की अपील खित्ते में जारी बहरान की गहराई को उजागर करती है। पीओजेके में एक महीने से ज्यादा वक्त से एहतजाज जारी है। एक सरकारी अहलकार ने बताया कि अपील की नौयत बिलखसूस इसलिए तशवीशनाक है कि पीओजेके के लोग भारत से दवाइयां और जरूरी गजाई अशिया तलब कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाकिस्तानी इदारों ने पिछले 20 दिन से खित्ते के लिए राशन और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। लोगों को गजाई साजो सामान की इंतहाई कमी का सामना है। इस नाकाबंदी का आगाज गजाई अशिया की सप्लाई की मौतली से हुआ और बाद में इसमें दवाइयां भी शामिल हो गईं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय हुकूमत से लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है। यह दरख्वास्त पाकिस्तानी फौज के उस हालिया फैसले के तनाजुर में सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर एहतजाज में कमी ना आए तो गोलियां चलानी शुरू कर दी जाएं। इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंसानी हकूक के कौमी कमिश्नर ने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पत्थर की एक कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने के सबब 7 मुहाजिर मजदूरों की मुबैना हलाकत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी दो जबानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत व जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से कितना नजर मयारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक नए कोर्स को नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
2: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र साहिली कर्नाटक के दूरदराज मकामात पर कल शदीद से शदीद तर बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर आंध्र प्रदेश गंगाई मगरबी बंगाल अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय छत्तीसगढ़ नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुंबई और साहिली महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है। पेश एक रिपोर्ट।
3: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की रात तक इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। मावल तालुके के पटन गांव में आज एक घर पर मिट्टी के तोदे खिसकने से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से देवप्रिय भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हकानी।
0: आला रहनुमा मरहूम आयतुल्ला खा अली खामनई के जसद खाकी के

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो की फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमारम जी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है जी, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी

0: फ़ोन पे और SMS से और WhatsApp द्वारा नहीं मांगते
1: जी,
0: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में आप नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
1: जी।
0: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है, थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
1: ठीक है,
0: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
1: जी,
0: रिटर्न कॉल नहीं होती,
1: सबसे बड़ी बात।
0: हाँ
1: जी, बिल्कुल।
0: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
1: जी।
0: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ, आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं, तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पर नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं, रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर, सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी, रवि।
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी
2: जी। सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
2: हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त करोगे, इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज्यादा उसमें काम है, इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए, तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कोमरम जी आपसे जानना चाहेंगे, UPI आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों

0: में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
1: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 और इवन 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
0: बहुत बड़ी बात।
1: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है। और एक समय में जो यूरोपियन या US डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहाँ तक जा करके उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना, या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना, या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह के जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है। तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कि वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स UPI के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश।
0: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार, सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हमें कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं क्या, कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये, मैं एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी
3: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। OTP का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि OTP क्यों आता है और कैसे आता है। OTP जब भी आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉग इन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं, आप कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन है आपको OTP भेजते हैं। आपके फोन पे OTP आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे OTP आता है। कोई भी OTP तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी OTP को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप OTP को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को OTP आता रहता है, अपने आप ही OTP भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी OTP को देखिए, जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको OTP भेजता है। OTP एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को OTP भेजता है, उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
0: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी OTP आया, अदरवाइज OTP नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है
4: आपको। नमस्कार
0: जी,
4: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा। तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए? दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930, सर इस पे कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल कि 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
1: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूं।

0: पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें,
0: फिर से सवाल करेंगे आप?
1: कट गया शायद उन्होंने उनका
0: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है लेकिन 1930 के बारे में कुछ
0: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुँचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुँचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएँ हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
2: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
2: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
0: नमस्कार जी।
3: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
2: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
0: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
0: स्टूडेंट्स
2: जी, विद्यार्थी
0: जी सर। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के बड़े MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के IIMs के मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर YouTube पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराते हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषयों पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खुलना,

0: सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो स्तर, लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल। और भारत की पीएलआई स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहाँ तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य एआई टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीज़न के लिए अलग लागू गया है, जो सीनियर सिटीज़न का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलोअप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीज़न के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर।
1: जी बताइए।
2: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो। और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होकर देखा जाता है, स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
3: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या ओटीपी आता है, वो सब एसएमएस के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो ओटीपी आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फोन से, की फीचर फोन से किया, उसका इफेक्ट सेम है। जहाँ तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए, अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर, मोटा मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फ़ोन नॉर्मल पर्पज़ के लिए काफ़ी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
1: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गाँव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
3: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
1: जी।
3: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे, वो जो इतनी जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करे
1: जी।
3: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है, वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल

0: वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंदकुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज़ इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो 1930 जो काल है, इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
2: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको 0 FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयाँ होती हैं। ये बात ज़रूर है कि चूँकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप OTP सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
2: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
2: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। AI के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा

0: प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR इस ऐप पर। इस समय रात के 10 बजे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमें खेद है आपकी पसंदीदा फिल्मी गीतों का जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी हम आज आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। विकल्प में ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिए। सुमन कल्याणपुर की प्यारी सी आवाज फिल्म सबक। संगीत निर्देशन उषा खन्ना का है। गीत सावन कुमार के।

सच में बारिश के इन बूंदों का कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये जब जमीन पे पड़ती हैं, तो जमीन को रंगीन बना देती है। कुछ चीजें भले दिखाई ना दे, मगर उनका असर जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। हर मौसम के अपने रंग होते हैं, अपनी खूबसूरती होती है। बारिश की बूंदें भी एक नई जिंदगी की सौगात लेकर आती है, एक नयापन, एक ताजगी। आकाशवाणी दरभंगा से आज आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्म बरसात का गीत आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर। लीडर फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। गीत रचना शकील बदायूनी के है और संगीत नौशाद का।